0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 7 अक्टूबर घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
2: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन 5 और 6 अक्टूबर को मॉरिशस में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्का की औपचारिक लॉन्चिंग से पहले हुआ जो आज लग रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की एक टीम कल से मॉरिशस के दौरे पर हैं। अधिकारियों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज इबेन में भी एक कार्य सत्र लग रहा है। इन बैठकों में मुख्य रूप से कंटेंट की निगरानी, खासकर खयोल मोगुसिया में मौजूद कंटेंट्स, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उम्र की पुष्टि और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मॉरिशस कॉप 31 के लिए अपनी राष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप दे रहा है। इसे शुक्रवार 9 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 31 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटाल्या शहर में आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान करेंगे। मॉरिशस में सीमेंट, लोहा और स्टील के आयात में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में आई गिरावट के बाद 2026 की पहली छमाही में इन निर्माण सामग्रियों के आयात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये रुझान निर्माण क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आने का संकेत दे सकता है। और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे स्कूली छात्रों के समर्थन में कल देश भर में प्रदर्शन किए गए। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह और दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 5:46 पर सूरज निकला है और शाम 6:09 पर सूरज ढल जाएगा।
3: You're listening RM Free Radio Radio Radio
4: Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening your RM3 Radio

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये डाल FM है, शामिल मोहतरम परवीज़ा का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप तमाम सामईन खुदा के फजल व करम और रसूल खुदा ताजदार मदीना हबीब किबरिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खैर व आफियत से हैं। सब अल खैर की मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप सभी लोगों का इस रूहानी महफिल में दिली खैर मकदम है। तो आइए मज़ीद

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं।

बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताबे रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है।

और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी

तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।

उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो।

और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं।

और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है? क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो।

हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया।

और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे।

और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए।

0: और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है, और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं।
1: सदकल्लाह लजीम। माशाल्लाह, क्या तिलावती कुरान पाक का रू परवर समा था। कुरान की बरकत से दिलों को जिला मिली है। क्या ही पाकिजा और बरकत है वो कलाम जो रब जुलजलाल ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। शामिल महतरम, कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करना और उसे आगे फैलाना वो अजीम तरीन सआदत है जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और जब इस अजीम शान कलाम हिदायत पर गौर करते हैं तो खुद ब खुद दिल उस रब करीम की हमद सना के लिए झुक जाता है जिसने हमें उस बेमिसल नेमत से नवाजा। तो आइए मज़ीद सामीन इसी बारी ताला की बारगाह में अपने अकीदत के फूल निछावर करते हैं और मिलकर सुनते हैं हमद बारी ताला।

था मुस्तार हुस्न से उस के जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जहूर था। पहुंचा जो आप कुतु में पहुंचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। यकीनन मज़ी ज़मीन

0: पर नेक और बाबरकते काम की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ से करना मसनून तरीका है। ये और एम फ्री है, आप सुन रहे हैं उर्दू नशरियात सबाल खैर। एक बार फिर हमारा सलाम कबूल कीजिए और जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका इस्तकबाल है। शामिल मोहतरम, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना खुदते बाइस बरकत और नुजूल रहमत होता है। हज़रत सूफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब नेक लोगों का जिक्र किया जाता है तो वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हज़रत सैयदिना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत व अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप हसनी व हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का लकब मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला हैं। उस वक्त बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह के वाइज हिकमत और दर्स और तदरीस ने लाखों इंसानों की जिंदगियों को बदल दिया। तो आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन आज का बयान सुनते हैं, समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कौन यौमे जुमेरात यानी जुमेरात के दिन और शबे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उनको लिखते हैं। सुभानअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। हम जिस उनवान पर गुफ्तगू करेंगे वो सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजालिस और आपके जो वाज़ो तबलीग और जो तदरीस के सिलसिले जिस अंदाज में हुआ करते थे और क्या क्या इल्म के समुंदर आप बयान फरमाया करते थे और क्या सुबहानअल्लाह इल्मो फिक और इस्लाहे नफ्स और इस अंदाज की जो मारिफत की बातों का एक सैलाब होता था सुबहानअल्लाह, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखिएगा, और ये बड़ी वाज़े बात है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दीन इस्लाम की तरवीज जिस जिस अंदाज में हुई उनमें एक बहुत बड़ा किरदार मदरसे का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माना मुबारका के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मदारिस कायम थे। उलमा ने और बिलखसूस अहले तारीख ने और मुहक्किकीन ने यह बाकायदा लिखा है किस किस अंदाज के अंदर मदारिस कायम थे, यानी हुजूर के ज़माने में भी वो मदारिस कायम हुआ करते थे और वहाँ इल्म का, तबलीग का और दीगर कई उमूर पर इल्मी गुफ्तगू हुआ करती थी और सहाबाए किराम अख्ज़ो इक्तिसाब फरमाया करते थे। असहाबे सुफा का मदरसा बहुत मशहूर है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और तालीम के लिए कई अंदाज के अंदर कई काम फरमाए। बदरी मौका बद्र पर जो कैदियों को छुड़वाने के लिए जिस चीज़ को फिदिया बनाया वो तालीम थी कि सिखाएं और कैदी छुड़वा लें। तो कई अंदाज के अंदर मदारिस का क़याम और तालीम के सिलसिले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाए। तो जो मदरसा है ये एक ऐसी जगह होती है कि जो इस्लाम के नूर के फूटने का मंबा और मस्दर होती है। यहाँ से नूर इस्लाम फूटता है, यहाँ से जो इस्लाम का खूबसूरत चश्मा है वो इसी मंबा से निकलता है। तो मदरसा एक कितनी बड़ी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका के बाद यानी ज़माना सहाबा में, ज़माना खुलफा राशिदीन में, उसके बाद जो मुख्तलिफ ज़माने और मुख्तलिफ हुकूमतें और सल्तनतें आती रही उन ज़मानों के अंदर भी मदारिस का क़याम ये अहले इस्लाम की बुनियादी तरजीह हुआ करता था। तो हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी मदरसा को फ़रोग दिया, मदरसा कायम किया और अपने मदरसे के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

अहादीस आपके फरामीन उनके नूर को फैलाने की आला और लाजवाब कोशिश फरमाई और हक अदा किया कि जैसे फरमाना चाहिए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जिस मदरसे का आगाज किया कि रोजाना आपकी बारगाह में मजलिस इल्म मुनाकिद की जाती थी, शागिर्द और आपके चाहने वाले और इल्म के सैदाई आपकी बारगाह में हाजिर होते और इक्तिसाब इल्म किया करते थे, तो जो सबसे पहले जिसका आगाज सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया वो जो मदरसा था वो हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे से किया। आपने यहाँ पर तबलीग फरमाना शुरू की, तदरीस फरमाना शुरू की, नेकी की दावत देना शुरू की, उलूम मारिफत लोगों तक पहुँचाने शुरू किए। तो आपने सबसे पहले यहाँ से आगाज़ फरमाया और आपकी ज़बान की रवानी, आपका कलाम फरमाना, आपका अंदाज़ तफहीम, आपका अंदाज़ तालीम जिस आला मयार पर था आपने बड़ी जल्दी मकबूलियत हासिल की, बड़ी कसरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ आपके चाहने वाले जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ जाती, आपका पैगाम पहुँचता, आपके बारे में बताया जाता तो लोग आपकी बारगाह में इक्तिसाब इल्म के लिए दूर दूर से हाजिर हुआ करते। तो आपने जो आगाज़ फरमाया तो इस आगाज़ को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा उरूज नसीब फरमाया, लोग आपकी सोहबत बाबरकत में हाजिर होते, आपसे मुस्तफ़ीज़ होते और आपकी महाफिल की और आपकी जो मजालिस से इल्म हुआ करती थी उनकी शान ये होती थी कि उलमा, फुकाहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन अपने ज़माने के जलीलुल कदर आलाम कि जिनका एक नाम, एक मकाम, एक मर्तबा हुआ करता था अपने फ़न में, वो भी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में दो जानू हाजिर हुआ करते थे और इक्तिसाब इल्म किया करते थे। अल्लाह ने आपको वो इल्मी शान, वो इल्मी जलालत और वो इल्मी कद्दोकामत अता फरमाया था। आपकी मजलिस वास का जो आलम अखबारुल अखियार के अंदर बयान किया गया, आपकी मजलिस वाज का हाल ये हुआ करता था कि बयक वक्त एक एक टाइम के अंदर 400-400 अफराद कलम और दवात यानी इंक पॉट और जो उनका कलम हुआ करता था वो लेकर हाजिर होते और आपके मलफूजात मुबारका को तहरीर फरमाया करते थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के ज़माने में भी हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता कि कोई बयान करने वाला कोई शख्स है तो 400-400 बंदा सामने कलम दवात लेके और कागज़ लेके बैठा हो और बातें लिखता हो, लेकिन आपकी बातों, आपके फरमूदात, आपके मलफूजात की शान और उनके इल्मी निकात ऐसे होते थे कि 400-400 बंदे सामने बैठकर आपके निकात को लिखा करते थे, आपके मलफूजात को लिखा करते थे। और ये लिखने वालों में कौन है आप अंदाज़ा कीजिए कि लिखने वालों में उलमा हैं, फुकहा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं और अपने ज़माने के जलीलुल कद्र असहाब फ़न हैं, असहाब इल्म हैं, वो सामने बैठते हैं और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी निकात को लिखते हैं। मालूम हुआ कि कोई चीज़ होती थी, कोई बात होती थी, कोई मारिफत की बुलंदियों की बातें हुआ करती थी, कोई असहाब मारिफत के ऐसे असरार और रुमूज़ बयान होते थे कि जिनको ये अहले इल्म सामने बैठ के लिखा करते थे। तो ये शान, ये इल्मी मकाम अल्लाह ताला ने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाया था। आपकी मजलिस के बारे में ही कि आपके पास जो लोग हाजिर होते और बयान सुनते, वाज सुनते, उनके बारे में है कि बाज़ औक़ात अंदाज़ा लगाइएगा, बाज़ औक़ात आपकी मजलिस इल्म के हाजरीन की तादाद 70,000 तक पहुंच जाया करती थी। यानी 70,000 अफराद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते और आपके इल्मी अंदाज और आपकी इल्मी फरमूदात और आपकी खूबसूरत बातों से इक्तिसाब इल्म किया करते थे। ये आपकी शान है, आपका मकाम है और अल्लाह ने आपकी आवाज़ में भी वो बरकत रखी थी कि जो आवाज़ इब्तिदा के लोगों को आती थी खुदा आपकी आवाज़ को उसी अंदाज में, उसी बुलंदी के साथ पिछले लोगों तक भी पहुंचाता था। ये अल्लाह की अता थी, खुदा का उन पर करम था। तो गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजालिस के अंदर ये खूबसूरत बातें हुआ करती थी। क्या होता था, आपकी मजलिस वो थी जहाँ पर मवाइज़ हसना बयान किए जाते थे, खौफ खुदा का दर्स दिया जाता था, मुसीबतों पर सब्र की तलकीन की जाती थी, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का दर्स होता था, खुदा की बारगाह के अंदर हाजिर होना है इसका यकीन दिलाया जाता और उसकी तैयारी को सिखाया जाता था, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने के रुमूज़ बताए जाते थे, तकवा सिखाया जाता था, परहेज़गारी के तरीके और जिन चीज़ों को खुदा ने हराम किया उनसे बचना है इसकी तलकीन की जाती थी, ज़ुहद व तकवा और तमाम चीज़ें आपकी मजलिस मुबारका के अंदर सिखाई जाती थी। आप वाज़ो नसीहत के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम आम करते थे, अख़ुव्वत का पैगाम आम करते थे, ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपके फरमूदात, आपके मलफूजात का हिस्सा हुआ करती थी। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फरमान है और

0: क्या कमाल फरमाने, आप लिखते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कोई महफिल, ये जरा दिल को थाम के सुनिएगा, आपकी कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें गैर मुस्लिम मुसलमान ना होता हो। हमेशा आप जब महफिल फरमाते, वाज फरमाते, तकरीर फरमाते, तबलीग दीन फरमाते और मजमे के अंदर जब आप बयान फरमा देते तो कभी कोई ऐसी महफिल व मजलिस ना हुआ करती थी कि जिसके अंदर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान ना हो। यह छोटी बात नहीं है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत, क्या आलीशान और क्या लाजवाब तासीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जबान और आपके अल्फाज में रखी थी कि आप जब भी बयान फरमाएं, कोई मजलिस व महफिल ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान ना होता हो। कोई एक ना एक मुसलमान होता था। ये शान है, ये मकाम है जो एक कादिर रब्बुल उला ने अपने बंदे अब्दुल कादिर को नसीब फरमाई थी। ये शान है, ये उनका मकाम है जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो आप अपनी महाफिल में, अपनी मजालिस में अमर बिल मारूफ फरमाना, नहि अनिल मुनकर करना, लोगों को मसाइले शरईया सिखाना, लोगों के सामने अहादीस की शरह करना, कुरान की तफसीर बयान करना, ये तमाम वो चीज़ें थी जो आपके इल्मी मलफूजात का अहम तरीन उंसुर और हिस्सा हुआ करती थी। आपके हवाले से मुख्तलिफ उलमा ने जो चीज़ें लिखी हैं कि आपकी इल्म व फन पर महारत कैसी थी, आपकी फ़िक पर महारत कैसी थी, तफसीर पर महारत कैसी थी, तो आपके मजलिस और आपका जो वाज हुआ करता था उसके हवाले से अहले इल्म ने लिखा कि आपके मुबारक वाज में 13-13 उलूम को बयक वक्त बयान किया जाता था। यानी कई उलूम, फिर उनकी आगे शाखें होंगी, उनको जो बयान किया जाता था वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाज़े मुबारक के अंदर बयान किया जाता था। और आपसे इक्तिसाब इल्म करने वालों की जो तादाद है वो लिखा गया कि तकरीबन 1,00,000 है। 1,00,000 आपसे इक्तिसाब इल्म करने वाले, और इन 1,00,000 के अंदर बड़ी तादाद फुकहाए ज़माना की है, जो अपने ज़माने के फकी और अपने ज़माने के जलीलुल क़दर मुफ्ती व काजी हुआ करते थे, वो आपकी बारगाह के अंदर इक्तिसाब इल्म किया करते थे। और आपकी महफिल, आपकी मजलिस सुबहानअल्लाह महज इंसानों की नहीं, जिन्नात भी हाजिर होते थे और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब इल्म करते थे। हमारा जिन्नात पे यकीन है, हमारा जिन्नात पे ईमान है कि ये हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया है, ये एक मखलूक है और ये हमारे दाएं बाएं अतराफ के अंदर घूमते फिरते हैं, छतों पे हैं, इधर हैं उधर हैं, नज़र नहीं आते लेकिन है सही, हमारा ईमान है, अल्लाह ताला ने इनको पैदा फरमाया है। यही जिन्नात सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस इल्म के अंदर भी हाजिर होते थे, आपकी बातें सुनते, आपके मलफूजात सुनते। तो यह आपका इल्मी मकाम, आपका इल्मी कद और आपकी इल्मी शान है जो आपकी मजलिस मुबारक में लोग हाजिर होते और बरकतें पाया करते थे। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैजान नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: अकीदतमंद सामईन, अभी आपने एक ईमानी, इल्म अफरोज और रूहानी बयान समाप्त किया है जिससे ने हमारे दिलों में औलिया कराम और बिलखसूस गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को ताज़ा कर दिया। ये RM फ्री है, आप जुड़े हुए हैं उर्दू नशरियात सबाल खैर में। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम विलायत कितना बुलंद है, इससे का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी से होता है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी मैं उसके खिलाफ आलम जंग करता हूँ। मजीद सामीन, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का बुनियादी महवर शरीयत मुताहिरा की पासदारी, इखलास, सच्चाई और मखलूक के खुदा की खिदमत था। आप फरमाते थे कि कोई शख्स उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक कि वह सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल पीरोकार ना हो।

तरसी को कई शंकना ही का पन्याता साथ सा अप्रतिम कार्यक्रम पूरी पूर आनंद घेता हाथ तरसी को सुमारे 20 मिनट रहला कार्यक्रम सबने साथी तरसी कनेक्टेड स्टेशन 10 वास्ता पर्यंत

0: कारण के कहवाय ने कि भाई दरेक रात पछी सवारे सूरज जरूर थी आवे छे। एटला माटे कहवाय ने कि भाई प्रेम सत्य अने धर्मना मार्गे हमेशा चलता रहो तो जीवन में जरूर थी शांति मळे छे। एटले के जीवन ज्यारे आपणे सत्यना मार्ग पर चालीए छे ने तो आपणे जरूर थी सफलता मळे छे। एटले कहवाय ने ज्यारे आपणे कोई पण व्यक्ति साथे ज्यारे वात करीए छे ने सत्य बोलीए छे तो आपणे नेक्स्ट टाइम ए व्यक्ति मळे छे तो आपणे विचारवुं नथी पड़तुं कि आपणे आनी साथे शुं वात करवानी छे, कारण के आपणे साचू बोली हता ने। ज्यारे आपणे कोई व्यक्ति साथे खोटू बोलीने वात करीए छे ने त्यारे आपणे केटली वार विचारवुं पड़े छे कि हाँ आ व्यक्ति आपणने लास्ट टाइम मळ्यो हतो आपणे शुं वात करी हती। तो चालो एवो जे एक सुंदर मजानो आपणे एक भजन लई लईए गुजराती कार्यक्रमनो आशीष देसाईना अवाजमां लेवामां आवेलुं।
1: जन्म जीवन अने मृत्यु मंगल छे जे लई जाय छे जळहळ जळहळ ज्योतिर्मय पंथे। हे प्रभु, एक बाळ उतावळो તમારે દ્વારે આવીને ઊભો છે, એને તમારા ઉરમાં સમાવી લો, એના જન્મોની પ્યાસને બુઝાવી દો, તમારા પ્રેમની અમૃત વર્ષાથી એને પીંજવી દો, હે દયામય મંગલ મંદિર ખોલો।

शक्ति। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम कर जोड़ अभिवादन करते हैं। आरएम 3 के इस प्रसारण में रत्ना आप सभी की सेवा में उपस्थित हुई है अभी से लेकर दिन के 11:30 बजे तक। आज के इस भजन में यात्रा में आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और आज के इस दिन की शुरुआत आइए गणेश भजन के साथ करते हैं।

श्रोताओं, इस समय हम पितृपक्ष में हैं और पितृपक्ष में हम पितरों को तर्पण करते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए इस अवधि में उनके नाम की पूजा की जाती है, बरमबोज किया जाता है। श्रोताओं, कई बार हमारे जो कर्म है वही हमारी मृत्यु तय करता है, हमारा जीवन तय करता है, और हमारे जीवन में आने वाले कष्ट कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों पर आधारित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाप देखना भी पाप है। अब इस पर एक छोटा सा आख्यात आपको याद दिलाते हैं, आपको स्मरण दिलाते हैं। महाभारत के समय में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने 58 दिनों तक तीरों के बिस्तर पर तड़पना उन्हें पड़ा था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैंने तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक सजा क्यों प्राप्त हो रही है प्रभु? तब कृष्णा मंद मुस्कुराते हुए कहा कि पितामह, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब आप सामर्थ्य होते हुए भी चुप रहे। आपने पाप नहीं किया, परंतु पाप को होते हुए आपने देखा। मनुष्यों को ये याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि विश्व में बुरे लोगों के कारण पाप से नहीं, परंतु अच्छे लोगों की चुप्पी से यह विश्व में पाप बढ़ता जा रहा है। कई बार पाप होते हुए जब हम अपने चक्षु बंद कर लेते हैं, अपना मुख बंद कर लेते हैं, हम में सामर्थ्य होते हुए भी हम उस पाप को बढ़ावा देते हैं, यह भी कभी ना कभी पाप की ही एक भागीदारी है।

शांति सर्वत्र शांति। जिस मनुष्य का मन शांत है वो आने वाले किसी भी तनाव के लिए तैयार है, पर जिस व्यक्ति का मन विचलित है, अशांत है, अज्ञान है, उसे हर ओर केवल तनाव ही

ईश्वर के नाम मात्र से हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारे संताप दूर हो जाते हैं, मन में उठने वाले नकारात्मक भाव धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कभी दूसरों की बातों से खुद के जीवन को, स्वयं के जीवन में मन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं यह उनका कर्म है, तुम क्या करते हो यह तुम्हारा धर्म है, विश्व में सब तुम्हें पसंद करें यह संभव नहीं, अन्य की बातों में ध्यान दोगे तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन उलझनों से भरेगा। सच की राह पर चलते रहें। मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन जब कष्ट भोगते हैं तो सुख स्वयं अपने आप अपनी ओर चलकर आता है। इसीलिए धर्म की राह पर चलें।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज की इस भक्ति में यात्रा को बस यही समाप्त करने का समय हो चला है। ईश्वर सभी का कल्याण करे, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी को धैर्य प्रदान करे, सभी का जीवन मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देंगे। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सब।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

心随悦动，静享时光。马里求斯广播电台听众朋友上午好，欢迎收听心悦之旅。一段旋律可以抚慰

一曲清音可以沉淀思绪。下面首先请欣赏两首笛子演奏曲，偏偏喜欢你和世事故人来。

美好的时光总是短暂，听众朋友，一曲笛子版卷珠帘伴我们结束今天的音乐之旅，感谢收听，下周同一时间不见不散。

0: मिलते हैं गीता जी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस ने भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड की घोषणा की है। इस 15 साल के बॉन्ड पर सालाना 6% ब्याज मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। 50 से 65 साल के मॉरिशन नागरिक इसमें 1,00,000 से 2,000,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ब्याज हर 6 महीने में मिलेगा, लेकिन रकम कम से कम 5 साल तक लॉक रहेगी। समय से पहले रकम निकालने पर ब्याज दर 4.5% या बाजार दर के अनुसार होगी। इसके लिए आवेदन 15 अक्टूबर से 11 कमर्शियल बैंकों में किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। एबन में अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों और मॉरिशस के अधिकारियों के बीच पहली कार्य बैठक लगी। फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये प्रतिनिधिमंडल कल मॉरिशस पहुंचा। इसमें दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के लिए मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए सुरक्षा नीति प्रमुख शामिल हैं। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, कॉन्टैक्ट मॉडरेशन और पुलिस के साथ बेहतर सहयोग पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए सरकार और मेटा के बीच एक संभावित रूपरेखा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर दिन 55,000 क्यूबिक मीटर प्रयोग किए गए पानी समुद्र में छोड़ती हैं। ऊर्जा मंत्री पात्रिक सियावादेन का प्रस्ताव है कि इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाए, ताकि जलाशयों से और अधिक पानी न लेना पड़े। उन्होंने पोर्टलिस में अपने दफ्तर में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया और मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कई तत्काल उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। मॉरिशस में 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग पर दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन आज होने वाली अफ्रीकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रा की औपचारिक शुरुआत से पहले आयोजित किया गया। अफ्रीकी संघ के समर्थन से स्थापित की जा रही अफ्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों की वास्तविक परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिक सटीक क्रेडिट रेटिंग देना है। और विदेशी खबरों में, भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए देश भर में मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 28 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। बुलांशे रोड मोंटाई ब्लांश में 91 साल के 91 ईयर ओल्ड के श्री भारद्वाज

0: रोहू जो पंचम से ज्यादा जाने चाहते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अमृतपाल गुरोहू के घर बुलांशे गोद मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio Man.

जी हाँ दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ गाने कहाँ गुजरते हैं, ये गाने तो और भी हसीन हो जाते हैं। और यही एक खूबसूरत सफर आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। वक्त हो चला है आपके सुहाने सफर का, अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपकी इन गलियों को हम सजाने वाले हैं एक से बढ़कर एक

लाजवाब गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ, आप भी साथ निभाइए। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200। जी हाँ, इसी नंबर पर कर रहे हैं आपका इंतजार, 5250-6200। कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स, आपके नाम, सुहाना सफर, प्रोग्राम राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।

बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम मेरे यानी कि परी के साथ। RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप बने हैं हमारे म्यूजिकल हम सफर, और ये जो हमारा सफर है वो है उन गीतों के नाम जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। पुराने नगमों की वो मिठास, वो साथ

हमारे सभी सुनने वालों के नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म से लिया हुआ ये खूबसूरत सा ट्रैक फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ सुहाना सफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सो एंजॉय दिस वन

और चलिए अभी के लिए नीता जी हमारा साथ दे रही हैं आपका ट्रिबून से और लंच एंजॉय कर रही हैं आप साथ ही साथ शामिल होते हुए ये गाने तो धन्यवाद आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए ये जो गाना है इसे हम आपके नाम चला रहे हैं और आपकी ओर से इसे डेडिकेट करना चाहेंगे आपके पूरे परिवार के नाम स्पेशली गोज आउट फॉर हबी राज आपके पति राज के नाम और उनके लिए स्पेशल विशेज इस वक्त काम पर हैं और उन्हें आप मिस कर रही हैं तो चलिए ये गाना आप दोनों के लिए सुमन जी यहाँ पर आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो उम्मीद करते हैं इन गीतों को आप भी पसंद कर रही हैं चलिए सुहाना सफर प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आए हैं यह है आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन जहाँ पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस शामिल हो रहे हैं साथ ही साथ ये खूबसूरत गीत आपके दोपहर को थोड़ा सा और खास और स्पेशल बना रहे हैं तो आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250 6200 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर यानी कि 4028070 पर

और जी हाँ दोस्तों, हमारा ये जो सफ़र है सुहाना सफ़र, जहाँ पर हम शामिल करते हैं ये खूबसूरत सी गीत, इसमें शामिल होती है आपकी पसंद भी। और चलिए इस वक्त मनीता जी हमारा साथ दे रही हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस। यहाँ पर स्वीट सा मैसेज लेकर आई हैं आप और कहती हैं गाना हो जाए पूरे परिवार के नाम। माँ है सुमंती, आपकी बहनें हैं आरती, सचिता, बबिता, रेखा, भाई सत्यम, भाभी उषा, साथ में है दीक्षा, शिक्षा, श्लेषणा, अनिकेत, अक्षय, ऋषभ, ऋतिक और जुलियन विलेज से सभी आपके परिवार जो इस वक्त साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। सो उनके लिए प्यार भेज रही हैं आप ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस। सो मनीता जी, ये जो अगला गाना है इसे हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोपहर का टाइम 12:31 हो चुके हैं, बुधवार की ये दोपहर जहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए। शामिल हो रहे हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं 4028070-4028070 पर।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गीत नंदा जी हमारा साथ दे रही हैं आप पाई से और तीन देवियाँ उसी फिल्म का ये जो गीत है ये आप सुनना चाहती हैं और इसे डेडिकेट कर रही हैं आपके तीन बेटों के नाम बहू के लिए. साथ में हैं आपकी बेटी, आपके नाती पोते, आपके हस्बैंड सभी पुनीता और गणेश परिवार को आपने याद किया है. तो चलिए यहाँ पर ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे हम आपके नाम चला रहे हैं. साथ ही साथ हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म तीन देवियां, सुहाना सफर प्रोग्राम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

और लिखे हुए अफसानों को तो हम पढ़ ही लेते हैं लेकिन बिना कहे भी बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है कुछ गीत जो बहुत खास होते हैं कुछ गीत जो दिल के करीब होते हैं अभी इस वक्त साजिद जी हमारा साथ दे रहे हैं आप और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से फ़ोन कॉल के लिए अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और जानकर अच्छा लगा कि आप साथ निभा रहे हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे हम आपकी ओर से डेडिकेट करना चाहेंगे सभी छात्रों के नाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर की फॉर डियर फ्रेंड जो है इन कैनेडा बीबी सरोवर जी ना आपके नाम ये खूबसूरत सा गीत साथ ही हमारे सभी सुनने वालों के नाम फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन प्यारा सा गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए गोलमाल फिल्म से लिया हुआ ये गाना साजिद जी आपकी पसंद स्पेशली फॉर यू एंड फॉर ऑल द लिसनर्स

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. दोपहर का ये वक्त जहां पर हम आपकी पसंद को भी शामिल करते हैं और कारो आकाशिया से यहां पर बिंदु दुखित राम हमारा साथ दे रही हैं, डेडिकेट कर रही हैं गाना अपने सभी बेटी बेटों के लिए और साथ ही साथ बेलर रिव्यू सेश के सभी राम प्रसाद परिवार के नाम पति रमेश के लिए। तो यहां पर ये खूबसूरत सा गीत ये है फ्रॉम द फिल्म बेटी बेटे, 1964 फिल्म की यकी ये फिल्म, और इन 1964 जब ये गाना आया था तब तो था वेरी पॉपुलर, और इवन टुडे 2026 इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। इतना ही प्यारा सा गाना और इन्हीं खूबसूरत गीतों को हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा ये जो समय है दोपहर का 12 से लेकर 2 बजे तक डेडिकेटेड होता है इन्हीं खूबसूरत नगमों के नाम। तो चलिए अभी के लिए फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, स्पेशली बिंदु दुखित राम, ये गाना आपके नाम एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स।

जी हाँ दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप रेडियो मनोरंजन पर, इट्स 12:55 और इसी गीत के साथ हम बढ़ रहे हैं आपके समाचारों की ओर, लौट कर आएंगे और सजाएंगे ये खूबसूरत गीतों का कारवां आपके लिए फिर से। ये है आपका सुहाना सफर अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, मैं हूँ परी आपके साथ।

0: अभी सुनते समाचार रास्ता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। उन लोगों के लिए एक अहम खबर जो अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस अगले हफ्ते से बचत की एक नई योजना शुरू कर रहा है, जिसमें हर साल 6% इंटरेस्ट मिलेगा और इसकी गारंटी सरकार देगी। रिटायरमेंट सेविंग्स बॉन्ड नाम की ये योजना 50 से 65 साल के लोगों के लिए है। इसमें 1,00,000 से 20,00,000 रुपये तक जमा किए जा सकेंगे और इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिलेगा। कम से कम 5 साल तक जमा करनी होगी। ये रकम 5 साल से पहले पैसा निकालने पर इंटरेस्ट की दर कम हो जाएगी। योजना 15 अक्टूबर से देश के 11 बैंकों में शुरू हो जाएगी और 23 दिसंबर तक इसमें पैसा जमा किया जा सकेगा। मेटा के अधिकारियों और मॉरिशस के अधिकारियों के बीच आज सुबह एबन में पहली बैठक लगी। फेसबुक और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा का प्रतिनिधिमंडल कल मॉरिशस पहुंचा। बैठक में खासतौर पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, गलत और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक और पुलिस के साथ बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए मेटा और सरकार के बीच एक समझौता तय करने पर विचार किया जा रहा है। और अब ये खबर, अगर आपने हाल में यूप का पीने वाला दही खरीदा है तो अपने फ्रिज में रखी बोतल ज़रूर जांच ले। मोगिले और पनागोहा मार्केटिंग ने मॉरिशस और रोड्रिक्स में यूप की 250 ग्राम की सभी किस्मों की बोतलें सावधानी के तौर पर वापस मंगवाने का फैसला किया है। कुछ बोतलों में सफ़ेद सख्त प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों के पाए जाने की आशंका है, जिन्हें गलती से निकलने का खतरा हो सकता है। विदेश की खबरों में अमेरिका में मौत की सजा पाने वाली क्रिस्टा पाइक अब होश में है और बात कर रही हैं। पिछले हफ्ते टेनेसी में जहरीला इंजेक्शन देकर उन्हें मौत की सजा देने की 2 बार कोशिश नाकाम हुई और वो बच गई। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद अब उनका अस्पताल में इलाज जारी है। विशेषज्ञ इसे अपनी तरह का पहला मामला बता रहे हैं, क्योंकि मौत की सजा के लिए दवा दिए जाने के बावजूद कोई कैदी पहले इस तरह जीवित नहीं बचा। घटना के बाद टेनेसी में इस साल बाकी सभी मौत की सजाओं पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्रिस्टा पाइक को दोबारा मौत की सजा देने की कोशिश होगी या नहीं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड प्लेनमानियों में सड़सठ साल के 67 ईयर्स ओल्ड के विष्णु पंताया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विष्णु सीबी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हीं के मकान प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में रूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो बुधवार की ये दोपहर जहां पर ये खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो गाना है ललिता जी कालबास से हमारा साथ दे रही हैं आप डेडिकेट कर रही हैं फॉर योर सिबलिंग्स अनिल एंड सारिका आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे आज और सभी सिबू परिवार और ललिता जी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से भी गुड विशेज आप दोनों को ऑन योर स्पेशल डे अनिल जी और सारिका यहां पर आपके लिए सकीला आई एम सो सॉरी अनिल जी और सकीला जी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो यहाँ पर गुड विशेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं ऑन योर स्पेशल डे सो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ बहुत सारी शुभकामनाएं शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा गाना शब्बीर कुमार की आवाज़ तो ये है आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफ़र मैं हूँ परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620000 और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4028070 पर

तो चलिए, जैसे हम कहते हैं हर एक गीत किसी ना किसी के लिए खास होते हैं, और यहाँ पर यही कुछ खास गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी ये आंटी जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं आपको फुको से, और पति ईश्वर लाल हमारा साथ दे रहे हैं आप भी, और इसी गीत की मांग आपने की है, तो चलिए ये खूबसूरत सा गीत हम चला रहे हैं आपके लिए। अकेली मत जइयो फिल्म से लिया हुआ ये गाना लता मंगेशकर रफ़ी साहब की आवाज़ें, सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। तो मैं हूँ परी आपके साथ अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और सुहाना सफर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय दिस वन।

0: RM3 Radio.
1: और लता मंगेशकर की आवाज़ वंदना फिल्म का ये गाना चाची उषा हमारा साथ दे रही हैं आप तो चलिए इसे ये खूबसूरत गीत को हम चला रहे हैं आपके लिए आपके सभी अपनों के नाम भाइयों के लिए और आपके पति जिन्हें आप याद कर रही हैं साथ ही यहाँ पर आपके पोते हैं उनके नाम भी आप डेडिकेट कर रही हैं गाना और पूरे परिवार के नाम फॉर ऑल योर लव्ड वंस वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपकी पसंद का गाना आपकी नायतें लता जी की आवाज़ में ये गाना हमारी चाची उषा के लिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे लिसनर हमारा साथ दे रहे हैं यह है आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन 5250-6200 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के लिए या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर

0: RM3 Radio. Radio. Radio. RM3
1: और चलिए इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं प्रेमिला जी काट्रबोन से और ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं प्यार का सागर फिल्म का ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ और उनका साथ देती हुई आशा भोसले प्रेमिला जी आपकी तीन बहनों के लिए और सभी आपके परिवार के नाम सभी हमारे सुनने वालों के नाम सुहाना सफ़र प्रोग्राम शामिल होता हुआ ये गीत हमारे सभी लिसनर्स के लिए

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: क्या बात है, लगता है कि आज तो काफ़ी सारे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी के फैंस आए हैं. एक के बाद एक उनके कुछ गाए हुए गीत, प्यार का सागर फिल्म के बाद बम्बई का बाबू और उसी फिल्म का ये गाना बाबू अनाटवा हमारा साथ दे रहे हैं आप. और उम्मीद करते हैं कि ये जो गाना है आपके दिल को खुशी ज़रूर देगा. आपकी पसंद का गाना, आपका पसंदीदा गाना, इसे हम आपके लिए चला रहे हैं. आपकी ओर से सभी सुनने वालों के नाम, सभी लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन, ऐसे ही इस वक्त हमारे जो डियर लिसनर्स हैं हमारा साथ निभा रहे हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं. और मैं हूं परी आपके साथ, इन खूबसूरत गीतों को, आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं. तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5250-6200-5250-6200 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर 402

और मुकेश साहब की खूबसूरत आवाज के बाद यस गाना जो पिक्चराइज किया गया शोमैन ऑफ बॉलीवुड यानी कि राज कपूर साहब पर तीसरी कसम फिल्म से लिया हुआ ये गाना था हमारे सभी सुनने वालों के नाम और अब महेंद्र कपूर आशा भोसले की आवाज़ें फिल्म वक्त 1965 में बनी ये फिल्म और चलिए उसी फिल्म का ये गाना उसी दौर का ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम जारी है अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ और साथ निभा रही हमारे सभी लिसनर्स ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो चलिए यहाँ पर राजन जी हमारा साथ दे रहे हैं, आप गानों को पसंद कर रहे हैं, तो ये जो गाना है इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम, आप सात समंदर पार से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और हमारी प्यारी सी लिसनर जो हमेशा दूर रहकर भी दिल के करीब रहती है, आप है प्रकाश वैद्य जी, बेल्जियम से हमारा साथ दे रही हैं, और ये जो गाना है इसे हम आप दोनों के नाम डेडिकेट कर रहे हैं। फॉर यू मिस्टर राजन एंड फॉर यू प्रकाश वैद्य जी, साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। कोशिश यही है कि ये जो गीत है आपके दिल की खुशी को बनाए रखें और मॉरिशस से ये जो प्यार है वो हम आप तक पहुंचा सके। परी का साथ है दोपहर के 2 बजे तक, एंड दैट्स योर सुहाना सफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

और चलिए दोस्तों यहां पर इसी गीत के साथ वक्त हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा, लेकिन वादा रहा कि कल मुलाकात होगी फिर 12 से लेकर 2 बजे तक का, लेकर आएंगे प्रोग्राम सुहाना सफर आपके लिए। तब तक के लिए हमारा साथ निभाइए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, खास प्रोग्राम्स आपके लिए चलते रहेंगे और ऐसे ही कुछ प्यारे गीत आप सुनते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत फॉर नाउ और मुलाकात होगी कल फिर इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और जिन्होंने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम RM3 रेडियो मनोरंजन पर।

0: बताइए, सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में बेघर महिलाओं के लिए सुरक्षित ठिकाने की कमी पर पास्कल ने चिंता जताई है। संस्था के मुताबिक पुरुषों के लिए रात में ठहरने के 3 केंद्र हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी केंद्र नहीं। ऐसे में कुछ महिलाएं हिंसा से बचने के लिए अस्पतालों की बेंच, समुद्र किनारे या अपने बच्चों के साथ टेंट में रात गुजारती हैं। पास्कल ने महिलाओं के लिए ऐसा इमरजेंसी शेल्टर बनाने की मांग की है जो दिन में भी खुला रहे और जहां उन्हें जरूरी मदद मिल सके। वहीं मंत्री शकील मोहम्मद के मुताबिक देश में इस समय 52,000 से 55,000 लोग घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और स्थायी घर मिलने तक अस्थायी मकानों की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। मेटा के प्रतिनिधियों और मॉरिशस के अधिकारियों के बीच आज सुबह इबेन में पहली बैठक लगी। फेसबुक और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा का प्रतिनिधि मंडल कल मॉरिशस पहुंचा। बैठक में खासतौर पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, गलत और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक और पुलिस के साथ बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए मेटा और सरकार के बीच एक समझौता करने पर भी विचार किया जा रहा है। और अब अगर आपने हाल में यूप का पीने वाला दही खरीदा है तो अपने फ्रिज में रखी बोतल ज़रूर जांच ले। मोगिले और पनागोगा मार्केटिंग ने मॉरिशस और रेड्रिक्स में यूप की 250 ग्राम की सभी किस्मों की बोतलें सावधानी के तौर पर वापस मंगवाने का फैसला किया है। कुछ बोतलों में सफ़ेद सख्त प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होने की आशंका है जिन्हें गलती से निगलने का खतरा हो सकता है। और अब विदेश की खबरें। अमेरिका में मौत की सज़ा पाने वाली क्रिस्टा पाइक अब होश में है और बात कर रही हैं। पिछले हफ्ते टेनेसी में जहरीला इंजेक्शन देकर उन्हें मौत की सज़ा देने की 2 कोशिशें हुई, लेकिन दोनों बार वे बच गई। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद अब उनका अस्पताल में इलाज जारी है। विशेषज्ञ उसे अपनी तरह का पहला मामला बता रहे हैं, क्योंकि मौत की सज़ा के लिए दवा दिए जाने के बावजूद कोई कैदी पहले इस तरह जीवित नहीं बचा। घटना के बाद टेनेसी में इस साल बाकी सभी मौत की सज़ाओं पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्रिस्टा पाइक को दोबारा मौत की सजा देने की कोशिश की जाएगी या नहीं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। अलेमांग पोस्ट डे फ्लाक में 22 साल की 22 years old के केशव बीपन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 6 बजे उनके भाई कविन कुमार बीपन के घर पोस्ट डे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचु की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 6 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On MBC Play and MBC.mu. Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening here RM3 Radio. RM3 Radio.
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
4: नमस्ते, धरोहर के सरोवर हमनी के प्रोग्राम

0: अम्मी टोलो के स्वागत बाटी। महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग से हम जय गणेश डाऊ सिंह है और तकनीकी सहयोग देवठवन हमनी के भाई संजू टुकुरी। आजकल पितृपक्ष चलत बा, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव और जीवित माता पिताओं के चाहेला मान सम्मान करे के आदर दे के। त आज जैसी करनी वैसी भरनी नामक फिल्म के शीर्षक गीत लेके आल हैं। ये गीत के मुख्य संदेश है कर्म, माई बाबूजी की सेवा, बुजुर्ग के सम्मान और अपन पुरखन पितर के प्रति श्रद्धा। गीत में कहल गैल बा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। एकर भाव बा कि मनई जैसन कर्म करेला और उसने ओकर फल मिलेला। आज हम अपन माई बाबूजी और बुजुर्ग के जैसन सम्मान देव और उसने संस्कार अगला पीढ़ी में जाए। गीत में एगो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति बा, सबसे बड़ा पूजा है माता पिता की सेवा। मॉरिशसन भोजपुरी समाज में माय बाबूजी के सेवा और बुजुर्ग लोगन के सम्मान के बहुत ऊंच स्थान बाके। उनकर अनुभव, ज्ञान और संस्कार परिवार के एगो महत्वपूर्ण धरोहर है। पितृपक्ष में हम अपन दिवंगत पितर के श्रद्धा से याद करीला, बकिर इस समय हमनी के जीवित माय बाबूजी और बुजुर्ग लोगन के सेवा करे के भी याद दिलावेला। जे आज हमनी के बीच में हवन से उनकर सम्मान और सेवा करे के मौका हमनी के हाथ से ना जाए के चाहिए। गीत में कहल गल, माता पिता के तन में सारे देव समाए, एकर भाव बा कि माय बाबूजी के सेवा भी भगवान के सेवा जैसन मनावल जाला। भोजपुरी संस्कृति में बुजुर्ग लोग भाषा, लोकगीत, गीत गवाय, गमत, कहावत, संस्कार और परंपरा के जीवित धरोहर हवन सा। इसने उनकर सम्मान खाली परिवार के सम्मान ना है, बल्कि अपन संस्कृति और विरासत के सम्मान भी है। अंत में गीत हमनी के एगो सरल संदेश देवेला, जैसन करनी औसन भरनी। चला गीत के सुनीला से।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: तो चले प्रोग्राम के आगे बढ़ावब जा। माँ बाप के कर्ज के सकीला उतारे हमनी के माँ बाप के सेवा त समस्त तीर्थ चारों धाम से बढ़कर है। माँ बाप के सेवा त ढेर आशीर्वाद मिलेला। गणेश देवतानियन माँ बाप के तीनों लोग चाहेला माने के तो हमनी के चाहेला अपन माँ बाप के हमेशा मान सम्मान करे के। अगला गीत है माँ बाप के चरनिया में, जोन राजा भोजपुरिया मूवी से लेने और गायक हवन लखबीर सिंह लखवा और संगीत निर्देशन धनंजय मिश्रा, संगीतकार हवन विनय बिहारी। तो चल सुने माँ बाप के चरनिया में।

अभी सुना था वजह धरोहर के सरोवर महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पितृपक्ष पर आधारित आज हमने के प्रोग्राम बातें

0: सुख दुख सहके कबो अपन मुख से कछु नै बोलेलन। हमनी के माय के त्याग और तपस्या महान बाटे। रुपया पैसा लाख कमाईब, महल बना देब, बकेर उनकर सेवा से जोन कमाई होवेला ओ सौभाग्यशाली लोगन के मिलेला खाली। गीत में बोलत हवन के उनकर अचरा से बर के कोनो रजाई नै बाटे। ममता से ओट प्रोट चला अगला भोजपुरी गीत की सुनीला, जो जेकर शीर्षक है जग में माई बिना। तू राजा बाबू है हमार एल्बम से लेने, गायक हवन आलोक पांडे गोपाल, म्यूजिक डायरेक्टर हवन पंडित श्री रामेश्वर पांडे और संगीतकार हवन सुभाष यादव।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: छठ पूजा भोजपुरी अंचल के सबसे पवित्र एवं लोकप्रिय पर्व है। ई पूजा सूर्य भगवान तथा छठी मैया की समर्पित होवेला। ई चार दिन तक चलेला। नहाय खाय, खरना, संध्या, अर्घ तथा भोर का अर्घ। पहला दिन नहाय खाय में स्त्रियां गंगा तथा तालाब में स्नान करके शुद्ध अन्न ग्रहण करे लंजा। दूसर दिन खरना में संज्ञा के समय उपवास तोड़ल जाला। दूध, चावल और गुड़ के खीर से जेकर बाद निराहार व्रत शुरू हो जाला। तीसरा दिन संध्या अर्घ से होवेला एवं सूर्य अस्त होते समय नदी या पोखरा किनारे चिराग तथा फल अर्पण करल जाला। चौथा दिन भोर में उगता सूर्य के अर्घ देके व्रत पूरा होवेला। छठ पूजा में शुद्धता, संयम और भक्ति के बहुते महत्व बाते। महिलागण गीत गावत, लोक परंपरा निभावत, परिवार तथा समाज के सुख समृद्धि खातिर प्रार्थना करे लंजा। भोजपुरी इलाका जैसन बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं अब तक विदेश में बसल भोजपुरिया लोग भी बड़े श्रद्धा से ई पर्व मनावे लंजा। छठ पूजा सच्ची भक्ति, आत्मशुद्धि और प्रकृति से जुड़ाव के प्रतीक है। प्रस्तुत गीत न सिर्फ एक भक्ति रस से भरल बाते बल्कि भोजपुरी संस्कृति के आत्मा के भी उजागर करेला। हम बात करते हैं

0: मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के अनुपम गीत छठी मैया के। शारदा सिन्हा के आवाज भोजपुरी लोक गायकी के पहचान बन चुकल बा। वो बिहार के बेटी रलन अपन सुमधुर स्वर से छठ पर्व के गीतवन के देश विदेश तक पहुँचैलन। छठी मैया गीत में वो छठ पर्व के धार्मिकता, नारी शक्ति और मातृत्व के एक साथ जोड़ के प्रस्तुत करलन। गीत में शारदा जी छठी मैया की महिमा गावत हवन। वो बतावत हवन कि कैसे छठ पूजा केवल पूजा ना बल्कि एक संस्कार और श्रद्धा के प्रतीक है। भोर में उगता सूरज के अर्घ देवल जाला और शाम के डूबते सूरजों के प्रणाम करल जाला, अर्थात के जिंदगी के हर पहलू में प्रकाश एवं अंधकार दोनों के आदर जरूरी बातें। गीत में भोजपुरी स्त्रियन के मेहनत, नेह और समर्पण साफ झलकेला। कांच के छटवा, पियर पनिया जैसन पंक्तियन में लोक बोली के मिठास और भावनात्मक गहराई दोनों मिलेला। ये गीत सुन के एहसास होवेला कि छठ पर्व में मूल में शुद्धता एवं मातृत्व के शक्ति बसलबा। शारदा सिन्हा के गायकी के सबसे बड़का खासियत उनकर सरलता और आत्मिक भाव है। बिना अधिक साज सज्जा के बस स्वर के माधुर्य से उ गीत में जान डाल देवेलन। छठी मैया गीत में उ हर शब्द के भक्ति में कंपन जगा देवेलन। श्रोता जब इस गीत के सुनेला तो उ भावनात्मक जुड़ाव बनेला। चाहे उ भारत में बसेला या फिर मॉरिस के हवन से। मॉरिशस देश में बसल हमनी के भोजपुरी समाज खातिर इ गीत एगो सांस्कृतिक सेतु बनल बा। ये गीत ना सिर्फ परंपरा के याद दिलावेला बल्कि अपन और पहचान से जोड़ेला। जब रेडियो पर छठी मैया बजेला तहर भोजपुरी मन में अपन घर नदी किनारे के घाट और अर्घ देते लोगन के दृश्य ताजा हो जाला। शारदा सिन्हा के छठी मैया सिर्फ एगो गीत नहीं है, ये भोजपुरी आस्था के गाथा है। जहां मैया नदिया सूरज और धरती के संग जीवंत संबंध के बखान कहिल बाटे। छठ पर्व ये गीत दोनों मिलके हमनी के सिखावेला भक्ति में शक्ति बा तथा परंपरा में पहचान।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: सुनियत स्थानीय लोक कथा लेके आल हैं, जिकर शीर्षक है तालाब और बड़का औंगी। मान्यता बा के आगे के जमाने में एगो पवित्र झील में एगो बड़का औंगी रह चरल। उस साधारण जीव नियन नहीं रहल। बारा लोग बोले लंस के उ बहुते मोटा ताकतवर और चौकस होला कालिया नाग नियन रहल। जब जब कोई झील में अपमान करी, लापरवाही से गाड़ी चलावे, पवित्रता के मजाक उड़ावे या फिर गलत मन से तालाबवा में हेली, तो ऊ औंगीवा गहराई से ऊपर उठ जाला। भले ही ऊ दिखाई ना देला, लेकिन पानी के भीतर ओकर हरकत से आसपास के धरती हिल जाला। ऐसन दिन पर ऐसने कोनो अजीब हरकत घटे लगल। झील के यहाँ पहुँचते ही गाड़ियाँ अचानक रुक जालन सा। इंजन बिना कोनो कारण खराब हो जाला, ब्रेक जाम हो जाला।

0: खिलाड़ी चाहे जितना नई होए, जितना ताकतवर होए, आगे बढ़े के नाम ना ले हुए। लोग कहे लंसर कि कोई अदृश्य ताकत ओ लोगन के रोके खराबा, जैसे झील खुद चेतावनी देवता के आगे न जाए के। जितना कोई लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, विनम्रता दिखावे, वो लोग देखे कि कुछ देर बाद गाड़ी फिर से चालू हो जाला, बिल्कुल सही जैसे कुछ भैल ही ना हो। बाकी जो लोग चेतावनी की हंसी में उड़ा देला, वो लोग अक्सर आगे जाके हादसा के शिकार हो जालन सब। बुजुर्ग लोग सिखावे लंसर कि ये बड़का औंगी, जितना सुनने में बुरा बा, सही में नए बाते, उत हमनी के एगो रक्षक है। उ ई पवित्र जगह के रक्षा करे खातिर आल हवन, और मनुष्य के चाहेला जिंदगी में सम्मान, धैर्य तथा आस्था के साथ चले के। आजो जब झील के आसपास रहस्यमय तरीका से दुर्घटना हो जाला, तो लोग धीमे से बोले लंसा, तालाब में औंगी हिल गई बा।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: तो चले अब एगो किस्सा सुनब जा जैसन करनी वैसन भरनी। महात्मा गांधी संस्थान के एलओसी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या नौसा की जुबानी।
2: रवि बेटा, अपन घर अंगना आस पास चाहे सफा रखे के आव तुहराई पर एगो किस्सा सुना।
3: किस्सा सुनब किस्सा सुनब दादी से हम किस्सा सुनब किस्सा सुनब।
2: एगो तालाब रहे, तालाब के पानी हरदम सफा रहे। तालाब के मच्छी आपस में मिल के रहे। कुआ जनावर चिड़ै और जल जंतु आपस में मिलकर रहलन सा। उ तालाब के पानी सब कोई पिए। कुआ सब कोई हंसी खुशी से जिए। एगो बगुला कबो कबो उ तालाब में पानी पिए आवे। एक दिन बगुला पानी पिए आल, बाकी तालाब के पानी मैला रहल। वो पानी नहीं पिलक, छोटा छोटा मच्छी मरल रहल, मक्खी भिनभिनात रहल, कचरा उपलाल रहल, कमल के फूल भी मुरझाल रहल। सब देख के बगुला उदास भई। तब एगो बड़ा मच्छी ओकर से विनती करला।
4: ए मिंतर, हमनी दुखी है जा।
5: ई का होल, तालाब कैसे मैला भई?
4: का बोलब, कुछ दिन से एक जना ई तालाब में कचरा फेंकत बा।
5: ई बहुत दुख के बात बा, हमनी सब के जान खतरा में बा।
4: ए मिंतर, तू ही हमनी के जान सब पर बचाए।
5: हम कैसे सकब जान बचाए?
4: तू जा, इस संदेश राजा तक पहुंचा दे।
2: ई खबर राजा तक पहुंचाए।

0: तालाब के चारों बगल लासा लगवा देला। वो आदमी जैसे कचरा फेंक के बैठल हो सब गए और लगल जोर जोर से चिल्लाए,
1: ई का होल हम कैसे सट गयी, कैसे निकलब हम कैसे निकलब।
0: उ तो हौजे सटल रह गल। राजा ई खबर सुन के तुरंते आवेला।

0: अलग के रोविला
1: राजा राजा अपना माफ कर दे राजा अपना माफ कर दे अपना इलासा से निकाल दे अपना इलासा से निकाल दे निकाल दे
2: दुष्ट तोरा जरूर सजा मिली। तू तालाब के जल्दी सफा कर। जब तक तू इ गांव में जीवा इ तालाब के हमेशा सफा रखिया। कान खोल के सुन ल, इ तालाब हमेशा चाहिए सफा रखे। महिला रही तो तोरा कड़ा से कड़ा सजा।
1: हाँ राजा ई तालाब के सफा रखब जब महिला नहीं फेंकब नहीं फेंकब। हाँ राजा हम अपन कान पकड़ब है हम हरदम ई तालाब के सफा रखब सफा रखब।
3: रवि बेटा इही खातिर बोलल जाला हमेशा चाहे अच्छा काम करे के काहे के जैसन करनी।

0: RM3 Radio. Radio.
1: 23 सप्ताह से पितृपक्ष समाप्त हो जाए और उदी मास से नवरात्रि शुरू हो हटाते दुर्गा पूजा के नव रूप पूजल जाए इनकर में काली मावो के मनावल जाला सोने के आसन सोने के सिंहासन देवल जाला ई देवी गीत से समाप्त करत हैं सर सोने के आसन सोने के सिंहासन आवह हो दिव्या बिराज हो माई हटवा में लीली मैया फुलवा हो पनवा आवह हो मैया सोने के आसन देवत हैं आवह हो मैया सोने के आसन पर विराज हटवा में लीली मैया पियरी चुनरिया सोने के टिकलिया माय के अभारवन चढ़ावे हम पर होइली सहाय हो माई आवह हो मैया विराज हो मैया। तो चलिए ई देवी गीत से कार्यक्रम के समाप्त करत हैं। तकनीकी सहयोग संजू भाई के बहुत ही धन्यवाद देवत हैं। आवत सप्ताह के फिनो मिलब जा नमस्ते।

0: आज की चर्चा।
1: बुधवार का दिन, 7 तारीख, अक्टूबर का महीना और रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इस कार्यक्रम को आप दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि खेल कूद हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। जैसे पहले के समय में हमारे जब गिरमिटिया मजदूर लोग मॉरिशस आए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने शारीरिक विकास में भी अपना उतना ही योगदान दिया, साथ ही साथ खेल कूद किस प्रकार से हमारे मॉरिशस में स्थापित हुआ, और साथ ही साथ खेल कूद दौरान जब कभी घाव लग जाता था तो कैसे लोग इसका निवारण ढूंढते थे, कैसे इसको ट्रीट किया

0: जाता था। इस पर थोड़ा इतिहास की ओर भी हम चलेंगे और आज के समय में भी खेल कूद के दौरान अगर किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर की जरूरत कब पड़ सकती है और किस तरह से चोटों का इलाज किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर संजीव कुमार बाबुआ जी, जो कि एक प्रेसिडेंट ऑफ मास्टर्स पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, फिजिकली हैंडीकैप पर्संस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ वे डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के और डायरेक्टर ऑफ मेडिटेशन, साथ ही साथ हेल्थ एंड फर्स्ट एड सेंटर के यहाँ पर डायरेक्टर उपस्थित हुए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत बातें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम रत्ना जी, और जितना श्रोतागण इस प्रोग्राम में जुड़ल हुए उस सब लोगों के प्रणाम।
0: बहुत बहुत स्वागत बात। डॉक्टर जी, आज के शुरुआत करे के अगाड़ी पहले तो हमने के हाई बतावा, जैसे जब शुरुआत होल रहल मॉरिशस में, जब गिरमिटिया मजदूर लोग आल रहलन, तो खेल कूद के हई जो विकास होल मॉरिस में, वो कैसे हमने के मॉरिस में स्थापित होल?
1: देखा, ई जोन खेल कूद है, ई एक परिवार के, एक समाज के और एक राष्ट्र के एक सूत्र में बांध के रखेला। इससे हमने के जोन पूर्वज लोग रलन जा गिर मिटिया, अच्छा वह बोले कि जितना युवा लोग हवन सा, जितना जवान लोग हवन सा, जब बोलिए सा गिर मिटिया तो सुनजन से के हवन जा, इसमें थोड़ा प्रकाश डाले थे इस बोले से आगे। जब देखबा कि 1834 में जब पहला दहाज हमने के देश में आल, उकर में 36 जो हमने के जो गिरमिटिया लोग रलन जा अपन देश छोड़ के भारत से कैसे आगरा बा, बारा बा, बनारस बा, उत्तर प्रदेश से और जो बिहार से जो गंगा के टच से आलन सा, वो लोग ऐसने नहीं आ रलन जा खाली हमने के खेत में काम करे, जहाँ पे कंडा में काम करे, जब आ रलन जा तो अपन साथ अपन संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जो कल्चर और जितना हर खेल कूद के भी जो उन लोग के अनुभव ज्ञान रहा साथ लेके आ रलन जा। ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे समझे के कि हई देश में जब से उस समय से जब अलन जा तो हजा पड़ी बहुत कठिनाई के सामना करे के पड़ल। जब अलन जा हजा से तो उ लोग कैसे बन जा कि है कैंप बोल जला, जैसे सुखिया के जो और अथी जहाँ पर काम करे के जन सगरो सगरो गलन जा, तो हजा पड़ी अपन परिवार के साथ रहन जा। धीरे धीरे जब समय बीतते बीतले गल तो धीरे धीरे मैडम लोग सब, जब
0: महिला
1: लोग और लड़का लोग सब अलन सा, जब है देश में अलन सा कि एगो जीवन के पहला शुरू करे के हाउ समय में हो जा पड़ी। अच्छा बाकी जाने के जब स्पोर्ट्स के बारे में बतिया था खेल कूद के, तो वहाँ पर भी उस देश में वहाँ पर लोग के बहुत कठिनाई पड़ता है। उस समय बहुत से बीमारी रहल, कैसे कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री सब रहल हो जा पड़ी, तो उससे छुटका पार के भाग के। और बहुत अलग से कि जब मॉरिशस में अब ना तेजा पी के जो पत्थर उठेबा तेजा पी सोना मिली, तो इस तरह से जब लोग सोचलन से कि हिजाब से कि एगो अच्छा जीवन बनाई के बा और कि अच्छा स्वास्थ्य भी रही और काम से पैसा लियन सब, तो इसी तरफ से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रह उस तरफ से लेके लेके एगो कंट्रैक्ट में अलन सब, जब कंट्रैक्ट में लंस है तो उ लोग ये लोग नहीं समझा कौन पापिए सीए, तो मतलब कुछ सीए करत हो सर, तो उस समय जब अग्रीमेंट बोलत रहन सर तो नहीं सकत रहन सर प्रोनाउंस करे बोले कौन से अग्रीमेंट, तो ग्रीमित बन सर ग्रीमित ग्रीमित से ग्रीमित हो गल, तो उसमें कौन चीज लिखा रहल कौन चीज बा उ लोग समझ लन जा नहीं, लेकिन उसमें रहल कि हर महीना में 5 रुपया मिली और काम के जो कंडीशन रहल कैसे रही और 3 महीना 6 महीना के अक्ति लोग के पैसा मिल जाए साले जैसे बोले जला वो कंट्रैक्ट में, तो सब कुछ नहीं रहा। जब अलन जाए जा पड़ी तब रलन स तो दूसर जगह गए से किसी मोगिस में सगरू में कौ कैसे कौ इच्छे कौ सब सगरू है। जब भैया से गलन से अपन कैसे पहला जो थ्रांसिस पैसोना रलन जा रलन से उनके पूर्वज लोग तो औतवाने फुलियार गलन जा हौजा पड़ी अपन जीवन शुरू हो जा पड़ी। तो धीरे जब जैसे समय बीतते गल तो जा पड़ी अब कैसे अपन नया देश में देखा ना बहुत से कठिनाई पड़े नहीं जानते कहाँ अभी के जमाने

0: में तो सब बा कम्युनिकेशन के फैसिलिटी के मैं हाउ समय सोचा कुछ नहीं बा और ऐते हवे दहाज में जब आते पहले अतलास में आते नजर सोचा कि कितना घाम पानी दहाज में 3 महीना ओकरे में पड़े रहे के तब ऐलान सा और उस समय देखा ना कब के कोई के जो बीमारी शुरू है कुछ कोई के सर्दी खोखी वाला था जल्दी से नहीं वाला थोड़ा समय ले वाला वो उसका बोले सा इंक्यूबेशन पीरियड बोली ला जा तो उस समय जब है बीमारी दल कोलेरा टाइफाइड डायसेंट्री सब रहल तो वो बीमारी के मैनिफेस्टे करे के उसका साइन एंड सिम्पटम जैसे बोली जा रहा समय ले वाता तो जब जहाज में आवतन सब बीमार जल्दी हो जान सा जब बीमार हो जाता है तो उसमें इलाज नहीं रहा ना कैसे करें सर कैसे
1: कोनो
0: ट्रीटमेंट नहीं तो कुछ जब लोग की मृत्यु हो जाता है तो लोग के वो काला पानी में डाल दे वतन सा अब सोचो कि अब समय के जब कुन तोहर परिवार आवता साथ बा कि वो लोग के हई काला पानी में डाल दन सा कितना कठिन से ऐलन जा और कितना दुख से तो ये स्वास्थ्य और लोग बढ़िया रहलन सा बहुत काम कर दन सा खेती में खेत की मारे में जब ये बहुत खेत तब ऐलन सा जब जब रहत रहत धीरे धीरे तब जीवन आगे चले लगल तो जो उस समय की कठिनाई से फजीर के देखा ना जब किरण फूटे सकते जब जैसे सूर्य उदय हो सकते वो लोग अपन खेत में काम शुरू कर दें सर अभी के समय में देखब तो लड़का लोग सुते रह कितना 6 बजे से पैदे में वो लोग के बुने से सुने
1: तो लोग के
0: स्वास्थ्य कैसे रहा और वो लोग कैसे अपन खेती बाड़ी में अपन जीवन चलावत रहें सर और जो कोजिशों रहा कठिन रहा बहुत मैं फिर भी जब सूरज डूब गल तो आवतन से घरे हई समय में जब लोग जब देखलन से कि कोथा समाप्त होता असकी अपन वापस जेन सा भारत या हजे रहन सा कोई लोग अपन सब कुछ लेके आ रहे सा अपन संस्कृति भाषा सब कुछ लेके आ कि हजार देश में कि हजार नवा जीवन शुरू करेगी तो उस समय जब समय बीतते गल तो शादी होल लड़का जो नवा जनरेशन होल तो उस समय के अब देखल जला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा सा उस समय तो वो भी वहाँ पे लोग के कोजिशों थावाई से तो ये लोग कैसे करके अपन कैसे सब लोगों से मिलियन से बातचीत करियन से तो बैठका थ्रू हो बैठका शुरू कर लन जा कि अपन संस्कृति भाषा से बैठका एगो ऐसा इंस्टीट्यूशन किसे कब से बोले कि एगो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो और वहाँ पर जितना डिसीजन लेवे के और जितना सब कोई आ रहा सा तो वहाँ पर वो लोग शाम के सवेरे शाम हुए तो जाके सब लोग एक जूत मिलके किसे थोड़ा बोली कि जब खेल कूद जावेला और जब मिलन होला सबके हमने के देखना हमने एगो ऐसा प्राणी है कि नहीं सकब सा अकेले जिए
1: सोशलाइज करे के जरूर
0: चला चला सोशलाइज करके सबके से मिलजुल के रह के तो उस समय जब आलम से एगो नया देश में और जब वातावरण जैसा रहल कि बहुत कठिन रहल तो कैसे अपन जीवन चलिए जा लड़का लोग लगलन से अब खेले खेल शुरू करे खेल रहा उस समय कैसे बोलन जा सिरिंगोल तेलंगी अभी बोलन सा काइट तो खेल के जो गिली घंटा भी रहल तो लड़का लोग सरल उ लोग के जो पिता जन दादा दादी लोग उन लोग के कहानी भी सुनावे और लोग के बतलाए कि चला खेले शुरू करे के बस कि हाउ अभी बोले सा स्ट्रेस बोली ला सा ना थका प्रॉब्लम सब कुछ होला तो उस समय भी तो कैसे इसके छुटकारा पाएंगे कैसे इसके दूर जाएंगे तो लड़का लोग सर खेले के शुरू करेंगे बैठका में पढ़ाई तो होता लेकिन उनको ऐसा एगो स्थान बैठका तो अभी तो बाहबी देखब तो हमारे देखे में एगो 104 गो बैठका बा देश में मैं उस समय हर जितना कौन रहल जितना ताबिस्मा रहल वहाँ पर भी बैठका रहल और जितना संस्कृति भाषा के और जितना कैसे पूजा ये सब चलते रहे और अपन सोशलाइजेशन के
1: एगो रिलीजियस गैदरिंग नियर
0: ये भी एगो भाव से जब देखब नहीं मन से तो एगो भाव से हम सोशलाइजेशन खातिर अब लगन से लड़का लोग खेले कैसे बन सा कि धौड़े के खेले के जब समय बीतले गल तो जितना अब नवा जनरेशन आल जितना नवा पीढ़ी लोग आयलन जा एगो के नाम से कब ले कि कैसे एगो वायलाइडो बा ओका नाम है कपेन नॉर्थ में वत है वो बेचारा अभी तक अपन स्पो में वो शुरू कलक कान काटे के जब कान काटा कान के लाद के फिर भी समय खोज के शुरू कलक है जो अथी।

हाउ समय में जब अंग्रेजी देश रलंस अंग्रेजी लोग रलंस तो लोग वहाँ पर सब जितना इस्टाब्लिश जितना थी बा है कौ बा तो हो जा पर वहाँ लोग के अति रहल स्पोर्ट ग्राउंड

0: के मैदान बा
1: जी
0: तहौजा परी ओकर जब दिखला कि मौका बा तनी दौड़े ओके वो अपने से दौड़े तो उस समय जब देखलन जा थी हमने के ब्रिटिश जो नथी रहन सा कुलम बलतलन सा कैसे बतलन सा कि सरदार लोग रहा लोग के बुजुआ बोलतलन सा तो एक दिन देखलन सा ई दौड़े ला तो एक बात बात में उस सुना गल ची छुकरवा दौड़े ला कना वायला दो कप एन रहे ला कि उम्बोल वाजिया के वासियोन ऐसे तो बोलते कैसे हमने के खेल कूद शुरू हल हमने के जड़ से तो उस समय से जब जब ये लोग शुरू कलन सा खेले के तो जाने ला हर जितना है सुख या जितना पड़ी एक गन्ना के जहाँ पड़ी काम होला तो वहाँ पड़ी खेल के भी एक थी
1: प्रतियोगिता
0: प्रतियोगिता तो जस्ती अति जो कैसे बनता कि जो फिरंगी बोलन जला या बोलबा कि ब्रिटिश लोग रहन सा उन लोग इसमें भाग लेवे तो जितना है लोग काम करे होला था इन लोग के नई मौका मिले
1: परमिशन
0: नहीं रह जाके जब सुनलन सा कि एगो उकर में एगो लड़का बा कि ई खेलेला तो के को मौका मिलल कि बलन से जाए बला प्लान बा बेलवी में आवत नहीं सुन एगो वो लोग अपन गानिजे कलवन सा कि एगो स्पो के एगो खेल के तो ई जब शुरू करला तो एकर जितना शक्ति और जितना सती रहल तो दिखला कि इस सब के लगल से आगे निकले दौड़ में 100 मीटर 100 मीटर में 200 मीटर में 400 मीटर में और जब फुटबॉल देखना हर में जब फ्यूअल के देखबा बूशों के देखबा जितना पड़ी जहाँ पड़ी हमने के पूर्वज लोग जाके उधर बसर रहन सा हर जगह देखबा तो जब पड़ी स्पो के एगो स्थान बा वो लोग खेलतन सा तो ई जब शुरू कलक तो फुटबॉल में रहा तो ये लोग जब देखलन जा कि जो हजा के जो अथी रहल ओकर सेफ रहल जैसे बना कि सरदार रहल बता ई छकड़वा खेलेला तो देखर ओकर पहचान है ना कब बोले सा कि एगो बात अवेला कि भोजपुरी में कि कदवा छूत रात के बन जा कि जन आदमी के पहचान नहीं है कैसे बोल जला किसी बा कि ओकर बीते के कला नहीं बा तो जब ओके देखलन जा ओके देखलन जा कि धौरा था तो के अपन लिकिप में डलन जा तो उस तरह से धीरे धीरे वो जितना अथी रहल कौन रहल जितना दूसर फ्यूअल और सब लगलन सा कौन पीछे स्पो में शुरू करके फुटबॉल के रहल धौड़े के भी रहल सब चीज रहल तो इस तरफ तो दिखला वो अपन लगल सब पगड़ो पार्टिसिपे हो अभी तो कितना बहुत अभी तक बा अभी एक्सपो में अभी मास्टर्स बन गल बा मास्टर्स बा उसी तरह एगो बा कि डॉक्टर राज मुनुस्वामी वो भी साथ रहल जब उन लोगों के खेले तो ई बोले देखा ना तू फुटबॉल नहीं सब खेले पास कि फुटबॉल खेले में चाहना दूसर का तो कला चाले करके खेल कूद के दूसर पीढ़ी में दिलन जा तो ई लगल धौड़े उस समय से धौड़त धौड़त कितना सौंपना कलक हमने के देश के राज डॉक्टर राज मुनुस्वामी अभी सबको जाने लग जा कि वो बड़का मगातून ये है और वासु मुनुस्वामी भी और ऐसे कि अनिल कसनिया बा अनिल कसनिया वो कैपिप के रहलन वो बेचारा के एक भी एक हाथ ने बा कैसे बोले कि जो डिजेबिलिटी बोले जला ऐसे तो ढेर बार साके सांप लोग के देखेला वो भी शुरू कर स्पो के देश के कितना में जितना स्पो में
1: भाग लेला
0: और अमेरिका में भी जाके पार्टिसिपेट हो ओलंपिक गेम में तो ऐसे साइलेस बा साइलेस राम साहा बा ऐसे बहुत कुल बा तो धीरे धीरे बा कि हमने के जन जुए आवेला कि जुए डिजील जब जुए डिजील बोली ला था कि हमने के आइलैंड इंटरनेशनल गेम जब शुरू हल कि रेन्यू आइलैंड में 1979 में शुरू रहा तो उस समय जब हो जा रहा था हमने भाग ले ली सा जब मॉरिशस में आल 1985 में तह जाके हमने के पहचान शुरू हो नीमन से जब देख भाई जब शैला शिबालक जब धौड़त 8 मीटर रेस में 404 मीटर रेस में तो देश के अब सुलभ प्रकृति के स्पो के पहचान हमने के पूर्वज लोग के जो नए पीढ़ी लोग लगलन से अपन अथी कैसे भाई जैसिका अभी सुगम सुबन बा या सुनम बा बोले

0: अंजाव के तो ई लोग जावलो के पो के खेत में तो बोले चाहते हैं कि हमने के जो पूर्वज रलन स अपन अपन स्किल अपन संस्कृति अपनी भाषा जब नुवो जनवासों के दलन स अभी तक बढ़ते जाते स अभी बहुत आतले बाद दू अभी दू को तीन को नाम ले लिया वे उस समय से जब शुरू होल लड़का लोग बैठका में बैठ के समय तो नहीं रहा उस समय में सब बोलबा कि देखा ना सवेरे से
1: आज के समय में तो सब कोई बोलेला
0: सब के समय नहीं मिलेला हमने के सुना हमने के पूर्वज लोग
1: हाँ
0: सवेरे चार बजे अंधार में भी सूर्य तो भी उठल नहीं बा
1: हाँ
0: दाके खेती कान काटत हुन सा
1: जी
0: और रात के शाम के जब सूर्य डूबल बता आवत हुन सा
1: हाँ
0: और दिमाग के जब काम होता तब कोई पैसा नहीं मिलेला दो घंटा जब काम करतलन सा तो ऊ सोचला एगो कैसे गुलाम ही की तरह रहल कैसे काम करब पैसा कुछ नहीं मिले और इस उस समय सोच जब एक दिन बीमार हो जेब एक दिन बीमार हो जाए तो दो दिन के तो कटा जाता रहती के तो हई बताए गिरमिता के समय नहीं रहल कठिन लेकिन फिर भी वो लोग रुचि रखत रहन सर हई गेम और स्पोर्ट्स के बारे में
1: कैसे पहचान बनाई लग
0: पहचान बना के अभी जन हमनी जितना चीज जान ले सर बहुत चीज अभी तो राष्ट्र इंटरनेशनल में कितना हमनी आगे बढ़ने से स्पोर्ट के बारे में अभी बड़ा लोग के जब देखे ना अभी बोलबा कि को बड़ा के थौतों हो गए लाज आगवा से तनी स्पोर्ट करे नहीं समय नहीं बा उस समय बड़ा छोटा साथ लेके जब एक ही कैसे कहते हर धर्म के लोग हर कुम के लोग हर जाति के लोग एकत्रित होके हाँ जो मित्रता और जो भाव जो जो वातावरण पैदा होता है कि वही हमने के कैसे बोला कि हमने के देश जैसे बोले जैसा कि एक इंद्रधनुष देश कौशल है तो वही देखा कि हमने के पहचान जोड़ के यही स्पो जो है यही जो गेम स्पो था हमने के इदौचिचे जैसे बोले ला सर हमने के पहचान हमने के पहचान और हमने के शक्ति यही हमने के शक्ति है कि जब बाहर जब देश में सब ऐसा कि मॉरिशस ते एक बहु बच्चा देश है कम से मल्टी रेशियल कंट्री है कि इतना लोग सब कोई साथ मिल के और जब हर एगो स्पो होला तो ऐसने होला उस समय देखा ना अभी तो बहुत सुविधा बा बहुत फैसिलिटी बा जब एगो तैयार करब एगो मैदान खेल के तो उस समय लासो से भी करते सर लासो है कि लापुत की तरह सब लोग मिलजुल के रेखा खींचा जा रहा सर कि है जहाँ पे 100 meters की रेस हुई और जहाँ 400 meters की रेस हुई है भाई जावलो हुई है जहाँ की जावलिन हुई देखा ना उस समय में खेल रहा कि कबड्डी अभी भी त्रियोले में भी बा कि एसोसिएशन भी बा कबड्डी के उस समय जब गिली डंडा बोला था लीजा गिली डंडा तो अभी तक क्रिकेट से चलेला मॉरिशस में भी है जब भी बा जब जब सदांजलि के कुश्ते में हो जाए भी एगो क्लब बा कि वहाँ पर क्रिकेट के खेल के तो बोले चाहते हैं जो गिरमिथिया लोग अन्न से लोग के संस्कृति भाषा साथ साथ सब खेल कूद में जब देखबा ई कैसे को फुटबॉल मैच होला ई तो खेल में आवेला तो सब कोई जुड़ जाएला सा
1: हाँ।
0: घर में अपन
1: नहीं सोचलन सा हाँ। कौन छोटा बा कौन बड़ा बा नहीं सोचलन सा कौन जाति के हवा हाई सब नहीं बोला सब कोई के एकत्रित हाँ। करेलन सा
0: जब अपन रसोई में पकावत हुआ तब बोले लाइकवा के देखा तब पूछा था लाइकवा सा लाइकीवा से कि देखा तब कौन फुटबॉल खेला था केकर का नतीजा कैसे बा तो देखा ना जिरेक्टमा है जिरेक्टमा सब कोई कनेक्टिव जैसा और नहीं कि देश के जब एगो कोई लोग मैं भाग ले वेला तो सब कोई जाने चाहला सा कि उस जो भाग ले जो गेम जो स्पोर्ट्स में उसका नतीजा खुद अभी हाल ही में तो अभी वर्ल्ड कप हो ना तो पूरा विश्व सब कुछ
1: देखे
0: सब जुड़े था तभी हमने के एगो सबसे महानता बढ़ता कि हमने मनुष्य सब कोई एक रू एक ही कैसे बोलते हैं एक
1: स्पोर्ट्समैनशिप हाँ एक स्पोर्ट्समैनशिप में चला गया हाँ
0: और तो इसी तरह से कि हमने के जो देश है कैसे बोलते हैं वासुदेवा कुटुंबकम
1: हाँ
0: हर जो पूरा विश्व है एक हमने के एक परिवार है तो इस परिवार के इसी जब देखबत हमने के जो घिरमिथिया लोग रहन हमने के बड़ा दादा दादी लोग यही हमने के आशीर्वाद दिलन से कि नवा जनरेशन में चला सके देखा ना उस समय जब बैठका में बैठा दलन चला की बात करे के जब दिखबाई को इंस्टीट्यूशन लीडरशिप मैनेजमेंट और जा कोई भी नाम से नहीं जाना था लेकिन हवे कमुआ कर दन सा अभी बोलबा कि एगो

0: ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वह प्लानिंग वाला में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और कंट्रोल वो लोग करत लंसले अभी तो हमने दूसरा नाम से दे ला सर वे वो लोग बैठ के वो स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजे करत लंस
1: कैसे जो स्पोर्ट्स के जो लैपोटॉस है आज के समय में वो कम होता या बढ़ता कैसे जानब पास की जैसे जैसे तू बोलत हुआ पहले कैसे सब कोई खेलकूद में बहुत लहते गए लेवे पर आज के समय में खेलकूद काहे जरूरी हो गल बा काहे चाहिला स्पोर्ट्स करे की
0: जनेला स्पोर्ट्स हमने के स्वास्थ्य के लिए
1: हाँ हाँ
0: देखे स्वास्थ्य पहचान तावला कार्य तब करे तो उस समय देखा ना जैसे बताए कि स्वास्थ्य बहुत है पौधा
1: हाँ
0: जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही तो जीवन में कुछ नहीं सकब करे एगो चले नहीं सकब काम नहीं सकब हमने के जब देश में देखब अभी कैसे बन सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सीडी सब बहुत देर
1: बहुत
0: होता तो उस समय वो लोग भी अपन स्वास्थ्य के लिए
1: हाँ।
0: काम करते लंसन लेकिन स्पोर्ट के ओकर जरूरी क्यों हाँ कि हमने के देखा ना उस समय ऐसे बताने कि जब वो लोग बैठ के वो लोग अपन संस्कृति भाषा में बदलन जा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भा भवे इसका मतलब कहा कि सब लोग कि खुशी में रहें सा और बीमार से दूर रहें सा और कोई भी परेशानी कठिनाई न रही
1: कहे कि आज के समय में तनाव जितना बढ़ता और तनाव के कारण बहुत शारीरिक परिश्रम मतलब शारीरिक तकलीफ बहुत बढ़ता जैसे जाबे तौशो है सब हुआ था तो छोटा से ही स्पोर्ट्स करावे के और जैसे तू बोला था मान लो कोई बड़ा व्यक्ति हवन 40 के पार चल गल बा तो कैसे वो अपन खातिर एगो समय निकाली बस कि आज जैसे तू बोला था सब कोई है ये बोली हमने के तो समय नहीं मिला था हमार काम तो देर रात ले चलेला तो कैसे वो अपन अपन खातिर एगो समय निकाली
0: देखा सब श्रोताओं के यही बोली चाहते हैं कि समय के धुनबा तक कबू नहीं मिली तोरा
1: हाँ।
0: तोरा समय के खोज के निकाले के चला है कैसे बोला कि घर घर एक ही ढेला बोले जो सूर्य है सब घर में वही प्रकाश डलेला सबके वो जन समय था सला बदलाव वाल बा लेकिन अगर जब समय तू नहीं ढूंढब तो कैसे बताए समय तोहरा नहीं ढूंढ
1: नहीं मिली हाँ।
0: तो समय के उस समय सोचना बैल लैका निकाल के कैसे स्पो करेंगे और एगो दूसर बात बहुत जैसे अच्छा बोल रहा कि जब जवान लोग रह ला सर
1: हाँ।
0: युवाक लोग लेकुल जब जा लिया सर स्कूल के समय में तो स्पो जब शुरू होला तब एगो ऐसा समय जीवन के जो सौजमा आवेला कि कोई काम में हिल गल कोई शादी कर लेला तब लिए अब स्पोर्ट के समय नहीं बा बहुत सारा समझे के कि जब ई बोल जाला कि जब लाज आवश्यक स्पोर्ट ही नहीं होता जब देखबा निमन से कि हमने के पूर्वज लोग अपन लड़का लोग के अपन दादा दादी लोग के बतलावत सके स्पोर्ट में भाग लेके साथ तो इसके जो प्रभाव पड़ेला हमने के स्वास्थ्य में तो ई अगर जे जितना काम करबा देखा हमने के को हमने के जो हमने के दिल है वो छोटा है उसमें काम करबा जस्ती कैसे वो लुत्तों के जब हाली भगेबा तो हाली से टूट डाला तो शरीर भी ऐसने है
1: हा।
0: और उस समय जब लड़का लोग खेले जब से वातावरण के खेले वो लोग समय के निकाल के जाके खेला तलन सा कैसे वो कोई सिरिंगोल उड़ावता कोई खेला था दौड़ता गुलीगंटा तो उसके जब देखबा ओकर ओकर कैसे लोग के पह सुनाली थी जैसे बोला जला
1: हा, हा।
0: कि हमने के दिमाग में एगो ऐसन कैसे बोला कि खुशहाली जम के
1: दिमाग निमन से काम करे
0: तो ओकर में हमने के दिमाग में आवेला एगो सीरोटोनिन मेलाटोनिन डोपामिन ये सब जब निकले ला हमने के कपार में के दोन हार्मोन्स तो इतना थोड़ा खुशी से भर देवला भीतरे कि वो किने नहीं सकबे ओके तो हमने ये जो खुशी मिलला जगह कोई के जब सफलता प्राप्त करला जब सफलता प्राप्त करलक तो आवी बोलिए देखा ना हम एगो मेडल आनी ये कर ली तो वो खुशी नहीं सकब कोई से किने देखे ना सब कुछ सकबे काम करब जहाँ भी इस बा की दौड़त है लेता नहीं बा समय के जैसे बोला अभी के समय में कोई बहता कि कहाँ करते हुआ तो सुन सक बा नहीं नहीं हमके लेता नहीं बा हमके लेसो जाए के बा हई बा करे के फजीर के जब उठ पाता चला मोबाइल के देखे के कौन ची कुछ नहीं बा
1: हाँ।
0: तो उस समय में कुछ नहीं रहा मैं जब स्वास्थ्य कुछ भी कर जब स्वास्थ्य चल गल तो लड़का लोग उस समय निकाल के ढूंढ के थोड़ा सोचे ना फजीर से कान काट के कान के लात के रात के आए के बाद फिर वो लोग समय निकाल के जैसे थोड़ा एग्जाम दे लिया कि
1: पहला भी 24 घंटा ही रहल आज के समय में भी 24 घंटा ही सब कोई के मिला
0: समय के कोई के जस्ती कमती नहीं मिला पाए के समझे कि समय समय कोनो भी

0: पहनला कोनो भी महंगा के, लेकिन वो घड़ी पारी भी चली कोनो भी कार में चला, कोई बीएमडब्ल्यू के कार में चलवा या चल के चलवा, लेकिन रास्ता वही रहला,
1: वही रहला, सही बोला,
0: रास्ता वही रहला,
1: बिल्कुल
0: रास्ता वही रहला कि जीवन में अगर जे समय के गुण में करे तो तुहरा नहीं तुहरा चला निकाल के, तो अभी के जैसे बोला हुआ उस समय जब सख्तन से निकाल के स्पोर्ट में ध्यान दे भाग ले, तो काहे नहीं हमने के अभी के उसी वही तो बैन का करता हूँ जैसे बोली रहता वही तो घड़ी में ना, तो अगर जो निकलब तो तुहर स्वास्थ्य अच्छा रही, और सबसे जब मिलब जुलब तो जितना हमने के देखे ना हमने
1: सोशली से हो,
0: और देखे ना हमने एगो ऐसा मनुष्य नहीं से कि अकेले नहीं सकब से रहे, चाहे ना बात करे के, जब बात करब तो जितना थका जितना स्ट्रेस है तो वो निकले ला, और उससे हमने के अच्छा स्वास्थ्य भी बनेला, और जैसे बता कि हमने आगे बढ़ीला सा, और हमने के जब कैसे थोड़ा बली एक परिवार से शुरू होला ना, एक परिवार
1: और ऐसा भी हो जाला कि मान लो थ्राका के तू पता से करत हव सोशली से करत हव, तो कहूँ ना कहूँ तोरा निदे मिली कि कैसे तू सोल्यूशन ढूंढबा ओकर कैसे तू करब, तो स्पोर्ट्स एगो माध्यम है सब कोई के संगे जोड़ेला, सब कोई के नजदीक लावेला, और स्पोर्ट्समैनशिप एगो लीडरशिप के जो भावना है उ त्योहार में बढ़ावेला। तो जी हाँ, आज संजीव कुमार बाबुआ जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी हमनी के संगे जुड़ले हवन, और जैसे स्पोर्ट्स कितना जरूरी है तोहर स्वास्थ्य खातिर ओकर पर ज़्यादा बल देवत हवन, और संगे संगे जितना भी कोई स्पोर्ट्स खोजत हवन कौन स्पोर्ट्स जस्ती अच्छे है इंडोर की आउटडोर, अभी थोड़ा घड़ी में जानब सा, और आप सब कोई के जना देवा था ये हमनी के संगे आज तकनीक पर साथ देवा था हवन फिजान भाई, और साथ हवन उरुसा, और हमनी के प्रोड्यूसर हवन शीतल लोबिन, तो बस साथ देते रहिए, एगो गीत के ब्रेक ले जा, थोड़ा घड़ी में हाजिर हो जा।

0: चर्चा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, और बिल्कुल आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार बाबुआ जी जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है हमारे खेल कूद का और ये क्यों आवश्यक है। वैसे आज के समय में सभी लोग यही शिकायत लिए बैठे होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम खेतों में काम करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, तो हमारा तो शारीरिक श्रम वहीं हो जाता है, तो स्पोर्ट्स की क्या आवश्यकता है। चलिए डॉक्टर जी से जानते हैं। डॉक्टर जी, जब कोई महिला या पुरुष बोले लंसा कि हम ढेर काम करीला, हमार शारीरिक बहुत श्रम करीला, हम खेत में काम करीला, हम मजदूरी करीला, तो हमार तक शारीरिक श्रम हौजे हो जाला, लेग्जेसी तो हौजे हो जाला, तो लेग्जेसिस और शारीरिक श्रम में कौन अंतर बा?
1: देखा कि मैं बहुत बड़ा अंतर बा, जब कोई बोलेला कि हम काम कर दिली, मांसों के काम कर ली जैसे बोलला, हाँ। उस समय भी कान काते तलनसा कि कान लादे तलनसा में, अगर जब कान लदेन समझा कि हमने स्वास्थ्य कर दिली सब हमने के स्पो हो गल, तो उस समय हमने के कपन नहीं आवत, हमने के बड़ा बड़ा स्पो स्पोर्टमैन नहीं आवत,
0: हाँ हाँ।
1: उस समय देखा ना, काम और खेल और कूद और स्पोर्ट एगो दो अलग बात है। जब हमने काम करे सर उनके हमने के जो दृष्टि से देखिला सर हमने के शरीर में जो प्रभाव पड़ेला पा गई नहीं है, काहे खातिन जब स्पो करब तो वो दूसर हमने के जैसे तुहरा बोली पहले कि हमने के शरीर के इतने जागृत करेला, हमने के आत्मा की शक्ति देवेला कि जो हम शक्ति आवेला कि हमने के कपार में जैसे बोली सेरोटोनिन मेलाटोनिन और
0: ऑक्सीटोसिन
1: आवेलन जा, ये सब देवेलन जा कि हमने के शक्ति देके मैं जब काम करब तो स्ट्रेस में चला काम करे के पैसा के और हमने के शरीर में ओकर प्रभाव पागे नहीं होला। तो अभी बोलबा ना हम काम कर दिली, घर के जितना रहल नेतवाये कर दिली, सफा कर दिली, हम काम हो गल खेत में गली काम करे, स्पोक एक कौन जरूरी बा। देखा अगर जो निमन से देखा जब हम लिचित करे सके हमने के एगो स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन बात हमने के इसमें जो पढ़े लन जाओ लोग के बतिया ले जा साइंटिफिक में कि कौन प्रभाव पड़ा स्पोक के बारे में। और एगो दूसरा बात है इसी विषय में बोले चाहते कि बोले लन सा कि घर के मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब कुछ है जब जब कुछ करब मतलब समझावत हैं कि जब कुछ करब ना बोले सा ई नहीं तो एक एक जरूरी ने बा के ओकर ना पोतोंस नहीं देला सा। और दूसर ब्याह कि बोले सा कि जब काम करते उस समय देखा ना काम करते हमने के दादी दादा लोग बोले सा कि कदवा पर सितवा चो,
0: हाँ।
1: एक मतलब है कि जो बलवान नहीं हवन है कि थोड़ा सुनवन कि ऊपर दबाव डाले के,
0: हाँ हाँ।
1: तो इसका मतलब कुछ है जब स्पो करब और काम करब दूगो अलग बात है। और अभी के समय में जैसे बोली जा चर्चा कर ली जा कि कोई के समय नहीं बा, हई बा करे के हो बा करे के, देखा ना दुनिया में कहाँ कुछ भी करब हमने के समय जब आवेला तो पहले सब कुछ छोड़ के जाए के, तो स्पो भी जब हिली ला जा तो जब हमने के स्वास्थ्य अच्छा रखे के बा तो ई अपन के समय निकाल के जब देखबा तो कर

0: प्रभाव कर ओकर जो इफेक्ट बोली ला सा पारे नहीं है।
1: पारे नहीं
0: जब थक जब काम करके तो नींद लग जला पारे ही नहीं लेगी जो स्पो करके कर ला और जब से के मिलबा तो ये बोले थे कि श्रोताओं लोग के हाई जो अच्छा सोचने या कि जब सोचबा कि हम काम कर दिली और समय ने बा हम स्पो कर दिली।
1: डॉक्टर जी एगो और सवाल हमने के मन में आवा था, जैसे मान ला जा आज के समय में तो एक्सरसाइज करे भी बहुत लोग सोचे लंसा कि जिम में जाइबा तब वो एक्सरसाइज तू करे सकबा और आज के तब महंगाई के समाना कितना चले आवा था तो सब कोई बोले हमने के स्पो करे के भी पैसा चाहिला तो हई बात में कितना तथ्य है कि पैसा के बिना भी तू व्यायाम करे सकबा और हाई सवाल पर हम पहला पूछब जा और एक और सवाल धमनी के दिमाग में आवा था उपाद में पूछब जा।
0: धन्यवाद एक प्रश्न के लिए। देखा ना जब बोलबा की पैसा और स्पो जिम ही नहीं चला जिम में जाए के पैसा पे के हर महीना में स्पो करे के घर ही से सकबा शुरू के सब चीज घर ही से शुरू होला थोड़ा सा चल बा थोड़ा उठ बा बैठ बा तो नहीं चला जिम में जाके करे के। देख बोले अभी जब कोई बीमार हो जाता है फिजियोथेरापी करे के हई करे के व्यायाम करे के जब उस समय देखबा हमने के जब नारी लोग रहा कि कोई पेट से रहा जब खेत में जाता लंसा काम करे लोग शक्ति रहा जब फजीर के गलन सा काम करे शाम के एगो बच्चा तो इसका मतलब कुछ यह कि इतना लोग शक्तिमान रहन सर लोग कि हॉस्पिटल के जरूरी ना कितना लोग हमने जन्म ले लें सर कि
1: घर में
0: तो बोले चाहते हैं कि चाहना एगो एगो कैसे एगो इंस्टीट्यूशन जैसे बोला कि अभी चाहना एगो जिम में जाके और सब लोग पैसा नहीं लो के तो पैसा नहीं बस पो करे के मैं पैसा जब नहीं रही तो नहीं मतलब नहीं है कि नहीं सब बस पो करे हमने के चाहना जो भी साधारण देखो ना कहीं जब पढ़े के बाद तो नहीं चाहे को निमन लताब और निमन प्लीम चाहला लिखे के तब सकबा विद्या पाई और एग्जाम पास हुई।
1: पहला तो नीचे बैठ के पढ़त रहन
0: उस समय बैठका में जाके चिराग बार के पढ़त लीजा अभी तो सब सुविधा बा लेकिन भी देखा थे कि जो हमने के रिजल्ट बोले ला जा कि पागे नहीं है तो इसका मतलब ये है अगर अच्छा स्वास्थ्य के चाहब तो पैसा कैसे पे करके नहीं चाहना कि जाके इंडोर या आउटडोर गेम के बला उस चाहना तब सब बस पो करे चले कि मॉरिशस में तो सगरो सब चले घर में
1: और अभी तो सगरो सगरो ट्रैक्स बना दे ले हवन और लापलेन बाजू में बास भीरी में बा सिर में कोई नहीं जाला हो जा
0: देखा ना यही तो एगो सबसे बड़ा देखा ना इतना सुविधा बा इतना फैसिलिटी बा अभी के समय में
1: कोई फायदा नहीं उठा हुआ था
0: उस समय ढूंढ के जाके खोज के थोड़ा एग्जरसाइज कर स्पो कर अभी सब सुविधा बा लेकिन हमी के जो हमने के विचार बा जन्म के सोच बा इस पर चाहना सब लड़का लोग के समझाए के कि समय रोज के चाहना निकाले के और निकालबा तो देखो ना जैसे थोड़ा फिर से अभी सुविधा देवत है एग्जाम देवत है कि उस समय वो लोग ढूंढ के फजीर के 6 बजे से 7 शाम के 6 बजे रात के वो लोग समय छोड़ के खोज के अपन लड़का लोग के बतलावन
1: सबर बचलन फिर भी अपन व्यायाम के खातिर व्यायाम करना
0: वही बोले तो है कि कोई के तुम्हारा आज पैसा नहीं बात है इसका मतलब नहीं है कि नहीं सब एगो कोई स्पोर्ट में भाग ले या कोई कुछ भी शुरू करे कोनो खेल में खेल कूद में।
1: डॉक्टर जी हैजा पर जैसे तू बोला था वह घरे से सकबा शुरू करे तो इंडोर गेम जस्ती है कि अच्छा है कि आउटडोर गेम जस्ती अच्छा है।
0: देखा ना हमने के जन पूर्वक हमेशा से हमने सीखल जा कि प्रकृति के साथ रब नेचर के साथ रब तो का प्रभाव हमने के आयुर्वेदिक सिस्टम में जब देखबा और जब हमने सांस ले ला सा जब सांस ले जो ना ऑक्सीजन आवेला हमने के जन प्रभाव पड़े ला कर हमने के सब नस में वो पागे नहीं है कि जब बंद चारों दीवार से स्पो कर बा जाके को जिम करते है कोई देखा होता पड़ी वेंटिलेशन जैसे वजह की जब हवा सबने ला
1: यानी शारीरिक श्रम करे के
0: तो देखबा जब एक देता लोग कोई के फेंटिंग हो जाला कि अपन कैसे दांत लग जाल कैसे बेहोश हो गलन जा जब बेहोश हो गलन जा तो कुछ चाहना करके इसमें बात करब जा अभी मैं ही बोला चाहे कि जब से हमने सीखा हमने के एगो ऐसा शरीर है कि जब के चाहना घाम लगे के चाहना पानी हवा इसी से हमने बना ले सर ये हमने के बजाय कि जब आयुर्वेदिक सिस्टम समझ बा कि वाता पीता कफा इसी से हमने के शरीर बनल बा हर हमने के जो गुण है सतुगुण रजोगुण तमोगुण जो भी है
1: हमने के जन शरीर बनल बा जितना प्रकृति के निकट रह बा उतना तो हर खाते
0: उतना लाभ होला क्योंकि जब चल बा तो हवा में कैसे समझे कि जब

0: समुद्र के पास जब कि चलत हुआ तो उनका प्रभाव जन परेला पाखने से कि हो जन हमने बन कमरा में जन स्पो करीला सा और बन चाहे हीलिंग पावर है ना सी समुद्र तो उस यही बालिक चाहते कि जब जब प्रकृति के साथ रब हमने के जन प्रभाव पड़ेला कि सोच के
1: और
0: हमने
1: के पॉजिटिव रहेला
0: बहुत पॉजिटिव रहेला और दूसरा दृष्टि से भी आप देखबा कि समाज के अपने आप को उनका प्रभाव पा नहीं पड़ेगा
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी तू स्पोर्ट्स के एगो दुखते हवा तो जैसे हम हई भी पूछब तोरा समय बहुत कम थी रह गल बा कि जैसे तू एगो दुखते हवा तो जैसे मान ला एगो स्पोर्ट्स करत हवा कोई के घाव लग गल कोई जैसे घुमरी खा के गिर गल कोई के बहुत डिहाइड्रेशन हो गल तो हई सब में कैसे एगो एगो फर्स्ट एड देवे सकबा मतलब कौन कौन चीज ध्यान में रखे के चाहिला।
0: देखो हम इस कैसे बता इस जोन स्पोर्ट्स के जोन फर्स्ट एड बोली जा हम डॉक्टर नहीं हैं जोन क्लिनिकल डॉक्टर्स जोन ऑपरेशन सब कर ला लेकिन काम कर लें जब हाउस समय में रही जितना हॉस्पिटल बा एगो नर्सिंग ऑफिसर ले सब समय शुरू करे सा पहले तो जितना ऑपरेशन रहा जितना कोई के घाव लो के लुपिताल में आवत लन जा कि सबसे हमने के अनुभव बा कि एक्सीडेंट बा कुछ से तो हमने ट्रीटमेंट देवत ली सब तो हम अपन अपन पढ़े के दूसर दृष्टि में डाली अभी पीएचडी करनी अपन लेजिकाशों में जस्ते ज़्यादा मैं इसमें हमार बहुत अनुभव जब जब से हम स्पोर्ट लगभग 40 बलिस से अधिक हम स्पोर्ट में हैं और रीजनल से नेशनल इंटरनेशनल में बहुत कंपटीशन में इसी भाव से हम एगो थोड़ा इंस्टीट्यूशन भी के स्थापित कर ली एगो मास्टर्स पर एथलेटिक एसोसिएशन बा और एगो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन बा और मेडिटेशन हेल्थ एंड फर्स्ट एड सेंटर बा तो जब देख ली हमार अनुभव से इसी में हम बहुत दिन से इसमें लड़का लोग के और जितना लोग खिलाड़ी वन सब लोग के अनुभव दे रहे सब कौन चीज चाहना करके जब घाव लगे थे तो इससे हम हमार जो इसी में जैसे थोड़ा स्पेशलाइज होली कि स्पोर्ट्स साइंस में और स्पोर्ट के जितना घाव लगे कैसे करके तो बोले चाहते हैं कि हर स्पोर्ट्स करब तो चाहना थोड़ा थोड़ा कैसे सावधान रह के कुछ चलाओ कर कैसे चलाओ कर ट्रीटमेंट देके पहला ये बात है कि जो भी खेल खेब चला एथलीट चला दू घंटा से अगते चला खाई के नहीं सब कुछ ले बे भारी खाई के बस कि हमने के शरीर में जब देखब जब ढेर खाई के रही तो ओकर लिफे होला और सेतु जब दिब्बत की जब ले नहीं बात तो कोई बेहोश हो जाला तो इसके ट्रीटमेंट में के बारे में अभी बात करब तो बोले चाहते हैं कि हमने के जब कोई के घाव लगल गिर गया सतला नाक में से खून गिरा था हई फंसे दिला सा और सबके अनुभव दिला सा तो के चला बैठा के ओकर जो सिर है आगे करे के जब खून आगे गिरी एगो छोटा बोल सब डाल दे ओकर नाक चला जब 10 मिनट चला पेजे करे के और मुंह के खोल के जब सांस ले जब सांस नहीं लेते हमने के कपार में जब सांस नहीं चला तो हमने के जो ब्रेन सेल्स है मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है तो जब ऑक्सीजन में तो हाइपोक्सिया होला तो वो अपन ओकर इफेक्ट होला कि अनकॉन्शियस है तो जब अनकॉन्शियस हो जला फेंटिंग हो जला तो उस लोग के हमने के चला कैसे जब जब हर कोई के रकबा पीठी पड़े पीठी पड़े जब के जीभ है जब गिर जला तब के सांस लेके बहुत कठिन पड़ेला कभी जब पेट कुनिया चना सूते के पेट कुनिया रबा और अगल के रबा तब के सांस लेके अच्छा फासला तो इस तरह से हमने के रिकवरी पोजिशन बोली लाज है तो इसे बतलाएला सा कैसे करे के और धीरे धीरे हमने ओकर देखिला सा कि कैसे ओकर पल्स बा इसकी रेस्पिरेशन शुरू हो बाग ने जब हाई एगो है जब एगो अनकॉन्शियस पर्सन है बहुत मिलेला पास की लड़का लोग धौरे लन सा जन जितना खिलाड़ी लोग धौरे धौरे देखो ना जब हमने हमने के नमक और पानी जब पेजी वाला सा मेरा पेस्पिरेशन तो और पानी नहीं बात उससे हमने जब हमने के इलेक्ट्रोलाइट जब चल जला तो ऐसा हमने फेंटिंग हो जला सा या शॉक में चल जाता शॉक बला जला कि हमने के जितना हमने के जो ओगान बा जितना हमने के जितना कैसे हार्ट ब्रेन किडनी इस सब जब लोग के ऑक्सीजन नहीं मिलेला तो उन लोग शॉक में जाता ये लोग के ट्रीटमेंट जला सा कि कुवेयर करके और गोर ऊपर के कोई हाइपोजेमिया हाँ हाइपोजेमिया में कि ठंडा के अथी हो जला टेम्परेचर नीचे हो जला हाइपोजेमिया अभी देखबा कि कोई बहुत से बीमारी बा कोई जावेद बोले सा तो वो लोग अभी हमने के जितना मास्टर्स आते सबके बोले सा कि अपन मेडिकल सर्टिफिकेट ट्रीटमेंट

0: देख के निमन से आई के स्पो करके कोई के घाव लग गल, कोई के घाव लग गल, हाथ में हड्डी टूट गल। तो अब उसके देखा ना, जब घाव लगेला तब हमनी के फूले लगेला। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब फूले लगेला तो एक राइस ट्रीटमेंट बोलेला सर। तो उस जब हमनी के हबी तो इस राइस बजा के ओके चना उठा दे के ओके कंप्रेस करके आइस सब दे के और जमी प्रेशर से जमी बड़ा नहीं मोटा नहीं हुई। लेकिन जब हमनी के जब पूर्वज लोग रहन सर, जब लड़का लोग उस समय भी खेला था सर था, हाँ। तो उस समय हल्दी के इस्तेमाल करते रहन सर, नीम के पत्ता के जो और जो विधिक जन दवा
1: चीज हाँ
0: अभी तभी इसका जब अभी जब कंचा हल्दी लेके दूध में भी है तो एगो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एक ऐसे एलोवेरा भी है। तो वो भी अभी दवाई की तरह पर बात, लेकिन वो जब देवे सा कि जब मोटा हो जाए ओकर कमती अथी करे के ओकर दुलिया भी कमती करे के में अभी जब फर्स्ट बलिला सा फर्स्ट एगो ऐसा ट्रीटमेंट था कि बोले सा कि
1: जब के आवे के अगाड़ी जैसे
0: डॉक्टर अगाड़ी ओके जन कोजिशों के घाव ने के, हाँ। और उसके हाले से रिकवर करके। तो इस हबी इस कैसे बात है, कोई कोई सीखे चाहता इस बारे में तो हमने हमेशा हर सप्ताह इसमें कोर्स दे ला सर, बतला ला सर कैसे फसेद करे के, बौंदाज कैसे डाले के और कैसे चला जब घाव लग गल और कौन ट्रीटमेंट देके जैसे
1: जैसे समझे के
0: या कोई भी पाशों ने या कोई भी घर भी रही तो इस अनुभव बहुत जरूरी है फर्स्ट एड के। तो अगर जब कोई चाहे तो सब हमने के बोले हमने के निमोगो सब सोने के 35 या ईमेल एड्रेस मॉरिशस हेल्थ एगो देवाई सब सुने करे या हमने के ईमेल के mauritiushealthmeditation@gmail.com या मॉरिशस मास्टर्स पैराथलेटिक एसोसिएशन या एथलेटिक स्पोर्ट्स mauritiushealthmeditation@gmail.com इससे अगर जो लाभ उठाए जाए पैसे इस मंच में हम सब फसेद के बारे में नहीं सक बतलाए पैसे समय के ध्यान के रखते हुए। हाँ
1: डॉक्टर जी, आज के कार्यक्रम के हैजा पर बिल्कुल हम चलाल हैं बहुत अंत में, तो जाते जाते हमार श्रोता लोगन के कौन दू लाइन में कौन चीज बोलब।
0: देखा ये बोले कल कि स्पोर्ट एगो ऐसन कैसे बात है कि हमने के
1: बहुत जरूरी
0: चीज है कि ये कोई दीवार नहीं चाना रही के, कोई सीमा नहीं चाना रही के, कोई ब्लॉकमा नहीं चाना रही के, और जी भी कोई भी रास्ता से आलवा कहीं भी देश से कहीं से आलवा हम, लेकिन हमने की मंजिल एक ही है कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा प्रकृति के लिए, और इसके लिए कि हमने एक ही कैसे सूत्र में बन जाना सा। हाँ। और ये हमने के सबसे बड़ा कैसे के पहचान है कि हमने के देश के एक मल्टी रेशल कंट्री जैसा जो बहु जातिया देश है सा, और इससे हमने आगे के प्रगति के आगे बढ़े के यही सबसे बड़ा हमने के एक सीमा है। और इसे सबसे मांग बा कि इसमें जुड़बा तो इसका तुम्हारे की हर
1: फायदा
0: कितना रही के, हाँ। और इसी में से हमने के बहुत प्रगति के ओर लेके चला।
1: तो चला इसी के साथ डॉक्टर संजीव कुमार बाबुआ जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, काहे के स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, जे तू स्वस्थ रह तो समाज स्वस्थ रही और कैसे तू दूसर लोग के भी एदे करे सकब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। और हमने के साथ जुड़ल रहलन भाई फिजान टेक्निक पर, साथ देलन हमने के उरुसा प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर रहल शीतल लोबिन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना श्रोता लोगन इस कार्यक्रम के सुनलन देखलन बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद। और फेरों से भेंट आप सा एगो नवा कार्यक्रम के साथ, इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
0: अच्छा, नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 8 बड़े कदम उठाने की सिफारिश की है। आज इबन में सरकार को सौंपी गई कंट्री ग्रोथ एंड जॉब्स रिपोर्ट में संस्थानों, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर खास जोर दिया गया है। इनमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मॉरिशस

0: स्पोर्ट्स अथॉरिटी जैसी सरकारी संस्थाओं की भूमिका में बदलाव भी शामिल है। श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने, कर्मचारियों की सुरक्षा बनाए रखते हुए विवादों का जल्द समाधान करने और रेम्यूनरेशन ऑर्डर्स को आसान बनाने की भी सिफारिश की गई है। विश्व बैंक के मुताबिक इन सुधारों से 2050 तक आर्थिक विकास दर 6.7% तक पहुंच सकती है। मॉरिशस में कई दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस संरक्षण अभियान में जुगेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट पिछले 50 साल से अहम भूमिका निभा रहा है। मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर किए गए इस काम से कई प्रजातियों को नया जीवन मिला। मॉरिशस में अपने 50 साल पूरा होने पर जुगेल ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर इस सफर को याद किया। मॉरिशस में नए फिल्मी हुनर को आगे लाने के लिए नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 शुरू की गई है। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इस प्रतियोगिता में इस बार 3 श्रेणियां रखी गई हैं, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 12 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को सामने लाना और मॉरिशस में सिनेमा को बढ़ावा देना है। वहीं MFDC के 40 साल पूरा होने पर कई खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें सिनेमा वीक, ट्रेनिंग, फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और गाँवों तक सिनेमा पहुँचाने की पहल शामिल है। विदेश स्तर पर फ्रांस में छात्रों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। इस बीच पुलिस ने ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये फैसला लेंस में ग्रेनेड फटने से 15 साल के एक छात्र का हाथ कट जाने के बाद लिया गया। घटना कैसे हुई इसे लेकर पुलिस और छात्रों के अलग अलग दावे हैं और जांच चल रही है। बुधवार को 500 से ज्यादा स्कूल पूरी तरह या कुछ समय के लिए बंद रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इन अहम खबरों को हम विस्तार देंगे 6 बजे के समाचारों में। अभी के लिए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। अलेमोंग पुस्तुफ्लाक में 22 साल की 22 years old के केशव बीपन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 6 बजे उनके भाई कविन कुमार बीपन के घर पुस्तुफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे आज 6 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Continuous music.
2: शाम का ये खूबसूरत वक्त, हल्की सी ठंडक और दिल में बसी किसी खास शख्स की याद, ऐसे ही लम्हों को और हसीन बनाने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन।

अनुराधा और 5 बजे तक हम बात करेंगे मोहब्बत की, यादों की और उन गीतों की जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो दिल थाम लीजिए क्योंकि शाम होने वाली है थोड़ी और रोमांटिक। और 4020 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस भेजना है तो 5250620 पर।

सुने थे चौहान जी। हाँ, शाम का खूबसूरत समा है और दिल से मिले दिल प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। मोहब्बत को अल्फाजों की जरूरत तो नहीं है, कभी एक नजर काफी होती है तो कभी एक मुस्कुराहट और कभी कभी एक गाना को वो कह देता है जो हम कह नहीं पाते। इसी एहसास के साथ सुनिए ये खूबसूरत तराना।

जहां आज की शाम आप किसी खास इंसान के नाम करना चाहते हैं, कोई गाना, कोई खास गाना, तो सोचिए वो कौन सा गाना होगा जो आप उन्हें डेडिकेट करेंगे। तो शायद अगला गीत आपके दिल की वही बात कह दे। इस गाने को हम साजिद भाई के लिए बजा रही है, जो रोज हिल का रहने वाला है, सभी सुनने वालों के लिए, और यह है कुनल गंजवाला की आवाज़ में।

आप सभी सुनने वालों के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लव यू ऑल. दोस्तों और अब बारी है उस आवाज़ की जिसने अपनी सादगी और सुरीले अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई. कौन है? अभिजीत सावंत. आज उनके बर्थडे हैं तो लेट्स विश हिम बेस्ट विशेस. और अभिजीत सावंत ने इंडियन आइडल के पहले सीजन का खिताब जीतकर अपने संगीत मतलब उनके संगीत का सफ़र की शुरुआत को एक नई पहचान दी. उनकी आवाज़ में रोमांस भी है, एहसास भी और एक अलग ही मिठास भी. तो आइए अब सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये अगला गाना जिसे हम वाकवा से लता जी के लिए उनके पति प्रदीप जी, बेटा अश्विन, बहू शिमला, बेटियां दिया याशना, दामाद एवं उनकी नातिन ईशान भी के लिए चला रहे हैं. और साथ ही साथ दागन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लविशा और समस्त आपादू परिवार जो खुशनौ के रहने वाली है.

0: और इस समय शाम के 4:35 हुए हैं। जाओ दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का ये वक्त सिर्फ सुकून के नाम है ना। तो जब साथ हो मोहब्बत से भरे गीतों का तो शाम का और भी हसीन हो जाती है। और आप बने रहिए रेडियो मनोरंजन के साथ।
1: RM3 Radio.

तो दोस्तों कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक प्यारी आवाज़ है एसपी बाला सुब्रमण्यम की। तो आइए उनकी आवाज़ के साथ साथ अलका याग्निक को सुनते हैं, इस शाम को थोड़ा और हसीन बनाते हैं। और बेल बॉस शिवानी की फरमाइश पर दामाद अरविंद के लिए ये खास गाना उनकी बर्थडे के उपलक्ष पर, उसके जन्मदिन के अवसर पर पत्नी शिल्पा माफिया पापा राज की ओर से अरविंद जी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: कुछ कमी सी लगती है।
1: कहते हैं चमत्कार एक बार होता है, हमारे पास आप हैं, ये चमत्कार से कम नहीं। दुनिया के सबसे अच्छे बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये गाना जो हम चलाने वाले हैं उन सभी सभी लोगों के लिए जिनकी आज सालगिरह है, इनका जन्मदिन है, सभी माओं की ओर से बहुत ही प्यार के साथ। और यही गाना हम कौफुको से लेहक और सिया के लिए उनके दादा दादी की ओर से बहुत ही प्यार के साथ।

जहाँ दोस्तों पता ही नहीं चला कब मोहब्बत से भरी ये सफ़र बस शाम गुजर गई। उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल में कुछ खूबसूरत यादें ज़रूर जगाई होगी। शाम के 4:51 हुए हैं।

शाम के 4:55 हुए हैं, ठीक 5 बजे आप सुनेंगे अनकही एक कहानी श्री विश्वानंद जी और डॉक्टर शेखर जी की प्रस्तुति में, सुनना न भूलें। और चलते चलते दिल से मिले दिल इस प्रोग्राम के एक अंतिम भेंट है, आप सबों के नाम करना चाहेंगे। बस इसी प्यार और अपनापन के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, मिलेंगे फिर किसी हसीन शाम, किसी खूबसूरत गीत और किसी नए एहसास के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन और मोहब्बत से आपके जो मतलब मोहब्बत को दिल से जिंदा रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, अनुराधा आपसे अब अनुमति चाहेंगे। नमस्कार और शुभ संध्या।

94.95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। अनकही एक कहानी

0: न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है और गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है, तत्वज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। श्रोताओं, दैनिक जीवन में गुरु हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। उदाहरणतः विद्यार्थी को केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सही मूल्यों को अपनाने के लिए भी गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। एक सच्चा गुरु ही हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में अनुशासन, परिश्रम और निरंतर अभ्यास सफलता के लिए कितना आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। ध्यातव्य है कि यह प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान और MBC के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोफेसर राजशेखर भी अपनी स्वरचित कहानी लेकर हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। श्रोतागण, आपको बताते हुए हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हम लोग यानी हम दोनों, मैं और गुरु बिस्वा, आज 60वां यानी 60 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और यह सब आपके प्रोत्साहन के कारण हो रहा है। जो आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, एक से बढ़कर एक कहानियां हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो सफलतापूर्वक इस 60वां यानी 60 प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें हृदय से सुना और हमें लगातार प्रोत्साहित किया। तो प्रिय श्रोतागण, आज की जो अनकही एक कहानी है वह गुरु रामानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस बार भी मॉरिशस में सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही मन से, तन से और हृदय से यह विश्व शिक्षक दिवस मनाया है। तो इसी अवसर पर हम उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं जो केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि अपने शिष्यों को जीवन का सही मार्ग दिखलाते हैं। इसी भावभूमि में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे महान गुरु की कहानी जिन्होंने मध्यकालीन भारत में भक्ति को जाति, वर्ण और सामाजिक भेदभाव की सीमाओं से मुक्त कर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि से आरंभ होकर काशी की ज्ञान भूमि तक पहुंचने वाले रामानंद के जीवन

0: जीवन में गुरु स्वामी राघवानंद का विशेष स्थान रहा। बालक रामानंद की ज्ञान पिपासा, ईश्वर की खोज और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ने उनके गुरु को भी प्रभावित किया। उन्हें राम तारक मंत्र और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई और यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसने आगे चलकर भक्ति की नई धारा को जन्म दिया। लेकिन सच्चे गुरु की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह स्वयं कितना जानता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने ज्ञान का प्रकाश कितने लोगों तक पहुंचाता है और कितने जीवनों को बदल देता है। रामानंद ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोलने का संकल्प लिया। उनके लिए मनुष्य की पहचान उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और भक्ति भाव से थी। और फिर उनके जीवन में आए ऐसे शिष्य जिन्होंने आगे चलकर भारतीय भक्ति परंपरा को नई दिशा दी। और आप सभी लोग जानते हैं संत रैदास और संत कबीर को। तो आइए आज विश्व शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं उस गुरु की प्रेरणादायक कहानी जिसने अपने शिष्यों को केवल मंत्र नहीं दिया, बल्कि सत्य, समानता, प्रेम और मानवता का मार्ग दिखाया। आइए सुनते हैं गुरु रामानंद। 14वीं शताब्दी का भारत जब सामाजिक विषमता और धार्मिक संकीर्णता के अंधकार में घिरा था, तब तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर एक ऐसी आत्मिक चेतना का अवतरण हुआ जिसने भक्ति की अविरल धारा को जन जन के लिए प्रवाहित कर दिया। यह कहानी है उस महापुरुष की जिन्होंने जाति और वर्ण की सीमाएं तोड़कर सत्य और प्रेम को भक्ति का मूल आधार बनाया, स्वामी रामानंद। तो उसी पवित्र मिट्टी प्रयागराज पर कानकुब्ज श्रेष्ठ पुण्य सदन और उनकी धर्मपत्नी सुशीला के गृह आंगन में बालक रामानंद का अवतरण हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही बालक के शांत, गंभीर और तेजोमयी स्वरूप देखकर माता पिता अत्यंत विस्मित रहते थे। और एक दिन उनकी माँ सुशीला बहुत ही प्यार से बालक के मस्तक पर हाथ सहलाते हुए अपने पति से कहती हैं, स्वामी, हमारे इस बालक की आंखों में एक अजीब सा अलौकिक तेज है। जहां अन्य बालक खिलौनों के लिए मचलते हैं, वहीं यह घंटों आंखें मूंद कर ध्यान में लीन रहता है। अपनी पत्नी सुशीला की बात सुनकर पुण्य सदन कहते हैं,
1: सत्य कहती हो सुशीला, यह कोई साधारण बालक नहीं है। शास्त्र ज्ञान की जिज्ञासा इसमें इतनी तीव्र है कि यह संसार के बंधनों से परे किसी महान आत्मिक लक्ष्य की खोज में दिखता है।
0: 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के उपरांत बालक की ईश्वर भक्ति और शास्त्र जिज्ञासा पराकाष्ठा पर पहुंच गई। परम सत्य और ज्ञान की खोज में वे काशी की ओर निकल पड़े। और जब वे काशी पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात स्वामी राघवानंद जी से होती है, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। 12 वर्षीय बालक रामावत, जिसे बाद में रामानंद कहा गया, बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में शीश नवाते हैं। तभी स्वामी राघवानंद अपने नेत्र खोलकर बालक के तेजोमयी चेहरे को देखते रह जाते हैं और फिर अचानक बोल पड़ते हैं, बालक, तुम्हारा रूप और तेज असाधारण है। इस अल्पायु में तुम काशी की इस ज्ञान नगरी में क्या खोज रहे हो? रामावत, जो बहुत ही बालक है, हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और गंभीर स्वर में गुरु के सामने नतमस्तक होकर कहता है,
1: गुरुदेव, मैं इस संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग और सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन की युक्ति खोजने आया हूं।

0: कृपा कर मुझे अपनी शरण में लीजिए।
1: स्वामी राघवानंद उस छोटे से बालक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और थोड़ी देर परखने के बाद बोलते हैं, संसार की माया से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है वत्स। शास्त्र कहते हैं कि कठिन तप और आचार विचार ही प्रभु की प्राप्ति का साधन होते हैं। तुम क्या त्याग कर सकते हो?
0: गुरुदेव, यदि प्रभु की प्राप्ति में केवल कठोर आचार या बाह्य नियम की ही बाधा है तो वे सच्चे साधन नहीं हो सकते। सर्वभूतों में श्री राम का दर्शन करना और प्राणी मात्र के प्रति निष्काम प्रेम ही मेरी दृष्टि में भक्ति का सच्चा आधार है।
1: रामावत अर्थात रामानंद की बात सुनकर स्वामी राघवानंद बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और गदगद होकर कहते हैं, अद्भुत बालक, अद्भुत। तुम्हारी यह विशाल और उदार दृष्टि ही आने वाले युग में भक्ति का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वामी राघवानंद जी बालक रामावत को अपना शिष्य स्वीकार कर षडक्षर राम तारक मंत्र और वैष्णवी दीक्षा प्रदान करते हैं। यहीं से बालक रामानंद के युग प्रवर्तक जीवन का पहला संकल्प प्रारंभ होता है। स्वामी राघवानंद जी से राम तारक मंत्र और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात युवा रामानंद ने वर्षों तक गहन शास्त्र चिंतन और साधना में अपना समय व्यतीत किया। इसके बाद वे संपूर्ण भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों की देशाटन यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा, सामाजिक विषमता और भक्ति पर मठाधीशों के वर्चस्व को निकट से देखा। लंबी यात्रा से काशी लौटने पर उनके मन में भक्ति का दायरा किसी जाति, वर्ण या बाह्य नियमों में बंधा नहीं था, परंतु उनके आश्रम लौटते ही पारंपरिक गुरु भाइयों और रूढ़िवादी आचार्यों ने यात्रा के दौरान छुआछूत और खान पान के कड़े नियमों की अनदेखी करने पर कठोर आरोप लगाकर रामानंद के बहिष्कार करने का प्रयास किया। एक रूढ़िवादी आचार्य बहुत ही कठोर और आक्रामक स्वर में रामानंद को संबोधित करते हुए कहा, रामानंद, तीर्थाटन से लौटने के बाद तुम आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तुमने मार्ग में भिन्न भिन्न जातियों और वर्गों के लोगों के साथ जल और अन्न ग्रहण किया है। खान पान की इस अशुद्धता से हमारा संप्रदाय और परंपरा दूषित हो रही है। रूढ़िवादी आचार्य की बात सुनकर स्वामी रामानंद बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए। उनका मन शांत, चित्त गंभीर और वाणी में ओजस्वी रूप था। उन्होंने बहुत ही प्रेम से कहा,
0: पूज्यवर, परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में कोई अशुद्ध कैसे हो सकता है भला? जब ईश्वर ने सभी जीवों के भीतर एक ही आत्मा का वास रखा है तो फिर भोजन, वस्त्र और स्पर्श के नाम पर मनुष्यों में यह भेद कैसा?
1: शास्त्र मर्यादा ही धर्म का आधार होता है रामानंद। यदि तुमने अपनी यह छुआछूत विरोधी नीति ना छोड़ी और प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हें इस संप्रदाय से अलग होना पड़ेगा।
0: यदि प्रभु की भक्ति केवल रसोई के चौके और छुआछूत के नियमों तक ही सीमित रह जाएगी तो शबरी के झूठे बेरों की भक्ति का क्या होगा? भक्ति का संबंध किसी कुल या वर्ण से नहीं, केवल पवित्र भाव से है, पवित्र भाव से।

0: लगता है और उन्हें देखते ही सभी जगह सन्नाटा छा जाता है और बहुत ही गंभीर और करुणामय स्वर में स्वामी राघवानंद कहते हैं, शांत हो जाइए, रामानंद के विचारों में अधर्म नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण निहित है। रामानंद, यदि यह पारंपरिक व्यवस्था तुम्हारी इस उदार चेतना को नहीं संभाल सकती तो तुम स्वयं एक स्वतंत्र सर्व समावेशी भक्ति मार्ग की स्थापना करो।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब पंचगंगा घाट पर भक्ति का वह द्वार खुलेगा जहां ब्राह्मण से लेकर शूद्र, राजा से लेकर रंक और पुरुष से लेकर स्त्री तक सबको प्रभु श्री राम की शरण समान रूप से प्राप्त होगी।
0: राघवानंद जी के आशीर्वाद से स्वामी रामानंद ने रामानंदी यानी रामावत संप्रदाय की नींव रखी, जिसने मध्यकालीन भारत में सामाजिक समरसता की नई क्रांति का शंखनाद किया। पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद द्वारा रोपा गया समरसता का यह पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष बनने जा रहा था। भक्ति की इस पावन धारा में स्नान करने के लिए समाज के शोषित और उपेक्षित वर्ग के लोग खींचे चले आ रहे थे। स्वामी जी के आश्रम का द्वार सभी के लिए खुला था, परंतु सदियों से मन में बैठे सामाजिक भय और संकोच को तोड़ना इतना सहज ना था। इसी अंतर्द्वंद के बीच काशी के घाटों पर दो ऐसी महान आत्माओं का आगमन हुआ जिन्होंने भक्ति काल की दिशा ही बदल दी, संत रैदास और कबीरदास। संत रैदास एक दिन आश्रम की सीढ़ियों के पास हिचकिचाते हुए खड़े थे। उनके हाथों में अपने कार्य से जुड़े कुछ औजार भी थे। स्वामी रामानंद भी वहीं से निकल रहे थे और उनकी दृष्टि रैदास पर पड़ी।
1: वत्स, तुम द्वार पर खड़े होकर भीतर आने से क्यों हिचक रहे हो? प्रभु के दरबार में संकोच कैसा?
0: गुरुदेव, मैं समाज की सबसे निचली जाति से आता हूं। मुझे भय था कि मेरे स्पर्श से आपका यह पवित्र आश्रम और भक्ति स्थल अशुद्ध ना हो जाए।
1: रैदास, श्रम कभी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्धता तो मनुष्य के अहंकार और विचारों में होती है। जिसका हृदय प्रभु के प्रेम में पवित्र है उसका जीवन ही सच्चा स्वर्ण है। आओ, श्री राम का नाम धारण करो।
0: और स्वामी रामानंद की बात सुनते ही रैदास का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जाग उठा, जो उनके वार्तालाप में भी प्रतीत होने लगा। उन्होंने बहुत ही उत्साह में कहा, गुरुदेव, आपने आज मुझे मनुष्य होने का सच्चा अधिकार और भक्ति का मार्ग दे दिया है। गुरुदेव, आपकी यह करुणा मेरे जीवन का उद्धार कर गई। गुरुदेव, उद्धार कर गई। और धीरे धीरे इस कहानी में स्वामी रामानंद की प्रसिद्धि सभी जगह फैलती चली गई। और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था, थोड़ा अंधेरा था। कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए सीढ़ी उतरने लगे और अंधेरे में उनका पैर कबीर की छाती से टकरा गया और तभी वे चौंक कर सहसा बोल पड़े,
1: राम राम राम राम राम। बोल बेटा, राम।
0: कबीर तुरंत चौंके और उठकर स्वामी जी के चरण को स्पर्श किया और कहे, गुरुदेव, मुझे आपका गुरु मंत्र मिल गया। आपने स्वयं अपने श्री मुख से मुझे राम नाम की दीक्षा दी है। कबीर के तेजोमयी चेहरे को ध्यान से देखते हुए स्वामी रामानंद मुस्कुराए और आशीर्वाद।

0: देते हुए बोले,
1: कबीर, तुमने अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लिया। तुम्हारा नाम, तुम्हारा राम केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि संसार के कण कण में समाया हुआ सत्य है।
2: गुरुदेव, आपकी इस राम नाम ने मेरे भीतर के सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। अब यह कबीर समाज के पाखंड और भेदभाव के खिलाफ सत्य की गूंज बनेगा। गुरुदेव, सत्य की गूंज बनेगा।
1: जाओ मेरे वीर, तुम दोनों सत्य और भक्ति की उस मशाल को लेकर समाज के बीच जाओ। दोनों जाओ, जो छुआछूत के अंधकार को मिटाकर जन जन के मन में प्रेम का अलख जगाए।

0: कबीर और रैदास जैसे परम शिष्यों को राम नाम की दीक्षा देकर स्वामी रामानंद ने समाज के शोषित और वंचित वर्ग में स्वाभिमान और भक्ति की अलख जगा दी। पंचगंगा तट पर बहती असमरसता की धारा अब केवल आम जन सामान्य तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज राजप्रसादों की ऊंची दीवारों को भेदती हुई सत्ता के गलियारों तक पहुंचने लगी। गांगरौन गढ़ के प्रतापी और अहंकारी राजा पीपा के ने जब स्वामी रामानंद की इस अलौकिक महिमा के बारे में सुना तो वे लाव लश्कर और राजसी ठाट बाट के साथ काशी की ओर निकल पड़े, पर वे इस सत्य से अनभिज्ञ थे कि प्रभु के दरबार में मुकुट और सिंहासन नहीं, केवल अहंकार शून्य हृदय ही स्वीकारी होता है। राजा पीपा अपने मूल्यवान वस्त्रों, आभूषणों और तलवार के साथ आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं। स्वामी जी ध्यान मग्न वहां बैठे हुए थे। शिष्य अनंतानंद द्वार पर पहरा दे रहे थे, लेकिन राजा पीपा के अंदर एक अहंकार का भाव था और वे सोचते थे कि धन संपत्ति और ताकत से दुनिया की सारी चीज या वस्तुओं को जीता जा सकता है। इसीलिए उसी अहंकार में उन्होंने अनंतानंद से कहा, हे साधु, अपने गुरुदेव से कहो कि गांगरौन गढ़ के महाराजा पीपा उनसे दीक्षा लेने आए हैं, हमारे लिए तुरंत द्वार खोले जाएं। लेकिन अनंतानंद इतनी करक आवाज सुनने के बाद भी बहुत ही शांत और गंभीर बैठे रहे। धीरे से बोले, राजन, यह किसी सम्राट का दरबार नहीं है, भवातीत प्रभु का आश्रम है। यहां मुकुट और तलवार का कोई मूल्य नहीं होता। उसके बाद अनंतानंद भीतर जाकर स्वामी रामानंद को सूचित करते हैं। स्वामी रामानंद जी भी आंखें खोलते हैं और बहुत ही ओजस्वी वाणी में बोलते हैं,
1: अनंतानंद, राजा से कह दो कि स्वामी रामानंद का मठ राजाओं और अहंकारियों के लिए बंद है। यदि उन्हें भक्ति का

0: मार्ग चाहिए तो पहले अपने इस राजसी अहंकार, धन संपदा और मुकुट का त्याग करके आएं।
1: राजा पीपा स्वामी रामानंद द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर बहुत ही लज्जित हुए। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या क्षत्रिय का राजधर्म और ऐश्वर्य प्रभु भक्ति में बाधा है?
0: राजन, जब तक मन में मैं राजा हूं का भाव है, तब तक राम का दास बनना असंभव है। यदि सच्चे हृदय से शरणागति चाहते हो तो सर्वस्व दीनों में बांट दो और सामने दिख रहे कुएं में कूद कर अपने अहंकार की बलि दे दो।
1: स्वामी रामानंद का आदेश सुनते ही राजा पीपा बिना एक क्षण का विलंब किए अपने वस्त्र और आभूषण त्याग कर समीप के कुएं की ओर दौड़ पड़ते हैं। स्वामी जी का संकेत पाकर अनंतानंद उन्हें कुएं के किनारे ही रोक लेते हैं। वो पीपा को रोकते हुए कहते हैं, रुकिए महाराज, रुकिए। अरे गुरुदेव आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपका अहंकार भस्म हो चुका है। स्वामी रामानंद जी भी बाहर आते हैं और राजा पीपा के अश्रुपूरित नेत्रों से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनके पीछे उनकी रानी सीता भी विनम्रता से खड़ी हैं। और स्वामी रामानंद पीपा को उठाकर गले लगाते हैं और कहते हैं,
0: पीपा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की दृष्टि में राजा और रंक समान है। अब तुम्हारा सच्चा साम्राज्य यह गांग रौनगढ़ नहीं बल्कि राम नाम का अविनश्वर साम्राज्य है।
1: रानी सीता भी जो है हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहती है, गुरुदेव, यदि महाराज ने राजपाट त्याग कर विरक्ति का मार्ग चुना है तो आपकी यह दासी भी इनके साथ भक्ति और जनसेवा के मार्ग पर चलेगी। और फिर स्वामी रामानंद दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं,
0: धन्य हो पीपा, धन्य हो देवी सीता, जाओ अपने राजसी दुखों का विसर्जन कर भक्तों और दीनों की सेवा को ही अपना जीवन धर्म बनाओ, जाओ।
1: और उसके बाद राजा पीपा के राजपाट त्याग और भक्ति मार्ग अपनाने के समाचार ने समाज के कोने कोने में अलख जगा दी। अब यह सत्य सिद्ध हो चुका था कि प्रभु भक्ति पर न तो राज मुकुट का एकाधिकार है और न ही किसी विशेष वर्ग का। पंच गंगा घाट की यह पावन गूंज अब खेतों में हल चला रहे किसानों, राजाओं और उनके सेवकों और सदियों से उपेक्षित नारियों तक पहुंचने लगी।

0: इसी क्रम में स्वामी रामानंद जी के दरबार में दो निष्कपट साधक पहुँचे। बांधवगढ़ के राजा के सेवक सेना नाई और साधारण किसान धन्ना जाट, उनके साथ ही भक्ति क्षेत्र में नारी समानता की स्थापना के लिए पद्मावती और सुरसुरी भी आश्रम में उपस्थित हुई। सेना नाई बहुत ही विनीत भाव से गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, मैं एक साधारण नाई हूँ, दिन रात राजा और प्रजा की सेवा करना ही मेरा कर्म है। क्या मुझ जैसे साधारण सेवक के जीवन में भी प्रभु भक्ति का कोई स्थान हो सकता है? स्वामी विवेकानंद करुणा से मुस्कुराते हुए कहते हैं,
1: सेना, निष्काम भाव से की गई सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जब तुम अपने कर्म में अहंकार त्याग कर लीन होते हो तो स्वयं नारायण तुम्हारी सेवा स्वीकार करने आते हैं। तुम्हारा यह सेवा भाव ही तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाता है।
0: और वहीं पर धन्ना जाट भी खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तो अनपढ़ किसान हूँ, ना मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान है ना मंत्रों का, केवल खेत जोतना जानता हूँ। क्या केवल राम नाम का भरोसा मेरे लिए पर्याप्त है?
1: घना, ईश्वर को कठिन शास्त्र ज्ञान की नहीं, तुम्हारे निष्कपट विश्वास की आवश्यकता है। जो साधक अपनी निष्ठा से बीज बोता है, उसके खेत की रखवाली स्वयं श्री हरि करते हैं। तुम्हारा सहज भाव ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
0: और पद्मावती और सुरसुरी देवी हाथ जोड़कर आश्रम में उसी समय प्रवेश करती हैं। पद्मावती भी बहुत ही नम्रता और विनम्र होकर कहती हैं, पूज्य गुरुदेव, समाज में नारियों को भक्ति और साधना के उच्च अधिकारों से दूर रखा गया है। क्या प्रभु श्री राम की शरण का द्वार हम नारियों के लिए भी खुला है?
1: देवी, आत्मा न पुरुष है और न स्त्री, राम नाम पर जगत के प्रत्येक जीव का समान अधिकार है। भक्ति के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तुम दोनों इस संप्रदाय की दिव्य ज्योति बनकर समाज में नारी चेतना और समरसता का प्रसार करो।
0: और वहाँ पर सुरसुरी देवी भी जो है आनंदित होकर कहती हैं, जय हो गुरुदेव की, आज इस आश्रम में राजा, रंक, किसान, सेवक, पुरुष और स्त्री सब एक ही राम नाम के सूत्र में पिरोए जा चुके हैं। स्वामी रामानंद

0: जी ने समाज की सदियों पुरानी संकीर्ण धारणाओं को ध्वस्त करते हुए एक ऐसे सर्वसमावेशी भक्ति दरबार की स्थापना की जहां ऊंच नीच और भेदभाव का कोई अस्तित्व ना था। अब यह समरसता की गूंज केवल उत्तर भारत तक सीमित न रहने वाली थी। इसका अगला महासंवाद दक्षिण भारत के दिग्विजय अभियान में गूंजने वाला था। उत्तर भारत में सामाजिक समरसता की क्रांति फैलाने के पश्चात स्वामी रामानंद अपने शिष्यों कबीर, रैदास, अनंतानंद और पीपा के साथ दक्षिण भारत की दिग्विजय यात्रा पर निकले। विजयनगर साम्राज्य से लेकर कांची के ज्ञान केंद्रों तक स्वामी जी के सर्वसमावेशी विचारों की गूंज पहुंचने लगी। परंतु कांची के पौराणिक पीठों पर पहुंचते ही रूढ़िवादी विद्वानों ने शिष्यों की जातियों को लेकर कराबिर को विरोध प्रकट किया। सभा में शास्त्रीय चर्चा चल रही थी। स्वामी रामानंद जी के साथ कबीर और रैदास भी अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। रूढ़िवादी आचार्यों के चेहरे पर असंतोष की भावना थी। उसी आचार्य में से एक आचार्य कहते हैं, स्वामी जी, आप उत्तर भारत से पधारे महान आचार्य हैं, परंतु आपकी यह पंगत शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। इस पवित्र सभा में जुलाहा कबीर और चर्मकार रैदास आपके निकट कैसे बैठे हैं? वर्ण व्यवस्था का यह उल्लंघन अनुचित है।
1: आचार्यवर, जिस श्रम से समाज का तन ढकता है और पैरों की रक्षा होती है, क्या वह श्रम अशुद्ध हो सकता है? यदि कर्म पवित्र है तो कर्ता की आत्मा और शरीर अशुद्ध कैसे हो गए? भक्ति आत्मा का सनातन गुण है, चमड़ी या कुल का नहीं।
0: कबीर वहां पर जो है बैठे थे और बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने भी कहा, हे पंडित जन, जिस ईश्वर ने हम सभी को एक ही वायु, एक ही जल और एक ही मिट्टी से निर्मित किया है, उसकी दृष्टि में ऊंच नीच की यह दीवार केवल मनुष्य के अहंकार की उपज है। स्वामी रामानंद जी ने भी कहा,
1: स्मरण रखिए आचार्यो, भक्ति का प्रवेश द्वार कुल से नहीं केवल भाव और सत्कर्म से खुलता है। जो हरि का भजन करता है वही हरि का हो जाता है।
0: विजयनगर के प्रतापी राजा बुक्का राय और महापंडित विद्यारण्य स्वामी रामानंद जी के समक्ष आकर श्रद्धा से शीश नवाते हैं। विद्यारण्य स्वामी करबद्ध होकर कहते हैं, जगतगुरु, आपकी उदार विचारधारा ही सनातन धर्म का वास्तविक मर्म है। आपने भक्ति को कठिन संस्कृत ग्रंथों के बंदीगृह से निकालकर लोक भाषा और जन जन के हृदय तक पहुंचाया है। वहीं पर राजा बुक्का राय भी हैं। वे भी विनम्र हो कहते हैं, स्वामी जी, आपकी यह समरसता यात्रा पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली है। हम आपके इस महान कार्य के सम्मुख नतमस्तक हैं और स्वयं आपकी पालकी को कंधा देकर धन्य होना चाहते हैं। स्वामी रामानंद विद्यारण स्वामी और राजा बुक्का राय की बात सुनकर प्रसन्न भी हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले,
1: राजन, सच्चा सम्मान राजाओं द्वारा पालकी उठाना नहीं, बल्कि अपने राज्य में शोषितों और पीड़ितों को गले लगाना है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भक्ति और न्याय का अधिकार नहीं मिलता, तब तक यह राष्ट्र समर्थ नहीं बन सकता।
0: दक्षिण भारत की दिग्विजय यात्रा से लौटकर स्वामी रामानंद पुनः काशी के पंचगंगा घाट स्थित अपने आश्रम पहुंचे। इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेम और भक्ति की धारा किसी भौगोलिक सीमा या सामाजिक भेदभाव में नहीं बंधती। अब स्वामी जी का भूलोक पर अवतार कार्य पूर्णता की ओर था। उन्होंने अपने सभी मुख्य शिष्यों अनंतानंद, कबीर, रैदास, पीपा, सेना, धन्ना, सुरसुरानंद आदि को एकत्रित किया ताकि वे समरसता की इस अलग को संपूर्ण राष्ट्र में फैला सके। अत्यंत मंद, गंभीर और स्नेहमयी वाणी में स्वामी रामानंद ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित किया।
1: मेरे प्रिय अवत्,

0: वत्स, इस धरा पर जिस भक्ति यज्ञ का अनुष्ठान हमने प्रारंभ किया था उसकी पूर्णाहुति का समय अब आ गया है। मैंने राम नाम के आधार पर समाज के ऊंच नीच और भेदभाव के सभी कृत्रिम बंधनों को समाप्त कर दिया है।
1: अनंतानंद कांपती आवाज में कहते हैं, गुरुदेव, आपके बिना इस भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन कौन करेगा? हम आपके विरह को कैसे सहन करेंगे गुरुदेव, कैसे करेंगे?
0: अनंतानंद, गुरु शरीर नहीं बल्कि विचार और गुरु मंत्र होता है। अब तुम सब इस चेतना की जीवित मशालें हो। अनंतानंद, तुम काशी में रहकर इस जान पीठ को संभालो। कबीर और रैदास, तुम निर्भय होकर समाज के शोषितों के आंसू पोंछो और पाखंड का खंडन करो। पीपा, सेना, धन्ना और सुरसुरानंद, तुम देश के भिन्न भिन्न अंचलों में जाकर प्रेम और समरसता का शंखनाद करो।
1: गुरु का उपदेश और आदेश सुनते ही कबीर के आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने जो राम नाम दिया है वह केवल मंदिरों की मूर्तों में नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण और हर दुखी के हृदय में धड़कता रहेगा। रैदास ने भी अपनी भावना व्यक्त की, स्वामी, मेरे गुरु, आपकी करुणा ने हम जैसे उपेक्षितों को आत्मबल दिया। आपका यह संदेश कि सब जीवों में राम बसे हैं युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शक बना रहेगा। समस्त शिष्यों पर अभय हस्त उठाते हुए स्वामी रामानंद अंतिम वाक्य बोलते हैं।
0: स्मरण रखना, भक्ति का अर्थ बाह्य आडंबर नहीं बल्कि प्राणी मात्र से निष्काम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। जब तक संसार में एक भी पीड़ित का आंसू शेष है तब तक राम नाम की यह सेवा चलती रहनी चाहिए। जाओ, प्रेम और सत्य का साम्राज्य स्थापित करो, जाओ।
1: और यह कहकर स्वामी रामानंद जी आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो जाते हैं और साकेत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। पंचगंगा घाट पर केवल उनकी पवित्र चरण पादुकाएं ही शेष बचती हैं जो आज भी समरसता और सनातन भक्ति का अमर संदेश दे रही हैं।

0: गुरु केवल वह नहीं जो हमें पढ़ाता है, गुरु वह है जो हमें स्वयं को पहचानना सिखाता है। गुरु रामानंद की कहानी हमें बताती है कि सच्ची शिक्षा मनुष्य के भीतर के अहंकार को दूर करती है और उसके मन में ज्ञान, करुणा, आत्मसम्मान और मानवता का प्रकाश जगाती है। रामानंद ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध खड़े होकर यह संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति किसी जाति, वर्ण या सामाजिक स्थिति की बंधक नहीं हो सकती। उनके लिए भक्ति का आधार था पवित्र हृदय और निष्काम प्रेम। तो हमारे प्रिय श्रोतागण, अब समय आ गया है मुहावरों का। इस बार के जो मुहावरे हैं वे हैं दूध के दांत ना टूटना और दूसरा है अक्ल का अंधा होना। फिर से सुन लीजिए, जिसके अर्थ पर आप स्वयं विचार कीजिएगा। दूध के दांत ना टूटना, अक्ल का अंधा होना। पिछली बार जो मुहावरे आपसे पूछे गए थे उसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे और स्वयं रचित एक कहानी भी सुनाएंगे। पहला जो मुहावरा था वह है दूध का दूध, पानी का पानी होना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है सही न्याय होना या सच्चाई का पूरी तरह सामने आना। वाक्य में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से होगा, जज ने दोनों पक्षों की बात सुनकर ऐसा फैसला किया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
0: जी, और दूसरा आंखें खुलना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है वास्तविकता या सच्चाई का ज्ञान होना, भ्रम टूटना। जैसे धोखेबाज मित्र की असलियत सामने आते ही सोहन की आंखें खुल गई। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। रोहन सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक से प्रभावित होकर महंगा फोन और कपड़े खरीदने लगा। उसे लगता था कि महंगी चीज़ें ही सफलता की पहचान है। एक दिन उसने देखा कि उसका मेहनती मित्र सीमित साधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई और कौशल पर ध्यान देकर सफल हो रहा था। तब रोहन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि दिखावा नहीं बल्कि मेहनत, ज्ञान और सही लक्ष्य ही सच्ची सफलता का आधार है। उसी दिन से उसने अपना समय सोशल मीडिया के बजाय आत्मविकास में लगाना शुरू कर दिया।
0: छोटी सी स्वरचित कहानी सुनाने के लिए गुरु विश्वा आपका हार्दिक आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी।
0: प्रिय श्रोतागण, अब आपके लिए का आमंत्रण संदेश भी है। तो इस विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने एक प्रेरणादायक कहानी सुनी, एक ऐसे गुरु की कहानी जिन्होंने भक्ति को मानवता से जोड़ा और अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि सत्य, प्रेम और समानता का मार्ग दिखाया। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा शिक्षक, गुरु या मार्गदर्शक अवश्य रहा होगा जिसने हमारे जीवन की दिशा बदल दी होगी। किसी ने हमें पहला अक्षर सिखाया, किसी ने सही और गलत का अंतर समझाया, तो किसी ने कठिन समय में हमारा हाथ थाम कर आगे बढ़ने का साहस दिया। और यदि आपके जीवन में भी किसी गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक से जुड़ी कोई ऐसी अनकही कहानी है जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए professorrajshekhar@gmail.com पर। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी दूसरे विद्यार्थी, किसी शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा दे दे जिसे आज अपने जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। गुरु को नमन कीजिए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए और मानवता का दीप जलाए रखिए। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी अनकही कहानी हमारे साथ साझा करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: इन अमूल्य विचारों व सूचनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजशेखर जी। श्रोताओं, कहा गया है गुरुर बंधुर बंधुनाम गुरुश्चक्षुषर चक्षुषाम गुरुर माता च पिता च गुरुर देवो न संशयः। अर्थात गुरु बंधुहीनों के बंधु हैं और नेत्रहीनों के नेत्र हैं।

गुरु माता और पिता हैं तथा गुरु देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रोताओं, जब कोई विद्यार्थी असफलता या कठिन परिस्थिति से गुजरता है तब एक अच्छा गुरु ही उसका मनोबल बढ़ाता है और उसे समस्या से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। एक सच्चा गुरु अपने आचरण से ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, डिसिप्लिन और नैतिकता जैसे गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आजा दीजिए। अगले सप्ताह हम पुनः एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

29 सितंबर से कोएक ऐप पर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होने के बाद से अब तक 96,039 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन क्या चालक वास्तव में इसकी आदत डाल रहे हैं, इसका जवाब इस बुलेटिन में। विश्व बैंक ने एबेन में सौंपी गई रिपोर्ट में 2050 तक 6.7% आर्थिक वृद्धि के लिए 3 स्तंभों के तहत 8 कदमों की सिफारिश की। इसमें सीबी और एमपीए जैसे सार्वजनिक संस्थानों की भूमिकाओं की समीक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा व विवाद समाधान के लिए श्रम कानूनों के आधुनिकीकरण पर जोर। मॉरिशस में लॉन्च की गई पहली अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी महाद्वीप के देशों के वित्तीय खतरे का सटीक आकलन करेगी ताकि वे गलत धारणाओं के कारण अधिक इंटरेस्ट चुकाने से बच सके और उन्हें कम दरों पर कर्ज मिल सके। मॉरिशस में प्रजातियों के संरक्षण का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन

0: और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पिछले 50 वर्षों में कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया, जिसकी स्वर्ण जयंती मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर मनाई गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से मिले विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। इन अहम खबरों को अब देते हैं विस्तार। 29 सितंबर से कोविक ऐप पर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से इस सेवा के लिए अब तक 96,839 पंजीकरण किए जा चुके हैं, लेकिन क्या गाड़ी चालकों ने वास्तव में इसकी आदत डालना शुरू कर दिया है? चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। आद्रियन वालिया, याचना मिश्रा।
1: अभी के लिए लाइसेंस की कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहली जनवरी 2027 से चालकों को या ओरिजिनल लाइसेंस या फिर कोहेक पर डिजिटल लाइसेंस पेश करना होगा। अभी तक 97,000 चालकों के पास डिजिटल लाइसेंस उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनके पास 2-3 गाड़ियां हैं, उनको ओरिजिनल लेके नहीं घूमना पड़ेगा, एक ही जगह पर सब उपलब्ध होगा। कई लोग इस प्रणाली को अपना चुके हैं, कुछ लोग आदत बना रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट नहीं, सुविधा नहीं, उन्हें ओरिजिनल का प्रयोग करना होगा। इस वैन चालक के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह न रखने के लिए वे जनवरी से पहले ही फोन खरीदने का इरादा रखते हैं। मैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत जल्द नया खरीदूंगा। ये महिला चालक इस सेवा से अपरिचित हैं, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा आसान होगा। अच्छी पहल है, क्योंकि कई लोग दूसरों का लाइसेंस लेकर घूमते हैं जो गलत है। मैं खुद लाइसेंस घर पर भूल चुकी हूँ। डिजिटल लाइसेंस ये बहुत अच्छी बात है। इस ट्रांजिशन अवधि के दौरान पुलिस अपनी कंट्रोल कार्रवाइयों के दौरान जागरूकता बढ़ाने का काम भी कर रही है।
0: विश्व बैंक ने 2050 तक 6.8% की आर्थिक वृद्धि के लिए संस्थानों, बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन कदमों नामक 3 स्तंभों के माध्यम से 8 कदमों की सिफारिश की है। एबन में कार्यशाला के दौरान आज सुबह सरकार को कंट्री ग्रोथ एंड जॉब्स रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट सौंपी गई है। विश्व बैंक ने सार्वजनिक संस्थानों की भूमिकाओं पर फिर से गौर करने की सिफारिश की है, जिसमें सीबी और एमपीए शामिल है। श्रम कानूनों का आधुनिक करण भी सुझाया गया है, जो श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, साथ ही विवादों को कुशलतापूर्वक हल करते हैं और रेम्यूनरेशन ऑर्डर्स को सरल बनाते हैं। अफ्रीका के लिए एक नई संस्था और इसका मुख्यालय मॉरिशस में होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अफ्रा की आज बालाक्लावा में आधिकारिक शुरुआत की जा रही है। ये संस्था अफ्रीकी देशों, कंपनियों और संस्थानों के आर्थिक और वित्तीय स्थिति का आकलन महाद्वीप की अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेगी। उद्घाटन समारोह में अंतरिम राष्ट्रपति होबिया हंगले, विदेश मंत्री धनंजय रामफल, अफ्रीकन पीयर रिव्यू मेकानिज्म की प्रमुख मारी एंटोनेट रोज कात्र और अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद हैं। अफ्रीकी देशों की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बालाक्लावा में लॉन्च किया गया है। तो मॉरिशस स्थित ये एजेंसी महाद्वीप की आर्थिक सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर देश के वित्तीय खतरे का आकलन करने वाली है। इसका मुख्य मकसद है खतरे का सही आंकलन करके अफ्रीकी देशों को कम इंटरेस्ट दरों पर कर्ज मिलने में मदद करना, ताकि उन्हें गलत धारणाओं के कारण अधिक इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़े। यासीन दिन महमूद, करुणा लालू।
2: क्रेडिट रेटिंग किसी देश या कंपनी द्वारा लिए गए

0: कर्ज को चुका पाने की क्षमता का आकलन है। जितनी बेहतर रेटिंग उतनी ही कम लागत पर कर्ज हासिल करने की संभावना, यही मुद्दा क्रेडिट रेटिंग पर आयोजित कॉन्फ्रेंस के केंद्र में रहा जो बुधवार को समाप्त हुआ। कई अफ्रीकी देशों और वित्तीय संस्थानों के मुताबिक पारंपरिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महाद्वीप के देशों की रेटिंग तय करते समय उनके पूरे आर्थिक और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में नहीं रखती। डाउडा सेम्बेने ने कहा, कई अफ्रीकी देशों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है। कई कारणों से जोखिम बढ़ जाते हैं, मंडी को अच्छी तरह जानकारियां उपलब्ध नहीं होती जो काफी स्पष्ट हो, खतरों के आकलन कभी व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। इसी वजह से अफ्रीकी देशों को कर्ज लेते समय अफ्रीका प्रीमियम चुकाना पड़ता है, यानी अन्य देशों की तुलना में अधिक ब्याज दर। इसी को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि अफ्क्रा की स्थापना की गई। ये एजेंसी ऐसे समय सामने आ रही है जब अफ्रीकी महाद्वीप की वित्तीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जीता ने कहा, मूल ढांचे कायम करने हैं, रास्ते, बिजली, पानी, ऊर्जा संक्रमण आदि, इन सब के लिए फंड चाहिए। फंड इकट्ठा करने के लिए क्रेडिट रेटिंग कर्ज को प्रभावित करती है। वृद्धि दर के रूप में 22 देशों में 10 अफ्रीका से हैं जिसकी वृद्धि दर 6.5% रही है। मॉरिशस के लिए नई संस्था के मुख्यालय की मेजबानी करना अपनी स्थिति को मजबूत करने से जुड़ा है। मॉरिशस 3 देशों में शामिल है जिसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड प्राप्त है। बोत्सवाना और मोरक्को भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में मॉरिशस के पास फायदा एवं प्रतिष्ठा भी है। अफ्क्रा का उद्देश्य ऐसी क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध कराना है जो अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक परिस्थितियों को अधिक करीब से ध्यान में रखे। लेकिन दशकों से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में नई संस्था के सामने एक अहम चुनौती होगी, बाजारों और निवेशकों का भरोसा हासिल करना।
1: आज स्टेट हाउस रेजी में 2 उच्च स्तरीय बैठकें हुई। अंतरिम राष्ट्रपति जॉन इवान रोबे हंगली ने अफ्रीकी यूनियन आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव और अफ्रीका के लिए विशेष सलाहकार से भी भेंट की। संरक्षण के मामले में मॉरिशस का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। किसी भी अन्य देश ने प्रजातियों के इतने विलुप्त होने से नहीं बचाया होगा। इस सफलता के पीछे 5 दशकों का काम है जो विशेष रूप से डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया है। डरेल ने द्वीप पर अपनी उपस्थिति के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मंगलवार को ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास पर मनाया। मॉरिशस में बेघर होने का मतलब केवल छत का नहीं होना ही नहीं है, इसका मतलब असुरक्षा, हिंसा और अलगाव का शिकार होना भी है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। विश्व आवास दिवस और विश्व बेघर दिवस के अवसर पर पास्कल संगठन ने रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था और समाधान की मांग की है। अनाबेल वुल्बिया, याचना मिश्रा।
2: पुरुषों के लिए 3 रात्रि आश्रय केंद्र, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी नहीं। एसोसिएशन पास्कल के अनुसार स्थिति के कारण दर्जनों महिलाओं के पास शरण के लिए कोई विकल्प नहीं। कुछ महिलाएं हिंसा से खुद को बचाने के लिए अस्पताल की बेंचों पर रात गुजारती हैं। कुछ अन्य समुद्र तट पर कभी कभी अपने बच्चों के साथ टेंट लगाकर सोती हैं। संगठन के अनुसार 38% बेघर महिलाओं की उम्र 25 से 35 साल के बीच है, जबकि 30% महिलाएं 18 से 25 साल की हैं। इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए आश्रय से निकलने के बाद सीधे बेघर ही हो जाती हैं। हम 3 साल से एक शेल्टर में हैं। अकेले बच्चे के साथ घर का इंतजाम करना इतना आसान नहीं होता। घरेलू हिंसा के बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया और पास्कल के पास जा पहुंची। पास्कल महिलाओं के लिए एक आपातकालीन आश्रय केंद्र बनाए जाने की मांग कर रही हैं, जो दिन के समय भी उपलब्ध हो और जहां सामाजिक सहायता मिले।
3: हमने मंत्री को औपचारिक पत्र दिया। हम मंत्रालय और पासघर के बीच

0: बीच बातचीत की मांग कर रहे हैं और बेघर महिलाओं के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाए जाने के लिए सहायता मांग रहे हैं। लेकिन आवास का मुद्दा केवल बेघर होने की समस्या तक सीमित नहीं। आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार इस समय 52,000 से 55,000 लोग आवास की प्रतीक्षा में हैं। इनमें एक प्रस्ताव यह भी है कि स्थायी आवास मिलने तक लोगों के लिए ट्रांजिशन हाउस यानी अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए। मंत्री बताते हैं, आवास मंत्रालय और NHDC आदि के पास कुछ जमीन है जहाँ करीब 30 कंटेनर घर डाल सकते हैं। मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये साकार हो। मेरा मकसद है ट्रांजिशन होम कायम करना, जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाएं तेज करना और शेल्टर में रह रहे लोगों को गंभीर मामले के रूप में दर्शाना, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों के लिए आपात स्थिति केवल सर पर छत उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। जरूरी ये भी है कि सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी गरिमा वापस मिले और धीरे धीरे वे समाज में फिर से अपनी जगह बना पाएं।
1: सेशल्स में आयोजित 15वें क्लाइमेट प्रेडिक्शन फोरम में ये जानकारी दी गई है कि ट्रॉपिकल में स्थित देश एलनीनो के परिणामों का सामना कर रहे हैं और दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आने वाले महीनों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि और चक्रवाती गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है।

0: संरक्षण के मामले में मॉरिशस का रिकॉर्ड असाधारण रहा है। किसी भी अन्य देश ने प्रजातियों के इतने विलुप्त होने से बचाव नहीं किया होगा। इस सफलता के पीछे 5 दशकों का काम है, जो विशेष रूप से द रॉयल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया है। द रॉयल ने द्वीप पर अपनी उपस्थिति के 50 वर्ष पूरे होने पर का समारोह ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास पर मनाया। सगा उनो करनालालू।
1: मॉरिशस को दुनिया के उन देशों में माना जाता है जिसने किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में सफलता हासिल की। इस सफलता की प्रमुख हस्तियों में से एक है प्रोफेसर कार्ल जोन्स। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में उनके योगदान के लिए इस वर्ष उन्हें ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के सम्मान से नवाजा गया।
2: फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स इन मॉरिशस एंड वी'd लाइक टू सी दैट expanded into regional capacity as well. And we also work in Madagascar and we've done some work in Comores. But Mauritius has been our greatest success story. There are lots of threats, of course, there always will be. But what we've done is to learn how to restore what's there, and provided we have protected areas, and of course we can save species on islands. But of course we've got to control, or we've got to direct development in a way that doesn't cause damage.
1: ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की पहल से मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की स्थापना हुई। आज संस्था सरकार और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर मॉरिशस की प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए कार्यरत।
3: 1984 Gerald Durrell et des autres, je dirais comme ça, qui bien forme une association mauricienne, une ONG mauricienne pour faire de la conservation, faire de du lever de fonds, fait training, et c'est là qu'est créée la Mauritian Wildlife Foundation, 42 ans de cela.
1: Les saajedariyon ko mazboot banaye rakhna Durrell ki raniniti ka aham hissa hai.
4: The work of conservationists is more important now than ever before, but you can't do it alone. It's all about collaboration, teamwork, real grit and determination, and of course the money to make it happen. So I would say everyone has a role to play in conservation and in the successes of conservation.
1: लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
5: प्लांट रेप्टाइल बंजोजो की नुकोंटा गेट्स की बियन जली tout cela il bien vous avant insectes de graves qui vivent. Donc vous pensez the next step c'est get un coup de bien ban insectes qui niveau threatened cet été.
1: मॉरिशस में ड्यूरल के संरक्षण अभियान की शुरुआत के 50 साल बाद भी लक्ष्य वही है, ये सुनिश्चित करना कि मॉरिशस की कोई और स्थानिक प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त न हो।
0: सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन के अपने रोडमैप में तेजी लाना चाहती है। स्थानीय बायोमास उत्पादन की पूरी

0: की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर इस सेक्टर के सभी प्रमुख साझेदार एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक साथ आए 2035 तक हमारे ऊर्जा मिश्रण में 60% अक्षत ऊर्जा हासिल करना है।
1: हमारे स्थानीय बायोमास के इस्तेमाल के लिए ठोस समाधान ढूंढना,

0: जा रही है ताकि देश के ऊर्जा ट्रांजिशन में ये सहायक सिद्ध हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री ऑफ रुची के सीईओ डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत से ईख के खेत त्याग दिए गए थे। चार वर्षों की एक बड़ी परियोजना है जिसके तहत 1500 हेक्टर त्यागी हुई जमीन पर फिर से खेती की जाएगी। ऐसा करते हुए मौका से फायदा उठाते हुए क्लासिकल वैरायटी की तुलना में अधिक फाइबर वाले किस्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गन्ने के संबंध में गन्ने के पत्तों को भी जमा करने की बात शामिल है। कुल 500 गीगावाट से 2030 प्रति घंटे तक का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन इस ट्रांजिशन में केवल गन्ना ही नहीं है, एक अन्य अहम मुद्दा भी है, वो है हमारे जंगल। कृषि उद्योग मंत्रालय के फॉरेस्ट कंजर्वेटर पूजन राज खरन ने कहा, उद्देश्य है अनुकूल पेड़ों के साथ फिर से जंगल को व्यवस्थित करना ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की योजना पूरा कर सके। प्रतिवर्ष 100 टन लकड़ी है। अभी इन दिनों सरकार ईख के पत्तों और बायोमास के लिए 3.50 रुपए किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से पैसे चुका रही है। बिजली के स्वतंत्र उत्पादक इस टैरिफ के बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ग्रेगोरी बाथफील्ड ने कहा, इससे आयात की जाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर होंगे जो कि मुद्रा के हिसाब से ज्यादा महंगा है। अभी दाम पर गौर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। स्थल की हकीकतों के चलते कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेट व्यावहारिक होना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन काफी नहीं होगा। 9 वर्षों में 60% मिक्सर एनर्जी तक पहुंच पाने के वास्ते बायोमास आयात से नहीं बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा,
1: बागास इन एन रोल बियन अपोर्टर अविक लिजर्ड बायोमास।
0: अन्य बायोमास की तरह बागास की एक अहम भूमिका है। MCIA का एक शेड है जिसे परिवर्तित किया जाएगा। सख्त सैनिटरी नियम है, एक तरफ ईख के गन्ने होंगे तो दूसरी तरफ बायोमास, और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे बायोमास बढ़ाएंगे तो आयात कम करेंगे। इस ट्रांजिशन से स्पष्ट संकेत, रेजवी में बायोमास के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला का उद्घाटन, जहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। जहाँ तक वार्ता की बात है तो बहुत जल्द सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय शाखा की आर्थिक एवं लॉजिस्टिक आर्बिट्रेशन निर्धारित हो, जो कि मॉरिशस के लिए ऊर्जा संबंधी रोडमैप के लिए अहम है।
2: विदेश स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन 2001 अक्टूबर 7 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले श्री मोदी ने बुधवार को सरकार प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके दौरान श्री मोदी ने अपनी राजनीतिक यात्रा में जनता से प्राप्त विश्वास को सबसे बड़ी ताकत बताया है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
3: पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा। कल सुबह भी पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, जबकि दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों, दक्षिण पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरा सकते हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 6:09 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम

Shuk samachar suni ko bulbul ruet shmengrunyemi satatar salki 77 yezulki shmeti basawanti sarcharan श्रीमती बसवंती सरचरण की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जगू, लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे, बल्कि कल गुरुवार को दिन के ढाई बजे उनके पति ऋषि सरचरण के मकान श्रमागुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। सनातन रोड मेबर्ग में, सनातन रोड मेबर्ग में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की बसंती रामफल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सरदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल गुरुवार को सुबह के 10 बजे उनकी बेटी बालगोबिन राम के मकान सनातन रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। महात्मा गांधी रोड लोशेते रूश में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की जसोदा रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के, कल गुरुवार 8 अक्टूबर को दिन के 12:30 बजे उनके बेटे रंजीत रंगलोल के मकान लोशे त्यागोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों त्यागोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। रॉयल रोड बुले रूज सेंट डू फ्लैक में 57 साल की, बल्कि 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड के श्री रामाराजन कुलन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विलासन के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले पुलिस सर्जन थे। उनकी अर्थी आज दिन के, कल गुरुवार 8 अक्टूबर को दिन के 11 बजे उन्हें के मकान सौंदर्यफ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। गुरुवार 8 अक्टूबर सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 4:30 बजे तक सैंकवा में और आसपास के इलाकों में गुतबासैं नंबर 1, नंबर 2 और लुकोनी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक मौसम अनाफी कॉम्फ्लक में और आसपास के इलाकों में एवेन्यू मुलैकासे, एवेन्यू दे ट्विट, एवेन्यू दे मार्लिन, एवेन्यू दे मेरू और एम्पास बेकुन में। और गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लावांचे और आसपास के इलाकों में विलेज होल लेन, शिवाला लेन और रूट रॉयल लावांचे में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: ₹819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Nee so. बुधवार 7 अक्टूबर रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। वेरी गुड इवनिंग आप सभी

को 6:30 बजने को है और चलिए नई सोच इस प्रोग्राम के साथ हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। कैसे हैं आप सभी? वेडनेसडे का दिन कैसे बीता? और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हम आपके साथ साथ रहेंगे, आप सभी को एंटरटेन करेंगे अच्छे अच्छे गाने अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के ज़रिए। और चलिए आपका प्यार भरा साथ हमेशा की तरह हमें आज भी मिलता रहे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और नई सोच ये जो सेगमेंट है चलेगा 7:00 तक और 7 से 9 के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: नई सो।
1: जी हाँ, समय का पहिया ढलता है, दिन ढलता है, रात आती है और दिन ऐसे ही गुजर जाता है, और ऐसे ही वक्त के साथ कब हमारी भी उम्र ढल जाएगी हमें नहीं पता। इसलिए जितना भी वक्त हमारे हाथों में है उसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, सही चीज़ों में अपने टाइम को लगाना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में हम अफसोस करते रह जाएं। कहते हैं ना कि जीने के बहाने लाखों हैं, लेकिन कभी कभार हमें जीना नहीं आता है, हम उलझनों में उलझे रह जाते हैं, हम परेशानियों में घिरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं परेशानी का हल हमारे सामने ही होता है कभी कभार, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पर सही चीज़ों को करना, सही समय पर सही बात को बोलना, और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बीच में फ़र्क करना। और चलिए, यहाँ पर नई सोच इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर। अगला तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। खून भरी मांग इस फिल्म से लिया गया। ये फिल्म अपने आप में एक आइकॉनिक फिल्म है। फिल्म में रेखा नज़र आई थी और उनका किरदार अपने आप में इतना कमाल का था, रेखा जी का, कि क्या कहें।
2: You're listening to RM3 Radio Manor.

यकीनन हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जिंदगी में जीने के बहाने लाखों होते हैं, खुश रहने के बहाने लाखों होते हैं, लेकिन कभी कभार हम ही दुख में इस तरह से अपने आप को बंद कर लेते हैं कि खुशी को अपने आसपास देख नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ हमें बात करना चाहिए जिनसे मिलकर हमें खुशी का एहसास होता है, जिनसे बात करने से ऐसा लगता है कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनकर कभी हमें जज नहीं करेगा, कभी जो है हमें गलत नहीं समझेगा। और ऐसे लोगों का ज़िंदगी में होना अपने आप में ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। चलिए अभी के लिए आपका साथ हमें मिल रहा है हमारे इस प्रोग्राम में, तो ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है। आप इतने प्यार से हमेशा रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ देते हैं और अभी के लिए नई सोच ये प्रोग्राम चल रहा है। खूबसूरत गाने यहाँ पर आपके लिए हम चला रहे हैं और अगला जो तराना चलने वाला है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक है। यस, ये गाना मेट्रो, इस ये गाना जो है मेट्रो इस फिल्म से लिया गया है, इन दिनों दिल ये मेरा। मतलब कि ये गाना यही कहता है आपको कि कभी कभार हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। कभी कभार हम अपनों को तो सब कुछ दे देते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको अपनापन देते हैं, लेकिन वही प्यार हम कभी कभार अपने आप को देना भूल जाते हैं। तो मौका मिलेगा तो कभी खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए।

0: नहीं सो।
1: प्यार करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्यार करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या जिससे हम प्यार करते हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें खुशी देता है, प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें सुकून देता है, हमें शांति देता है। और किसी को बता कर या पूछ कर प्यार नहीं किया जाता है। प्यार तो एक एहसास है जिससे हम हमारे बर्ताव से बयां करते हैं, है ना, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी पसंद नापसंद चीज़ों का के बारे में ध्यान रखते हैं। और ऐसे प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं जो आपकी हर एक बात को याद रखते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, नापसंद है। और प्यार का एहसास ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि क्या कहे। और अगर आपके जीवन में प्यार है तो आप बहुत ही खुश नसीब है। आपके जीवन में ऐसे अपने हैं जो आपको समझते हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। चलो अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर, फिर मिलें।

0: के फिल्म का ये गीत होगा जीने के इशारे मिल गए और इसी गाने के साथ नई सोच ये जो सेगमेंट है खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी इसके तुरंत बाद दिलों की आवाज़ की। तो आप हमारा साथ यूं ही देते रहे रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूं सुमी, रात के 9 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: बुधवार 7 अक्टूबर घड़ी मिला लीजिए, शाम के 7 बज रहे हैं।
4: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
5: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: दिलों की आवाज़
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़। इस प्रोग्राम में आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ हम दे रहे हैं इन्हीं दिलों की आवाज़। और वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। यहाँ पर आप हमारा साथ साथ जुड़े हुए हैं, हमें पता है, और रात के 9 बजे तक जो है हम यहाँ पर आपके साथ साथ रहेंगे। ऐसे तो हर मंडे को दिलों की आवाज़ में हम आपसे मिलते हैं। आज हमें मौका मिला तो हम दोबारा चले आए आपका साथ देने के लिए। सो उम्मीद करते हैं कि टाइम बहुत अच्छे से बीत रहा होगा, गानों को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके इस लवली प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। नॉट टू फॉरगेट, ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है, सो देर किस बात की है, जुड़ जाइए हमारे साथ। यू कैन कॉल इज़ ऑन 402-8070 और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे टिकटॉक पर लाइव आने की, जहां पर आपके लाइव डेडिकेशन हम लेंगे। अभी के लिए इस गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और ये गाना आप सबके नाम डेडिकेट करते हैं। रंगीला फिल्म से लिया गया आशा जी की आवाज में, पिक्चराइज्ड ऑन उर्मिला मातोंडकर। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है। बिल्कुल रात के 9 बजे तक आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ हम देते रहेंगे ऐसे ही लवली वंडरफुल म्यूजिक के साथ।

0: दिलों की आवाज़।
1: चलिए अभी जो गाना आप सुन रहे थे, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा जी की आवाज़ों में। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी दिनों बाद सुने तो मानो ऐसा लगता है कि दिल को छू जाते हैं, ये तराना कुछ ऐसा ही था। और चलिए थैंक यू सो मच आपकी डेडिकेशंस के लिए। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। गिरीश इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, गिरीश अरलोल, और कहते हैं कि हो सके तो कुमार सानू जी का गाना हो जाए। कुमार सानू जी के फ़ैन हैं आप और हमेशा उन्हीं के गाए हुए गानों की फरमाइश करते हैं, तो ऐसे में ये जो तराना है किसी से मुझे प्यार हो, ये आपके नाम हम करते हैं

0: और आपके दिल की बातें हम तक पहुंच रही है आपके डेडिकेशंस आपकी फरमाइशों के जरिए 5250600 पर, साथ ही 4028070 पर। यहाँ पर किसी ने हमसे कहा कि हो सके तो बातों बातों में फिल्म का तराना हो जाए, आशा जी और किशोरदा की आवाज़ों में सुनिए कहिए। और जिन्होंने भी ये गाना मांगा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, अगर आप बताएं कि आप कौन हैं तो हमें जानकर बड़ी खुशी होगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ये गाना हम आपके नाम हम करते हैं। आप हमेशा, हमने देखा है, आप मैसेज तो करते हैं लेकिन अपना नाम कभी नहीं लिखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए हम करते हैं और किशोरदा और आशा जी के फैंस के लिए भी।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना,

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की
1: आवाज जी हाँ, मोहब्बतों का सफ़र है हमारे साथ। चलो और यकीनन ज़िंदगी के इस सफ़र में साथ चलते चलते कितने ही साथी, कितने ही हम सफ़र, कितने ही दोस्त मिल जाते हैं और जिनके साथ जो है ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से कट जाता है। चलिए अभी के लिए हमारे लवली लिसनर्स हमारे इस सफ़र में साथ दे रहे हैं। गुड इवनिंग यहाँ पर किरण पुरी जी की ओर से, जो वैंकूवर कनाडा से हमेशा हमारा साथ देते हैं। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। हमारे साथ चलो साथ ही चल रहे हैं, हमें पता है आप हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। एंड गाना जाता है जीजी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी, कलाराम कारीगर, वैंकूवर कनाडा से आप सभी परिवार और दोस्तों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे सभी प्रोग्रामों में जो है हमारा साथ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो अगला तराना है आपके और आपके सभी दोस्तों के नाम हम करते हैं। हम हैं राही प्यार के, फिल्म से लिया गया, पिक्चराइज्ड ऑन आमिर खान एंड जूही चावला।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: बुधवार 7 अक्टूबर घड़ी मिला लीजिए रात के 8 बज रहे हैं.
4: दिलों की आवाज़.

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज के इस सेकंड आवर में आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। रात के 8:08 यहां पर होने को है। दिस इज योर दिलों की आवाज ऑन रेडियो मनोरंजन और मैं हूं सुमी, आप सबका साथ दे रही हूं। रात के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। चलिए गानों को एंजॉय कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग डिनर करते-करते भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, गानों का मजा उठाते हैं। आप सभी को बुना पेची। और चलिए सेकंड आवर की जो शुरुआत है बहुत खूबसूरत हुई और ऐसे में ये गाना यहाँ पर चल पड़ा, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। फूल और कांटे इस फिल्म से लिया गया।

का जो लगभग काफ़ी समय भी खत्म होने को चला, रात के 8:22 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। दिस इज़ या दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। और चलिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। अगला जो तराना है सड़क फिल्म का गाना है, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जी की आवाज़ों में। रिहाना इस समय फिनिक्स से हमारे साथ कनेक्टेड है और ये गाना उन्होंने अपने लिए मांगा है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। थैंक यू सो मच। और ये कहती है कि ये उनका फेवरेट गाना है। तो चलिए रिहाना जी, बड़े ही प्यार से ये गाना आपके नाम हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम है और बहुत सारे हमारे लवली लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश करते हैं और यहाँ पर अगले फरमाइश की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला जो ये मैसेज है ये हमें मिला है यहाँ पर अपादू फैमिली की ओर से, जो रोशनवा से हमारा साथ दे रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और गाना जाता है दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा, सभी अपादू फैमिलीज़ के नाम जो रोशनवा से हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए हमें तो यहाँ पर अपने लिसनर्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो हमारे सभी प्रोग्रामों में बड़े ही प्यार से जुड़ते हैं, अपनी डेडिकेशंस, अपनी फरमाइशें हम तक पहुँचाते हैं और ये सफ़र इतनी खूबसूरती से गुजरता है कि क्या कहें। और इसी के साथ जो है अब बारी है इस आखिरी गाने की, और इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आपने इतने प्यार से आज भी हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो मच। जाते जाते मोहब्बतें फिल्म का ये तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करेंगे, हमको हमी से छुरा लो। और इसी गाने के साथ जो है हम भी आपको बबाई कहेंगे, जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल, कल रेडियो मॉरिशस पर हम आपसे मिलेंगे आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ देते रहिए। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि, और जब भी मौका मिले रेडियो मनोरंजन से जुड़ते रहिए, ऐसे ही हमें सुनते रहिए। और आपको बता दें कि 9 बजे जो है आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम यहाँ पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को, एंड थैंक यू सो सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमें आज भी यहाँ पर मिला।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: On the hour, every hour, radio marches.
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर. कमट, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर.
5: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा. भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
6: रेडियो के सुनेला सब संगत चालो के आज है प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम. यह MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन चैनल सबको ये स्वागत करते हैं जब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में. आज है बुधवार की रात, बुधवार 7 अक्टूबर साल 2024. अभी से लेके रात के 11 बजे तो रमन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वन दबैया का जगोदेव जगोविद सैंक का जगोदेव जगोविद सैंक या फिर हमने के टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के देखिया और अपन SMS विदा करिया. और अभिषेक बुधवार की रात गमट की रात चलो के संगे संगे पहल का गाना हंगामा गीता गजाधर की गावल गीत और गीत तो हमने चलावा थी सर

ई सब श्रोता लोग के नाम आप भवन विक तेज सनातन विशाल तनुजा जैन माफ करिए विमला लक्ष्मण फिर जया निजाम बहादुर देवीन अंजोली सिनोरिता विमला लक्ष्मण सिमला मनोदा और राइट जाम रानी अनिता प्रताप सुमन जलसा ग्रुप पदम अधिकारी सत्यवंत सिंह विष्णु एंजल निशा समीमा कात्सरंभा बानी फिदू मिन्यांदी रिसोल भाई बहुत बहुत धन्यवाद रजनी शिवदन शोभा और राजन रायान मिसेस श्रीनाज अलगू रवीन उमा यादव शशि तुलसी करुणा बुधन पूजा धनी राव प्रिया अक्षय सुमन राय शिवमा महरली अगला गीत तोहर खातिर श्यामा महरली सोनम रामचरण मिदुन नमस्ते जी और सोनम रामचरण खातिर भी जो बहुत प्यार से ही सब श्रोता लोग हमने की सुनता रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पे जो हमने की दिखा था सा तो जितना कोई रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन सुनता है गीत लोग के नाम गीता गजाधर के जुबानी हंगामा है गीत चली सोनम रामचरण खतीर और जियाद मंगरू के नाम चले एक साथ सुने है गीत तो

हंगामा ही हंगामा, धूम मचल बस, सब कोई नाचे था गावा था उनके संगे संगे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। ये प्रोग्राम से रोज रात के लेंदी से लेकर दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन एमबीसी की दोनों रेडियो चैनल पर। अब संग चल आज के दिन कैसे रहल? आज के दिन तो एकदम बढ़िया रहल, मौसम तो बड़ा प्यारा रहल, ठंडा ठंडा कल ही रहल पर मौसम एकदम चकाचक। और जब दिन अच्छी तरह से बीतल तो रात भी अच्छी तरह से बीती हमने के संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत दिन तनाना दिन ता राजीव राजीव मंगर गीत आ गए ले वन। और एक गीत हम चलावती इस श्रोतालु के नाम ये संग चालु हमने के संगे जुड़ल हो जा आप हो जा। ओके विक्रम नायक मधु विकास तीना मुरुगसन गीत हर नाम यूसुफ गिनु प्रियंका राय विक नकुल पैथ्रिक लिजेट वरुषा जग्गू विज कुनाय और सरोजनी मोहर साहिल फी फिर है गीत चली विमला क्वेज दुमा अनुक्सा सियू हाँ श्रद्धानंद लक्ष्मण दनाबाई माला देवानंद शंकर बीना सिंह हेशा टोनी वेलु देवीना सिशंकर कृष्ण विसन साहब बिस्वानी झमू सैरा दाहू है गीत अब्दुल और सैरा बानु खतीर नीता हंसराज भी उनके साथ जुड़ल बा। तो चलो है अगला गीत सुनब जाए एकदम चकाचक गाना दिन ता ना ना ना दिन ता।

0: और चुन चुन के पीवा तू भी मजबा रूप बनैया मजबा पीवा बे या पीवा रूज हरा पीमा या लाल पीमा के मजबारू जोरी से बना दिया और बड़ा मजे लगेगा खाई के। और जब खान पान की बात करती सर तो आजकल पूजा पाठ चलता हर घर में मंदिर में गोविंदन पूजा वेंकटेश्वर पूजा की तैयारी और नवमी की तैयारी भी हुआ था। और आज रात के खाना खजाना सेक्शन में कौन व्यंजन दियन आशा जी चलो से मिलब जाओ और वो बताइए कि अभी कायम के रेपोक बात कौन चीज हमने के प्रस्तुत करियन जा। हेलो
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी।
0: जय माता दी।
1: कैसे बात समाचार?
0: जय माता दी। हम ठीक हैं, तू कैसे हुआ?
1: हम ठीक हैं प्रताप जी और सभी श्रोता लोगन के आशादानी की ओर से सादर नमस्ते, बड़े जन के सादर प्रणाम और आए होला नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को के बोला जय माता दी।
0: जय माता दी। और आज कौन का सद देवता हुआ?
1: जैसे कि 11 तारीख से नवरात्रि शुरू हुआ जाते तो ऐसे तो देवी मैया के हर दिन अनेकों प्रकार के भोग चढ़ेला। खास तौर पर जब हमें खीर पूरी पकाए ला जा तो विशेष रूप से हमें रोट लड्डू डाली ला जा। तो आज हम आप सबके बताव कि रोट कैसे तैयार करके
0: रोटो जिन कुल मांगो रहेला गोल गोल।
1: हाँ
0: हवे गोल गोल अभी के जेनिस तक दे जाने ला रोड बताओ लोग दूसरे कोच है व्हाट इज रोट। तो रोट एक प्रसाद है ऐसे गोल गोल रहेला और मीठा रहेला। बोला
1: सबसे पहले आवाज जो सामग्री से और तो सामग्री में लिया घी आटा दूध चीनी इलायची बादाम कोको काफी। तो सबसे आगे अपने को थाली में नहीं तो सीनी में लिया आटा आटा में तब धला जे एगो दो कप आटा ले ला तब एक कप दूध लिया तब आटा दूध द्वार के हाथ से अच्छी तरह से मिलेगा। तब मिलाते मिलाते उमें जो आवते करिया पिसल हुआ क्षमा करिया पिसल हुआ इलायची पिसल हुआ बादाम कोको रापे और सब संगे मिलाते मिलाते डलिया आधा कप चीनी। तब सब संग और हाँ आरे गोबार जब चिनुआ डलबा तो चिनुआ के पीस दिया
0: चिनुआ के मिक्सर में पीस देके।
1: हाँ मिक्सी में तनी
0: तो डिजा फैन ही रहे ना चाहे आर आरो के पीसे के।
1: हाँ तो आज यहाँ कहे तो पिसते बे जब रोटवा के खेबर तो वो चीनी चीनी में चनी है चिली नहीं रही खूब ओकर संगे ओतवा में
0: समा जाए
1: समा जाए तो जब

0: इससे बस उसका स्वाद दूसरे हो गया चीनी वहां के आप पीस दिया तब कोको रखते वो डाल दिया जा तब सब सुख और जब है सब मिले पर तब घी डल पर तब घी वहां के टिगरा के डल जा जा
1: निमन से टिगरा दे के चाहे तब घी वहां डाले की
0: घी
1: कौन घी डाले के जो भारत से बा कि मॉरिशस में कोनो भी घी सकब से डाले नाम नहीं बोला हो अभी रिक्लामो ही लगी देखकर अपन अपन पसंद कीजिए के स्वाद को से अब है ना सुना अब हमार घर में लेकिन गरीबा घर के बगल में या हमारे आंगन में लिखी गई बात गाय बात हम सब टटका घी बना के रोटवा तैयार करें
0: जैसे तार इच्छा अनुसार जैसे खुशबू दी
1: गंगा
0: संगे सुखा संगे आगे ओके खूब सब जितना तरह बोलनी है सब संगे मिलेगा औसवा में जमे दूध ओकर इलायची बादाम खुखा पे घी सब निमन से सुखरे हाथ से चला चला के निमन से मिला दिया तब सानी बेटी गरम पानी में रेसे दूध डाल के मिला तब दूध पनिया से तब संगे सादा पानी संगे संगे जा दूध पानी से सन बजा ऐसे रोटा उ नरम रहना भीतर फोदौल हो जाना जब सदा पानी संजय सनिया जा गर्म पानी में दूध डाल के दूध पनिया से सन बजा तब भीतर फोदौल हो गया तजोली से सान दे बज खूब लिमन से अच्छे तरह से लिमन से उसके सान दे बजा तब औता दम में लिमन से समा जाए खूब जैसे रोटी के एगो डो बना दे वेला तो नरम हाथ से लिमन से कुछ लिमन से ऐसी करके मिलों से करके तब लिमन से ओके एगो डो लियन तैयार कर लिया जब तैयार कर ले पर तो ओके आधा घंटा चली छोड़ दिया जब पोसे हो दिया जब तुरंत ही ओके गोल गोल नहीं बने जब ओके
1: ओके थोड़ा सुन ठंडा हो जाए कि
0: हाँ तनी सुन ठंडा हो जाए बजा और तनी सुन जितना तनी पोसे रहेला ना उतना अच्छा रहेला तुरंत ही ओके गोल गोल नहीं बने जब तो आधा आधा घंटा बीत जाए तब ओके पिटी पिटी तोड़ के एगो गोल गोल बना दिया जब जब सब बना दे बजा गोल गोल तब कढ़ाई में घी चढ़ा दिया जब कहे के देवी माँ के भोग लगेला तो घी में तरल चला
1: हाँ इतना बात है
0: हाँ घी में तरल चला तो घी वा तनी ढेर ओके गरम नहीं हो दिया जब तनी एक बार धीमा आग में तनी तनी गरम होकर तो थोड़ा थोड़ा करके अपन जोन बनाई ले हवा गोल गोल रोल ओके धीमी आंच में चलाया तरिया तारे
1: तारे के चला धीमा आग में तारे के ढेर बड़ा जोर आग में नहीं तो जल जाए
0: हाँ
1: ओके बीते चाहे निमन से पके देगी ना बीतरे निमन से पके देगी चाहे ना
0: जितना धीमा आंच में पकेबा तो उतना भीतर सीधी इसे कंचा नहीं लगी सीधी तब क्षमा करिए तब एगो ब्राउन जल्दी ब्राउन कलर हो जाए तो अपन रोट के निकाल दिया
1: एगो गोल्डन ब्राउन हो लगी तो निकाल के जनबा तरागल तो हर रोट
0: तरागल जनबा तरागल एगो जल्दी गोल्डन ब्राउन कलर में ओके निकाल देबा तो तरा जाए तो हर रोट तैयार हो जाए
1: और तो एक सिरो में नहीं डाले की है नहीं
0: नहीं नहीं नहीं है सिरो में नहीं डाले की है सुखल जब तार दे बस
1: सिरो में डाले तो रसगुल्ला हो जाए
0: तब तो रसगुल्ला हो जाए ओके ऐसे सुखल छोड़ दे बस तो जब खीर पूरी में लड्डू पके बस तो रोटो पका दे बस तो खीर पूरी रोट लड्डू
1: चढ़ेला तो है रोटवा जो ना फ्रिज में रख बता कितना दिन तक रखे
0: फ्रिजर में से तो उस डालना ना प्रताप जी फ्रिजर में नहीं वो डाल बा ऐसे सक बन रखे
1: एक बारी से रह जाए एक बारी से रह जाए
0: नहीं एक बारी से नहीं एक दूसरे में देख रह जाए बस कहे कि वो मैं घी डाला बना खूब
1: हाँ उखाते तो ये खीर पूरी और प्रसाद जी साथ में जब अब पान के पत्ता में जाए तो नव दुर्गा के नव रूप के माँ के चढ़ाई रहा ना
0: खाती उस दिन मैंने दरवाजा ऐसे और

0: के बद स्वाद है।
1: तो आशा जी गैसियत चंदीरामनी के व्यंजन खाना खजाना सेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रोता लोग जो कोशिश नहीं कर ले सर पहली बार बनाए सर तो लोग जनियन सर रोट कैसे बनाएंगे। जय माता दी।
0: जय माता दी। और आप सब के बोलते हैं जय माता दी, अम्बे माता की कृपा आप सब के परिवार में ऐसे ही बने रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आशा जी रलन के गो व्यंजन दिलन की रोट कैसे बनेला। रात की 9:40 होता है। अगला गीत जल सब एल्बम से नहीं सर, गीत का शीर्षक है होशियार बा और एक गीत चली सिंह के नाम पामा मनी नवीन शाह रघुनंदन सुजन माला गोपाल बायाबू कल्याणी रामनाथ इंदिरा सीउचन नानी विजय फिर सुमिला पीरू इमरान इंदिरा राजेश शुगर जी के नाम भी मिसेस बटरफ्लाई नाजदास लेडी जैगुआर सीउचन नंदिनी गणेश वरुण जॉन पास्कल तेज सिमसिमी सपना धनु अंजल साही शर्मिला गंगा प्रसादो किम सुनिचरा देव मी जयवंती बीपत इंदिरा राम सोहक रघुनंदन प्रेमचंद जुमू नरगिस नौबत सीउचनान इंशिका केशर भातरीस पा कासम टॉम लवना फिर आशना नारायण मुक्ति उम्मे सलमा सिंथिया बोजराज प्रीति राधिका पूनम अनंत शालिनी विद्यानंद गोपा लवना लवना की ओर से का प्यार विकास और सब बिगु परिवार विकास बिगु बिगु परिवार और फोजी साक यूदी बेबीलोन जो डाल्टन धर्म शिवा पूनम प्रियंका राय राजेश जूतन सीउच नंदिनी उमा मैं आध्या गोकुल मनीता रवीश लतीसिया सरस्वती सिरापरगा शारदा दिलीप मंदा इंद्रानी दामरी संता कतरीना माधवी नाशिस्मैन आशा अनिल कुमार शबना होसन नजीब और वर्षा के नाम। तो चलो एक साथ सुने है गीतवा होशियार बा कविता की आवाज़ में।

औलाद खातिर इंसान कुछ नहीं करेला मस्जिद मंदिर कोविल जाला सगरो माथा टिकेला ताकि औलाद हो और जब औलाद नहीं रहेला तो इंसान दुखी हो जा रहा कह के दिखेला सब कोई के औलाद बकर औलाद नहीं बा तो संतान खातिर पूजा पाठ होला बड़ा बड़ा डॉक्टर लगे लोगन जाला और औलाद के सुख जुन है हर जन सुख है तो चक्कर औलाद बा उही जानेला अब जो इन कपल बा शादीशुदा कपल अगर लड़का नहीं हुआ था डॉक्टर बोल दिले है कि कोनो समस्या बा या तो पति या पत्नी में दोनों में कि लड़का नहीं सकी हो तो एक ही मतलब नहीं बा कि दुनिया के अंत हो गए तेरे कोई अडोप्शन की और भी जाला फिर कोई जाला अडोप्टे करे चिबाबा के या फिर कोई दूसरा दे जाला वहाँ से चिबाबा दे फिर कोई जाला भारत वहाँ से लड़का आने लंसा और लड़का के आन के पोसे लंसा तो लड़का के अनब अडोप्टे करवा तो लड़का तो हर मानिया में आए हों कि नहीं तो जोन कपल लड़का नहीं सकता करे निराश नहीं हो कि चेहरा ढेर मना संसद मैथनेट में जहाँ पर सकबर तो लॉग इन करे और अडोप्टे करे मॉरिशस में भी लेकर अडोप्टे होला तो थोर कपल में जो है थोड़ा सा खुशी चलाए को लेकर चलाए तो घर में तो नन्हा मुन्ना लेकर धोखा था दादा दादी अगर कोई बन गए तो ये को बहुत कैसे बोला ये को बहुत दादा दादी बने के को नसीब की का नसीब है अगर खुश नसीब हुआ तो दादा दादी बन जा लन जा पर अगर नसीब में नहीं बा तो फिक्र नहीं करे कि आजकल अडोप्शन की ओर भी देर को जाता और सकबा माँ बाप बने अडोप्शन के जरिए ठीक बा और अगला गीत दामाद बाबू प्रकाश गैलेवान गीत है गीत हम चलाते सही सब संगत आलू के नाम हुसैन नजीब वर्षा मुलिन मैय शिमला लक्ष्मण नीरा उमा शर्वया लीला प्रिसीला देवीना बिलक आशी देवरन रंगलाल मनीषा आलिया कमल ज्योति लक्ष्मी रायन दावी डैनियल जगमोहन गैब्रियल लामा हमनी नोश है कि चली रुशिका राजा कदीर कश्मीरी अविसन और रहीम नक्चेदी तीता कैद फिदू अब्दुल संदीरन लक्ष्मीनी लक्ष्मी माफ करिए दानी तुलसी स्प्रेंकुन जमाला फिफी बाबूलाल अवनीश बिंदु अकलू कैतू संजय शर्वया कैतू संजय पॉम्पल मुस्से हेलो युक्ति अनंती फिर सुग्रा शिमला अनुचंदानी काल भैरव के बी दामिचा रामेश सुबोमी मेघा नीश मंजुला शिमला रुपेश सिबा मादनाज गुलाम का अनलीज गाजा अवनीश शेख रोज तहर खोदा शिवांश गौतम निर्वाणा छबिलाल अक्षय संगीता अनु सुबिता खटका सुविरेन कानिया दिनेशन सुबिया और है गीत चली रेहाना हसनैन की ओर से रीता और अमृता के नाम तो चल एक साथ सुने गीत

दामाद बाबू कल ससुर लगे विस्की मिनरल तो बोलता हुआ रही तो होने वाले ससुर सासू मारो दिखा दामाद है तो ढेर विस्की नहीं दिया वरना विस्की का जाग दिया छोकरा बोली मो पोगा सलामे मस्त है घर घर दामाद ना अब सुन अब जाए एगो कहानी लक्ष्मी माँ और गरीब किसान की कहानी तो बहुत पुराना बात है एगो गांव रहल सोन बरसा गांव चारों ओर से हरियल खेत रहल आम के बगीचा आ पोखरा से घिरल रहल गांव के लोग मेहनती रहलन जा बकिर ओ साल बरखा ना पड़ल ना पड़ला से पूरा इलाका सुखाड़ के चपेट में आ गल वही गांव में एगो गरीब किसान रहता है जेकर नाम रहल रामदीन ओकर परिवार में मेहारू सीता एगो छोटा बेटा गोपाल और बूढ़ा माय रहता है और बूढ़ी माय रहता है रामदीन के लगे बसु दू बीघा जमीन रहल वही जमीन पर खेती करके अपन परिवार के पेट पालता है पिछला दो साल से सफल ठीक ना भल

जब बर गल घर के छप्पर टूट गल और अनाज के कोठी लगभग खाली हो गल। एक दिन सीता दुखी होके बोलन, हे रामदीन, घर में सब बस अब बस दो दिन के अनाज बा खाली। गोपालो कई दिन से दूध खाते रोवत बा, अब का हुई। रामदीन चुपचाप जमीन की ओर ताकत बा, ओकर आंख से आंसू बहे लगल। धीरे से बोल लग, सीता भगवान पर भरोसा रख, मेहनत हम कबो ना छोड़ब। अगला दिन भोर में रामदीन अपन हल बैल लेके खेत में गल। सूरज निकले से पहले उ खेत जोते लगल। माटी सुख के पत्थर जैसन हो गल, बाकी रामदीन हार न मनलक। दोपहर बाद में ओकर पड़ोसी धनराज खेत के किनारे आके बोललक, रामदीन तू इतना मेहनत काहे करत हुआ हो, बरखा के नाम नहीं खे, ये जमीन अब कुछ ना दे, चल शहर चल जा, मजदूरी करब त रोज के पैसा मिली। रामदीन मुस्कुरा के बोललक, धनराज भाई, शहर जाके मजदूरी करे से पेट त भर सकेला, बाकी अपन माटी छोड़ देब त मन खाली हो जाए। जब ले हाथ पांव चलता तब ले अपन खेत में मेहनत करब जा। धनराज हंसत हंसत चल गल और उही रात रामदीन के परिवार भूखर पेट सो गल। आधी रात में रामदीन की नींद खुलल, बाहर निकल के दिखा था आकाश में चांद चमकत रहल। रामदीन हाथ जोड़ के बोललक, हे भगवान, हम गरीब बानी, बाकी मेहनत करे से कबू पीछे न हटिला, बस हमर परिवार पर दया कर। इतना कह के वो घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गल। तभी अचानक ओकरा सामने एगो बूढ़ी औरत दिखाई देलक। वो साधारण कपड़ा पहन रे रहल और हाथ में एगो छोटा सन पोटी रहल। बूढ़ी माँ को से बोललक, बेटा, रात बहल बहुत हो गल बा, का तू हमरा थोड़ा पानी या कुछ खाए के सकबा दे। रामदीन घर में गल, घर के खुदे खाई खातिर कुछ खास ना रहल, बल्कि वो बिना सोच ले अपन घर में बचल कुचल रोटी बूढ़ी माँ के दिलक खाई कर दिलक पानी पिए के। बूढ़ी माँ रोटी खैलक पानी पीलक और मुस्कुरा के बोललक, बेटा, तोहर घर में तो खुदे अनाज नहीं बा, फिर भी तू हमरा अपन खातिर अपन भाग के रोटी दिला और पानी दिला पिए के। रामदीन विनम्रता से बोललक, माई अतिथि भगवान के रूप रहेला और रोटी आधा हम खाए आधा रोवा खात, बाकी रोवा भूखल रह जाते हमर मन न मानत। बूढ़ी औरत के चेहरा अचानक चमके लगल, उसका साधारण रूप बदल गल। उस सोना जैसन उजर और चमकदार वस्त्र पहन ले रहा देवी के रूप में दिखाई दे लगल। रामदीन डर के मारे जमीन पर माथा टेक दिलक, माई रउआ के। देवी मुस्कुरा के बोललक, हम लक्ष्मी माई है। रामदीन हाथ जोड़ के बोललक, माई, हमरा से कोनो गलती हो गल तो माफ कर दिया। लक्ष्मी माओ के बोललक, ना बेटा, आज हम तुहर परीक्षा लेवे आ रही, तोहरा घर में गरीबी देखली, बाकी तोहर दिल बहुत अमीर बा, तू अपन तो अपना छोटा रोटी के भाग हमके दे दिला खाए के, हम तोरा आशीर्वाद देवत। ऐसा मन के इंसान भगवान कबो अकेला ना छोड़ेला। लक्ष्मी माँ रामदीन के तीन मुट्ठी बीज दिलक। ये बीज अपन खेत के तीन अलग अलग कोना में बोइया, बाकी एगो बात याद रखिया, मेहनत ईमानदारी और दया के कबो नहीं छोड़िया। रामदीन बीज माथा से लगा के रख दिलन। अगला भोर वो खेत में गल और लक्ष्मी माँ के बतावल तरीका से तीन जगह में बीज बोलक। पहला जगह गेहूं के बीज रहल। कुछ दिन बाद वही जा हरियर पौधा निकलल। दूसर जगह धान के बीज दिलक। सूखल जमीन में भी अचानक से गल धान के पौधा लगल। तीसरा कोना में अनजान बीज रहल। कुछ दिन बाद वही जा एगो अद्भुत पौधा उगल। पौधा पर सुनहर रंग के दाना लागल रहल। रामदीन जब ओकरा देखलक तो चकित रह गल, बाकी उ लालच न करलक। उ गांव के मुखिया के बोलक पूरा बात। मुखिया कहलक, रामदीन, ई भगवान के देल वरदान है, बाकी ई वरदान के इस्तेमाल अपन खातिर ही मत करिय, गांव के लोग भूखल बा ओकरो मदद करिय। रामदीन कहलक, मुखिया जी,
हमरा मन में भी

0: यही इच्छा बा। उस साल रामदीन के खेत में खूब फसल होल, वह अनाज से बेच के अपन पूरा कर्जा चुका दिलक, घर के छप्पर ठीक करवा दिलक और गोपाल खातिर कपड़ा और किताब खरीदलक। बाकियों का धन बढ़ले गल और घमंड कबो के नहीं होल। गांव में एगो अनाज के भंडार बनवे लग, जहां गरीब लोग जरूरत के समय बिना ब्याज के अनाज ले सकतलन। गांव के विधवा बूढ़ा या अनाथ बच्चा लोग खातिर वो हर महीना भोजन के इंतजाम करत हल। धनराज जे पहले ओकरा पर हंसत हल, एक दिन ओकरा लगे आके बोलक, रामदीन भाई हमर से गलती भइल, हम तोरा कमजोर समझली, असल में ताकत तोरा मेहनत कर दिल में रहल। रामदीन ओकरा गले से लगा लेलक, धनराज भाई गलती सबसे होला, अब हमनी मिल के गाँव के सुधारब जा। लक्ष्मी माँ की दूसरा दर्शन। कुछ महीना बाद दीपावली की रात पूरा गांव दिया से जगमगात है। रामदीन अपन घर के बाहर एगो छोटा दिया जला के बोललक, माई लक्ष्मी हमरा घर में धन रहे चाहे ना रहे, बस इतना कृपा करिया कि हमर मन में दया ईमानदारी हमेशा रही। तभी हवा में सुगंध फैल गल, सामने लक्ष्मी माँ फेरू से दिखल गल। लक्ष्मी माँ बोलक, रामदीन अब थोड़ा समझ में आ गल कि असली धन कौनची होला। रामदीन से झुका के बोलक, माई असली धन त दर्शन के काम आवेला दीद है। लक्ष्मी माँ मुस्कुरा के बोलक, बेटा जे धन के बांटिला ओकर धन घटेला नहीं बल्कि बढ़ेला। जे मनुष्य मेहनत करेला, ईमानदारी से जिएला और जरूरतमंद लोग की मदद करेला तो ओकर घर में सुख शांति रहेला। इतना कह के लक्ष्मी माँ अंतर्धान हो गल। तो संगतिया लोग, कहानी के सीख कौन सी है? ये कहानी के सीख है कि गरीबी आदमी के छोटा ना बनावेला, ओकर सोच ओकरा छोटा या बड़ा बनावेला। रामदीन गरीब रहल बकी ओकर दिल बहुत अमीर रहल। उ आखिरी रोटी के जरूरतमंद लोग के देवतल, ओकर मेहनत ईमानदारी और दया देख के लक्ष्मी माँ ओकर पर मेहरबान होकर। ये कहानी के तीन गो मुख्य सीख मिलेला। एगो मेहनत कबू बेकार न जाला। दूसरा मुश्किल समय में भी ईमानदारी और दया नहीं छोड़े के। असली धन उह जे दूसर के काम आवेला और धन के घर भर सकेला, बाकी दया या प्रेम से जीवन भर सकेला। तो कहानी बहुत सुंदर रहल। आशा करते हैं कहानी के सीख तो लोग भी अपन जिंदगी में उतर बजा। और ऐसे में सुनब अगला गीत अजय पांडे गैली हवन, साथ में आवाज बास सुभाष नगर के कॉलेज के पीछे। और है गीत वह जो हमने चलावती से ही सब संगतियालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल बा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। आप हवन देवी अनवर, मीरा रामा, मानती अंचराज, शमीमा, अदिति, हेम पोखेल, ऐश्वर्या उस्मान, कविकेश रामचंद, वीना योवानी, उदीश प्रकाश, अजद भोगालू, कीनू महजम, मनुदय, चौली, नाज, तेज, पोपिया, रेदेम, विजू, विमलादीप, मानती गोकुल, लक्ष्मी नारायण, प्रिंसेस, दर्शिनी जगेश, रोही, शोभा वसाय, रामदिया, सीमा, राम खिलावन, रामचंद देव दास, जगो स्टेडियो, पगजी बॉय संग, रगिनी विरापेन, आरती, ओवेन, गौरंगा गौरंगा, राधे राधे, हरे कृष्णा, अजीज, अश्विन, लकी, समीना, केशव संग, भुइनो, हाशु, केशव, संभर, विशाल, नव, अनीता, केशव, अभी, खुशीमा, अबेल, पाल पालिकन, प्री, ममता, लुसी, धीरज, कुंजन, माया, राव जी, केविन, अविनाश, बिगना, सवदीन, प्रणेश, सिद्ध, अंजेल, पूजा, कविता प्रयाग और ताला कायतु खाते। चलो एक साथ सुने है प्यारा सन गाना कॉलेज के पीछे।
1: एगो लफुआ लड़का भैया एगो लड़की के देख के आ कह के ढेर तू साधु बनेलू ना, महाला में सब तुहरा के साधु जानेला, लेकिन कुल तुहार खेला कुल तुहार महाभारत हम जाना तनी बाई डाटा हमारा भी बा, तू का करेलू उड़ल चिड़ई के हम पहचानी ना। देखी लड़की बा का कहता लड़किया से

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: वेलकम इन द सेकंड आवर। रात की 10:10 हुआ था प्रताप सिंह सीतालू के साथ। आज प्रताप सिंह सीतालू के साथ रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉशस पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले। और बेशक अब हो जाए कुछ बॉलीवुड न्यूज़, गर्मा गर्म बॉलीवुड न्यूज़। 7 अक्टूबर 2026 की ताज़ा बॉलीवुड रिलीज हुआ था। जी हाँ, सबजा फिल्म दृश्यम 3 ने देखे और बहुत ही सुंदर फिल्म है दृश्यम तीन बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त पकड़ बने लेबा। द कंक्लूजन यानी कि दृश्यम 3 में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और बाकी कलाकार नजर आलहवंजा और फिल्म 2 से 7 अक्टूबर ले रिलीज हो जाए। और यानी कि रिलीज हाँ 7-8 दिन से था ना, हाँ तो फिल्म रिलीज होकर भाई दृश्यम 3। रिलीज़ के बाद फिल्म में कमाई तेज रहल। 7 अक्टूबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिल्म करीब 230 करोड़ नेट के आंकड़ा पार कर दी लगभग, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ से ऊपर बा। तो फिल्म काफ़ी पैसा कमाई लगभग दृश्यम 3 जगह में नजर अलबा अजय देवगन। ये फिल्म की खासियत ये बा कि कहानी में विजय सामगांवकर के आकर ओकर परिवार के पुराना रात के अंतिम अध्याय देखे के मिल रहल। दृश्यम 3 के एडवांस बुकिंग भी जोरदार रहल। रिलीज से पहले ही दृश्यम 3 के एडवांस बुकिंग से करीब 28 करोड़ रुपए की कमाई रिपोर्ट हो रहल, मतलब बाकी है फिल्म खूब पैसा कमा हुआ था। दूसर का न्यूज़, शाहरुख खान अभी भारत के सबसे अमीर अभिनेता में से माना जा। जी हाँ, रिचेस्ट मैन इन बॉलीवुड इज शाहरुख खान। शाहरुख खान के लेके भी अक्टूबर में बड़ा खबर आलबा। हरुण इंडिया रिच लिस्ट 2026 के हिसाब के शाहरुख खान के अनुमानित संपत्ति करीब 10,000 करोड़ बतावल गल बा। बाप रे बाप, इतना धनी बा शाहरुख खान। संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले रिवॉर्ट बतावल गल, बाकी वो अभी भी भारत के सबसे अमीर अभिनेता मानल जा रहा। रिचेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड इज द वन एंड ओनली शाहरुख। और बाद में अमिताभ बच्चन और सलमान खान, ये लोगों भारत के जो है रईस एक्टर में से हवन सा। और सलमान खान की संपत्ति की चर्चा भी करल गल। सलमान खान के बारे में नया रिपोर्ट में बतावल गल बा कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार ओकर अनुमानित संपत्ति करीब 3,000 करोड़ रुपया बा। और खबर में मिलल बा कि सलमान के शुरुआती संघर्ष में भी चर्चा रहल। रिपोर्ट के मुताबिक उनका फिल्म कैरियर के शुरुआत में कमाई आज की तुलना बहुत कम रहल, बाद में मेहनत करके सलमान खान आसमान की बुलंदी के छूलक। और बेशक जैसे बोली कि बॉलीवुड के जो सबसे धनी एक्टर हवन जा शाहरुख खान, फिर अमिताभ बच्चन और सलमान खान। बॉलीवुड की ओर से खबर से भी पता चला था कि रणबीर कपूर के रामायण सेट पर आग। रणबीर कपूर आसाई पल्लवी स्टार रामायण के मुंबई स्थित सेट पर 5 अक्टूबर की आग लगे की खबर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक घटना में कोनो घायल ना भल। ये फिल्म पहले से ही बॉलीवुड के सबसे चर्चित आगामी प्रोजेक्शन में बा और एजन फिल्म है रामायण। घर में रणबीर कपूर राम की नज़र में आए, सनी देओल आए हनुमान के रोल में। और कियारा सिद्धार्थ के जुड़ल खुशखबरी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लेके 7 अक्टूबर की खबर सामने आलबा कि दोनों दूसरा संतान के उम्मीद करत हवन जा। और बॉलीवुड न्यूज़ में ये भी बा कि अमिताभ बच्चन के पूरा संघर्ष, जी हाँ अमिताभ बच्चन के पुराना संघर्ष के किस्सा। अमिताभ बच्चन हाल के बातचीत में अपना शुरुआती करियर के एगो पुराना अनुभव याद कर लत। रिपोर्ट के मुताबिक करियर के शुरुआत दौर में ओकर लगे उतना पैसा ना रहल, पर धीरे धीरे ओकर लगे पैसा आल मेहनत और लगन से। और बेशक ई रहल कुछ बॉलीवुड न्यूज़। अब सुनब जा अगला गाना, किसी के बुरा ना बोलिया। गीत गए सुखदेव राम खिलावन, एक गीत चलिए आशा जानू खाती मामा कुमारी, फिर नेफ्यू शुभम, दीदी आरती, जीजाजी, चीजों और सब जानू परिवार के नाम। और है गीत चली अनीता लाल जी हवन प्रीकॉम फ्लाग से, अनीता प्रीकॉम फ्लाग से, अनीता लाल जी हवन मौदल बे सब इट्यू परिवार के नाम, सब लाल जी परिवार के नाम। ज्ञान और चित्रा विश्राम मदाल बे से है गीत और खातिर और सब परिवार के नाम। और है गीत चली शोभा के नाम जोन रहेलन पोंपले मूस। चले एक साथ सुनब जा किसी के बुरा में बुरा ना बोलिया।

ऐसे ही नचते गाते रहिए, कमरवा डुलाते रहिए और उनके साथ दिया रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर पहुंच हुई तरह का प्रोग्राम गीत मांगे के मन करता था का जगदे हुए जो भी सैंक पर टेलीफोनी करिए सास मोरे धर्मवती मंगल की तो गए लगभग और गीत के मांग कर तो संजय हरिचंद पिता से कर पत्नी हुविष्का और कर पत्नी और बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम फिर ये गीत चली पूर्णिमा फकीराज के नाम और कुणाल हीरा और सब परिवार खातिर है ये चलाते इस हमने जितना कोई बीमार बा अस्पताल में बा क्लिनिक में बा तो बस है गीत के नाम प्रार्थना कर देते तो जल्दी ठीक हो जाए बजा जितना कोई कॉल सेंटर में काम करता तो फिर लोग अभी कोर्स करता हूँ उनसा और देर कोई काम में से वापस घर लौटा था देर कोई अभी का घर में से ले जाता हूँ उनसा काम जितना कोई काम करता सब कोई बोलो सब बकवास अगला गीत तो नाम सास मोरे

छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा आजकल निमन छोकरा या निमन छोकरी मिले के शादी करे खातिर बहुत कम बा हाँ कि नहीं रात के 10:40 रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर चलता प्रोग्राम बहुत छोटी तड़का रात के 11 बजे रे। अब जरा कुछ दिलाहुत के बारे में बात करें। अब सर जब एगो ड्राइवर के लाइसेंस मिली रहा तो अचानक कुछ दिलाहुत निमन से जाने के कहाँ पर डालिन ब्लो बा कहाँ पर ही दुबले करे के कहाँ पर ही नहीं दुबले करे के और कितना विदेशी गाड़ी जहाँ चलाए के जहाँ 700 किलोमीटर पर है बताओ 700 किलोमीटर 100 किलोमीटर का तो बाए तो शायद देखेगी निमन से। अब विदेश के ओएसपी नहीं करिया वरना लामान पर जाए पे ही करे के और लुटो बनावल बा उड़े करे के नहीं कि उड़े के ठीक बाकी नहीं। और तो है सुरक्षा और सब कुछ की सुरक्षा चेहरा दिखे के जब गाड़ी चलावत हुआ खासकर जब पानी बरसेला जब भूजा रहेला तो सावधानी से जाए गाड़ी चलाए के तेर प्रेसर की नहीं चेहरा अगर तू दूर जाते हुआ तो घर से थोड़ा सुन समय आगे निकल जाइए जब इस समय पर अपन मंजिल में जाए बजा जैसे कि हम बोली कि एगो सोफिया चुनाव के चरा को दिलागोत निमन से जाने के अगर को दिलागोत निमन से नहीं जाना तो जब तक पुस्तक बेचाला को दिलाखुत के कल में सब देखे कल में सब रोड साइन बा कि कहाँ पर ही नो एंट्री है कहाँ पर ही हेले के कहाँ पर आगे तो के कहाँ पर ही पार्किंग नहीं करे के जहाँ लाल इंजोन सब रहे तो इससे भी कुछ सोफे के जहाँ जाने के और कुछ सोफे हो जा के कोई बोले रहा मुकुंटू नहीं झूठ है सोफे तो चाहे 20 बरिस 50 बरिस सोफे कर रहे पर रोज के अपनी कोनो नया चीज सीखी रहा सर जब ड्राइविंग करे तो वह गाड़ी कोनो भी वाहन चलाओ तो रोज की सीखी ला सर है ऐसी सीखल जो है फिनी नहीं होला है जैसे को दिलाखुत बोलते हैं आजकल देखा जैसे ढेर मना दुर्घटना होता है ढेर कोई गाड़ी ढेर तेज चलावेला कोई शराब के नशे में चला

मिला कोई ओवर स्पीड करे रहा और जाके धक्का का मार देवे ना तो ये सब नहीं चेहरा निमन से ड्राइव करत हो तो निमन से ड्राइव करिए चाहे कहे कि तो हमेशा याद रखे कि तू गाड़ी लेके निकलत हो और तुहर परिवार तुहर घर पे तुहर इंतजार करे था ठीक बा तो ऐसे में सुनब चाहे कैसे जब हम कमला गणेश की आवाज़ में गीत गीचरे तीना दिना खातिर हेलन सुहाक केट खातिर भी गीत चली फिर विरापेन पाया रोसाय रुसाल खातिर भी गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ राम राम राखा राखा मिसेज राखा गीत और खातिर बहुत प्यार के साथ मिस्टर लक्ष्मण जी हमजा उनकी संगतिया फिर प्रतिमा फिर बानु रोशनी और अंसुया मंगरा वो भी उनके साथ देवतवन बहुत बहुत प्यार के साथ फिर हईगी चरावती से सब श्रोतालु के नाम जिनकी नींद नहीं लगा था और जो फैमिली के सब सदस्यों के नाम और ये गीत चली स्वीटी और स्वीनी खातिर बहुत प्यार के साथ और हई गीत चरावती से हमनी सब दुखन परिवार के नाम और सब उजाइबो परिवार के नाम

मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान लाल की गावल गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था रात के 9 बजे सिर्फ वीरियम के साथ दिला जा हमने के देख रहे हैं उनके ड्रेड मॉर्शस के टिकटॉक पेज पर चलो कैसे मैं सर फोन कॉल खरीद शुक्रिया रात के 11 बजे सुन बजा निर्मणि के साथ अगला प्रोग्राम सुनहरी पर और रात के 12 बजे से कल फजीर के 5 बजे ले सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तरह हमने के दोनों की मुलाकात हुई शाम के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर तब तक हमने के इजाजत दे और जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। बुधवार की रात है, हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ लेकिन वीकेंड की आहट भी दूर से सुनाई देने लगी है। तो आज रात थोड़ा रफ्तार कम करते हैं और पुराने गीतों के साथ कुछ देर ठहर जाते हैं आपके ही सुनहरे पल में।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। कभी कभी किसी पुरानी याद को याद करने के लिए किसी तस्वीर की जरूरत नहीं होती है, एक गाना काफी होता है। पहले ही धुन बजती है और दिल खुद बता देता है कि ये गाना किस दौर का है। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट गाना वो फिर से रिवाइव कराएगा उन खूबसूरत पलों को, खूबसूरत यादों को।

मोहब्बत के गीतों की भी अपनी एक दुनिया होती है ना, ना बहुत शोर ना बहुत अल्फाज, बस एक खूबसूरत धुन और दिल की बात वाह ऐसे ही सामने आ जाए। आज रात उसी एहसास के नाम करते हैं

शायद अभी आप अपने कमरे में आराम से लेटे हुए हैं, ये गीत सुन रहे हैं, शायद चाय की आखिरी चुस्की बाकी है या शायद नींद आने का इंतजार। जो भी पल है इसे थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ।

किशोर कुमार की आवाज में अजीब सी बात थी। खुशी हो, उदासी हो, शरारत हो या तन्हाई, हर एहसास बिल्कुल अपना सा लगता है। और ऐसा ही एक गीत करते हैं आपके नाम, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है सुनहरे पल में।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। जमाना बदल गया, कैसेट से सीडी और सीडी से स्ट्रीमिंग तक का सफर आ गया है, लेकिन कुछ गाने अभी वही है, वही अल्फाज, वही धुन, वही एहसास। शायद इसी को कहते हैं।

जिंदगी में कुछ पल रोक नहीं सकती, वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन खूबसूरत बात ये है कि कुछ पल यादों में हमेशा वही के वही रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का, एंड आशा करते हैं कि आपने गानों के कुछ अच्छे पल बताए, कुछ अच्छी मेमोरीज भी बनाई। फिलहाल बस आंखें बंद कीजिए और इस धुन को अपने साथ चले दीजिए। शुभ रात्रि।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum. Kim to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shutrandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
2: ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है।
7: मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ।
2: लकड़ियाँ गीली हैं।
7: आज तो मैं पानी में भी आग लगा सकता हूँ।
2: मुझे बाहों में ले लो, खुद ब खुद आग लग जाएगी।
7: नहीं,
2: देखो मुझे तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें
7: क्या
2: मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत

0: सी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है